हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरी मिले प्रेम पिरी आसा महला पंजवा।

मोहिना कारण करना तारण धरना एकै एकै सोहिना संतन परसन बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोहिना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओला अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो हो संत संगाहे नाम त्यागो हो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो तिस बिन को नाही प्रव सरनी आईय सर्व फल पाईय सगले दुख जाही जीयन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आही आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हों।

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवे पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावे लोभ बिखिया बिखे लागे हर वित चित दुखाही।

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लिखे ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

गोविंद नाय साध संत मनाय प्रिय पाय गुण गाय पंच नाद तूर बजाय रहाओ कृपा पाए सहजाय दरसाय अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन मैदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवां काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

ना रहा अनन उपाव कर हां तौ निकसै सरन पैरी सखी थेर थेर चित थेर हां बन ग्रहो समसर हां अंतर एक फिर हां।

सखी असावरी महला पंजवा मनसा एक मान गुरस्यों नेत ध्यान दृढ़ संत मंत ज्ञान।

नानक प्रभ पाया मेरे मना, सावरी महला पंजवा, मिल हर जस गाई है हां, परम पद पाई है हां, वा रस जो विदे हां, ताको सगल सिदे हां, अन दिन जागया हां, नानक बड भाग्या मेरे मना, रहाओ संत पग धोइए हां, दुरमत खोइए हां, दास हरेन होए हां, व्यापै दुख ना कोए हां, भगतां

सतगुर प्रसाद राग आसा महला नौवा बिरथा कहूं कौन स्यो मन की लोभ ग्रसे हो दस हूं दिस धावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुद राम भजन की मानस जन्म अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदियां घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अब कट सरवर नावै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द क्रोध जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बलोवै सुपार सरवर मैल ना धोवै जै स्यो राता तै सो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हे वसी तन अगन बुझावै सेवा सुरत बेभूत चढ़ावै।

कह नाइ कर बिन वाजा पग बिन ताला जे शब्द बुझे ता सच निहाला अंतर साच सबे सुख नाला नदर करे राखे रखवाला त्रे भवन सूजे आप गुआवे बाणी बूझे सच सुभावे शब्द विचारे एक लिव तारा नानक धन सवार नहारा आसा महला पहला लेख असंख लिख लिख मान मन माने सच सुरत बखान कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार लेख असंख अलेख या

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिर अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई जग रोग।

है दुख कोई, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना।

बिन भगत सरोत मुए को सच रोवह मीत त्रै गुण रोवह नीता मीत दुख सुख पर हर सहज सुचीत तन मन सौंपो कृष्ण परीत पीतर एक अनेक असंख कर्म धर्म बहु संख असंख।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरीजै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुरपूरा गुर मानै मन ते मन ती।

नजर निहाल आसा महला पहला गुरमुख ज्ञान ध्यान मन मान गुरमुख महली महल पछान गुरमुख सुरत शब्द निशान ऐसे प्रेम भगत विचार।

क्या लहस निदान जिसका अन तन सहज ना जाना परम पुलाना फिर पछताना गल पाही बौरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

मन झूठ अनीते कहा चलो हो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गात गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाणे निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊं गुर प्रसादी कर्म कमाऊं नामे राता हर गुण गाऊं गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

दास साधु जन संगत होए निवास किलख दुख काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम मन राता आसा महला पहला मन मैगल साकत देवाना बन खंड माया मोहे हैराना इत उत जाहे काल के चापे गुरमुख खोज लह घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा सिमरहो राम नाम अत निर्मल अवर त्याग हो हौमै कौरा रहाओ इहो मन मुगद कहो क्यों रहसी बिन समझे जम का दुख सहसी आपे बख्शे सतगुर मेले काल कंटक मारे सच पेले इहो मन कर्मा इहो मन धर्मा इहो मन पंच तत ते जन्मा साकत लोभी इहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपे मन रूड़ा गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई इहो मन जोगी भोगी तप तापै गुरमुख चीनै हर प्रभ आपै मन बैरागी होमै त्यागी घट घट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाखै दर कर महली।

मैं ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख इहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी इहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भावो धुन होई अहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब आद जुगाद राम रसायन इहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुरचर निवासा नानक हर जन के

0: मुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भए हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

संचह धन जाए बिन हर भगत ना पवी थाए बंधन भेद बाद अहंकार बंधन बिन सह मोह विकार नानक राम नाम सरनाई सतगुर राखे बंध ना पाई राग आसा महला पहला अष्टपदियां।

ब्राह्मण जिस वेख नींद ना पाई कहां सो पान तंबोली हरमा होया शाई माई। इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर कणी खोआई पापा बाजो।

कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जामीर सुनिया ताया, थान मकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया, कोई मुगल ना हुआ अंधा, किने ना परचा लाया।

धनी साचा मुख नाम रहाउ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांग है रिद्ध सिद्ध मैं एक नाम ना विसरै साचे गुरु बुद्ध जोगी भोगी कापड़ी क्या पवहंद संतर गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर पंडित पांदे जो इसी नित पढ़ है पुराणा अंतर वस्त ना जाननी काट ब्रह्म लुकाना एक तपसी बन मह तप कर है नित तीरथ वासा आप ना चीन है तामसी काहे पये उदासा एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावे है बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवे है जावे है एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे गुरते दर घर जानी है सो जाए सियाने नानक नाम ना विसरै साचे मन माने आसा महला पहला मनसा मन है समाए ले भवजल सच तरना।

ठाने नित नित खरा संभाली है सच सौदा पाई है खोटे नदर ना आमनी ले अगन जलाई है जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना भरम ना भेद है हर रसन रसाई हुक्म संजोगी।

अधारा अंत सखाई पाया जन मुक्त द्वारा जन्म मरण दुख मेटिया जप नाम वरारी नानक नाम ना विसरै पूरा गुर तारी आसा महला तीजा अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सात वेद सिमरत सर तेरा सुरसरी चरण समाणी साखा तीन मूल मत रावे तू ता सर्ब वडाणी ता के चरण जपै जन नानक बोले अमृत बाणी रहाओ ते तीस करोड़ी दास तुम्हारे रिद सिद्ध प्राण आधारी ताके रूप न जाही लखने क्या कर आख विचारी तीन गुणा तेरे जोग ही अंतर चारी तेरिया खानी कर्म हुए ता परम पद पाई है कथे अकथ कहानी तू करता किया सब तेरा क्या तू करे प्राणी जा को नदर करह तू अपनी।

अपसार हर जीव मन वसै सब दुख वसार नहार दर साचै दिसै सचियार गुर सेवा ते त्रिपवन सोजी होए आप पछाण हर पावै सोए साची बाणी महल प्राप्त होए गुर सेवा ते सब कुल उधारे निर्मल नाम रखै उर धारे साची सोभा साच द्वारे सेवड भागी जे गुर सेवा लाए अन दिन भगत सच नाम दृढ़ाए नामे उधरे कुल सबाए ना

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमे मार, हर जपिया पह सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा महला तीजा, अष्टपदिया घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

सुन मन मन वसाई तू आपे आए मिलै मेरे भाई अन दिन सच्ची भगत कर सच्चै चित लाई एको नाम त्याए तू सुख पाव है मेरे भाई हों मैं दूजा दूर कर वड्डी वड्याई रहाउ इस भगती नो सुर नर मुन जन लोच दे विण सतगुर पाई ना जाए पंडित पढ़ दे जोत की तिन बूझ ना पाए आपै थै सब रखियोन किछ कहन ना जाई आपे दे सो पाई है गुर बूझ बुझाई जी जंत सब तिस दे सबना का सोई मंदा किसनो आखी है जे दूजा होई इको हुक्म वर्तदा एका सिर कारा आप भवाली दितियन अंतर लोभ वकारा इक आपे गुरमुख कीतियन बूझन विचारा भगत पियो नानो बख्शियन अंतर भंडारा ज्ञानिया नो सब सच है सच सोजी होई कोई भलाए किसे दे ना भुलनी सच जानन सोई कर्म है पंच वर्त दे पंचे विचारी नानक बिन सतगुर वास

बाहर किस नाही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक हो है सो ले पाई रतन विचारा अंदर खोले दिव दिष्ट देख मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर होए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरै वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है आपे दे बुझाई नानक।

नानिवह दूजा भाउ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वासे आवे गुर प्रसादी ठाकिए ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सुआरियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दियां।

एक है बहुविध श्रेष्ठ उपाय हुक्मे कार कराएंदा दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया ए तेरी सिर कार एक ना बख्श है मेल लह एक दरगाह मार कड्डे कूड़ियार एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए एक कुचल कुचील विखली पते नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है ना संजमी फिर है उत बताए नदर करे जिस आपनी तिस नो भावनी लाए सत संतोख ए संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाई गुरते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए इहो मन देही सोध तू गुर शब्द भी

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागणी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है

भगत निराली अल्लाह दी जापै गुर विचार नानक नाम हिरदै वसै पै भगती नाम सवार। आसा मोहल्ला तीजा अनरस मह भुलाया बिन नामै दुख पाई सतगुरु पुरख ना भेट्यो जे सच्ची बूझ बुझाई। ए मन मेरे बावले हर रस चख साध पाई अनरस लागा तू फिरह बिरथा जन्म गवाई। रहाओ इस युग में गुरमुख निर्मली सच नाम रह लिवलाई। बिन कर्मा किश पाइय नाही क्या कर कहया जाई। आप पछाण है शब्द मर है मनहु ताज विकार गुर सरनाई भज पए बख्शे बख्शन हार। बिन नामे सुख ना पाइए ना दुख विचों जाई। इहो जग माया मोहे व्यापिया दूजे भरम भुलाए। दुहागनी पिर की सार ना जानही क्या कर करहे श्रृंगार। पन दिन सदा जलदियां फिरह सेजै रवै ना पतार। सुहागनी महल पाया विचों आप गवाए गुर शब्दी सिंगारियां अपनी सह लईयां मलाई। मरना मनहु विसारिया माया मोह गुबार मनमुख मर मर जम है पी मर है जमदर होए खुआर। आप मलाइन से मिले गुर शब्द विचार नानक नाम सुमाणे मुख उजली तित सच्चै दरबार। आसा महला पंजवा अष्टपदियां कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पंच मनाए पंच रसाए पंच वसाए पंच गुआए इन बिद नगर बुठा मेरे भाई दुरत गया गुर ज्ञान दृढ़ाई। रहाव साच धर्म की कर दीनी वार हरहे मुहकम गुर ज्ञान बीचा।

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यों ने साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद।

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माई। काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई। जो जन राते राम स्यों प्यारी अनत ना काहू जाई। हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रही आगाई। अंचल गहया साध का नानक पै सागर पार पराई। जन्म मरण दुख कटिया प्यारी जब

सत्सै सोए श्रेष्ठ जिन साजी, सबना साहिब एक भया, सेवत रहे चित जिन का लागा, आया तिनका सफल भया।

जलिया जमराज के ही रू आए माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साह आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कड़ भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाहे तई किया कगे काल सेवक जे काले शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम उपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहे आ दे दे वेखे हुक्म चलाए।

रूपया अंतर आत्मे ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया कके काम क्रोध परमयो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़े गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्ते तामस जले ओहो मूड़े तत्ते थान पृष्ठ हुआ कग्गे कर कर फिर है तू मूड़े दद्दे दान ना तुद लया पप्पे पार न पवे ही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चे आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बे पवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद विसरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर का उपदेश सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गग्गै गोविंद चित कर मूड़े गली किने ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनहा सब बख्श लया हा है हर कथा बूझ तू मूड़े ता सदा सुख होई मनमुख पढ़े तीता दुख लागे बिन सतगुर मुक्त ना हुई रारे राम चित कर मूड़े हृदय जिनकै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को

सिरजनहार जीउ सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारनहार जीउ दुख बसारनहार स्वामी कीता जा का होवै कोट कुटंतर पापा केरे एक करी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे बिचार जीओ तू सबनी ताई जितै हौ जाई साचा सिरजनहार जीओ जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जीओ ते कबहू ना हार है हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावै गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जीओ जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोहो कुर्बान जीओ ताकी सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाइय मान जीओ हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै काली जै हर उत्तम पुरख प्रधान जीओ जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै बिटोहो कुर्बान जीओ नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जीओ तिन फल तोट ना आवै जां तिस पावै जे जुग केते जाहि जीओ जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल टूट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सुकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

खाहे चूटा शब्द बिन बेतालिया सच कह नानक चेत रे मन मरह पवरा कालिया मेरे जीअड़िया परदेसिया कित पवह जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की फासह जम जाले राम मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर सिऊ छोड़ मनु अंदेसिया सच कह नानक चेत रे मन जीअड़िया परदेसिया नदियां वहा विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सत गुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगध अचेतिया हर नाम भगत नारद साचा।

धुनि उपजै जित शब्द जगत थम रहाया तह अनेक वाजे सदा आनंद है सच्चे रहया समाए यों कह नानक सतगुर मिले है तावत थमिया निज

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

साए सब संसार दुख गवाया अदिष्ट अगोचर गुर बचन त्याया पवित्र परम पद पाया अनहद धुन वाजे है नित वाजे गाई सतगुर बाणी नानक दात करी प्रभ दाता ज्योति ज्योत समाणी मन मुखा मन मुख मुए मेरी कर माया राम खिन आवे खिन जावे दुर्गंध मड़े चित लाया राम लाया दुर्गंध मड़े चित लागा ज्यों रंग कसुंब दिखाया खिन पूरब खिन पच्छम शाए ज्यों चक कुम्हार पवाया दुख खावे है दुख संचे है भोग है दुख की बिरद वधाई नानक बिकम सहेला।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवह लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

गवाई मन तन शीतल श्रृंगार सब हुआ गुरमत राम परगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम वसारिया ते मन मुख मूड अपागी राम इन अंतरे मोह व्यापै खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड पए अपागी जिन राम नाम नह पाया अनेक कर्म करह अभमानी हर रामो नाम चुराया महाबिखम जम पंथ दुहेला कालू खत्म हो अंधियारा नानक गुरमुख नाम ते आया ता पाए मोख द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम एहु मनुआ खिन ऊब पयाली भरम दा इकत कर आणै राम मन इकत कर आणै सब

तमो रमय उच्चा गुण कहत्या अंत ना पाया नानक राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया जिन अंतरे राम नाम वसै इन चिंता सब गवाया राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया राम नाम गुण गाई दुर्मत कुबुद गई सुध होई राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब होआ जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

सुख बनासन पतत पावन हर नाम जियो हर सेवा पाई परम गत पाई हरे उत्तम हर हर काम जियो हरे उत्तम काम जपिए हर नाम हर जपिए अस थे।

दुख बनासन पतत पावन हर नाम जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिय सत गुर पाए जियो गुरमुख हर पढ़िय गुरमुख हर सुनिए हर जपत सुनत दुख जाए जियो हर हर नाम जपया दुख बिनसिया हर नाम परम सुख पाया सतगुर ज्ञान बलिया घट चानन अज्ञान अंधेर गवाया हर हर नाम तिन्नी अरादिया जिन मस्तक तुर लिख पाए जियो हर नाम पदार्थ कल युग उत्तम हर जपिय सतगुर पाए जियो हर हर मन पाया।

ओ भागा हर हर हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परदाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधु।

गुरमुख हुई अंतर बाहर हर प्रवेक को दूजा अवर ना कोई हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई हर दरगाह पावे मान जियो सतजुग सब संतोख सरीरा पग चारे धर्म ध्यान जियो एता जोगे आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए दियो पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया मन हिरदय क्रोध जलाए दियो मन हिरदय क्रोध महा बिसलोद निरपता वह लड़ दुख पाया अंतर ममता रोग लगाना हों मैं अहंकार वधाया हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो एता जोग आया अंतर जोर पाया जत संयम कर्म कमाए जियो जोग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाय जियो तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है अत किरिया कर्म कमाए जियो किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया दोए पग टिकै टकाए जियो महाजुद जोद बहुकीने विच हों मैं पचै पचाए दियो दीन दयाल गुर साध मलाया मिल सतगुर मल लह जाए दियो जुग द्वापर आया परम परमाया हर गोपी कान उपाए दियो कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो गुर शब्द कमाया औखद हर पाया हर कीरत हर शांत पाए दियो हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई हर हर नाम खेत जमाया कल युग बीज बीजे बिन नावे सब लाहा मूल गवाया जन नानक गुर पूरा पाया मन हिरदय नाम लखाए जियो कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया पग चौथा टिकै टकाए दियो आसा महला चौथा हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया तुर मस्तक भाग प्राण जियो तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग हर नामे हर गुण गाया मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी हर नामे हर सोहाया ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया मिल सतगुर मनुआ मान जियो हर कीरत मन पाई परम गत पाई हर मन तन मीठ लगान जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रदान जियो तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है जिन हर मीठ लगान जियो हर मीठा लाया परम सुख पाया मुख भागा रती चारी गुरमत हर गाया हर हार उर पाया हर नाम कंठ धारी सब एक दृष्ट समत कर देखै सब आत्म राम पछाण जियो हर हर जस गाया परम पद पाया ते उत्तम जन प्रधान जियो सत संगत मन पाई हर रसन रसाई विच संगत हर रस होए जियो हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया बीजा अवर ना कोए जियो अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कड ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

एको होए, हर जन प्रभ एक समान जियो, तुर मरन लखाया गुरमुख सोहाया, जन उमरे हर हर ध्यान जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो, हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरन ना होई, हर हर नाम अमर पद पाया, हर नाम समावै सोई, जन नानक नाम आधार टेक है, बिन नाम अवर ना कोए जियो, जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो, आसा महला चौथा संत, वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर, आदि निरंजन निरंकार जियो, तां की गत कही ना जाई अमित वडियाई, मेरा गोविंद अलख अपार जियो, गोविंद अलख अपार।

अगोचर आद निरंजन निरंकार जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर, सब में रहया समाए जियो, घट अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर, ताका अंत न पाया, तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर, गुरमुख अलख लखाया, सदा आनंद रहै दिन राती, सहजे नाम समाए जियो, तू आद पुरख अपरंपर करता, तेरा पार न पाया जाए जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो, हर हर प्रभ एको अवर न कोई, तू आपे पुरख सुजान जियो, पुरख सुजान तू प्रधान, तुद जेवड़े अवर ना कोई, तेरा शब्द सब तू है वरत है, तू आपे करह सो होई, हर सब मह रव्या एको सोई, गुरमुख लखिया हर नाम जियो, तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी, हर हर गुणी निदान जियो,

सब तेरे शब्द समाए दियो। सब शब्द समावे जां तुद पावे, तेरे शब्द वड्याई गुरमुख बुद्ध पाईए आप गवाईए। शब्द रहिया समाई तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाईए, नानक नाम समाए दियो। सब तू है करता सब तेरी वड्याई, ज्यों पावे तिवें चलाए दियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा महला चौथा।

हर पाया हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जप अनंत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

चिताई गुर हर मार्ग चाली, मेरा मन तन नाम आधार है, हम मैं बिख जाली, जन नानक सतगुर मेल हर, हर मिलिया बनवाली, गुरमुख प्यारी।

रस पिनी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मनी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिनी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बनज है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब भांडे तुदै साजिया विच वसत हर थारा जो पावै भांडे विच वस्त सा निकलै क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।

जन नानक सतगुर भेटिया हर नाम तराई। कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर,

गुर सिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुर सिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुर सिखा मन मिठा। हर दरगाह गुर सिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु टुठा। जन नानक हर हर होया हर।

हर जुग जुग भगते अपाया, पैज रख दाया राम राजी, हर नाखश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया अहंकारियां।

करे, मन तृष्णा ना बुझे मेरे प्यारे, नित आस करे, नित जोवन जावे मेरे प्यारे, जम सास हिरे, भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे, नानक हर पुर तारे, फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे, चात्रक बूंद जिवें मन शीतल हुआ मेरे प्यारे, हर बूंद पीवै

ये रुते फिर बाजड़े हो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लुते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुते गुरु नानक देख बिगसी मेरे प्यारे ज्यों मात सुते।

हर बिन प्रेम ना खेल सा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देख सा हर दातड़े मेल गुरु मुख।

सहज भया गृहवासे आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियों मन मान।

सोहे बंक द्वारी नव निदे नौ निदे मेरे घर मह आई राम सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे

ए सरसे अड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना सानथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो

0: हर रंग माणी
1: हर संता हर संत सज्जन
0: मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे ब्रह्म पौ भागे आप।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता गुरपुरा पाया नाम त्याया जुए जन्म न हारे बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम हर धूड़ी नाइए मैल गवाइए जन्म मरण दुख लाथे अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा बिनवंत नानक गुर सरन तरिए अपने प्रभ पावा।

जल संग राती माछली नानक हर माते चातरक जाचै बूंद ज्यो हर प्राण अदारा राम राजे मालक जीना।

हर प्यारा, मिले नारायण अपने, मानोरथ पूरा राम राजे, ताठी पीत परम की, पेटत गुर सूरा राम राजे, पूर्ण गुर पाए पुरब लखाए, सब निद दीन दयाला, आद मद अंत प्रभ सोई, सुंदर गुर गोपाला, सुख सहज आनंद कनेरे,

पंथ भणियै तह साध संग ना डरपियै कर कीरत गोविंद गुणियै सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर टिक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करीजै इहो मन दीजै हथ लाइय के

कहो नानक संत अनंत ठाकुर के हर सियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घणी कद दिन यर देखी है। गोकले अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजी है। हर प्रीत करीजै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरणी पड़ी है चरणी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिन यर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत कीजै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया

नानक बेटे साध जब हर पाया मन माहे संत जां को खोजह असंख मुनि अनेक तपे ब्रह्मे कोट अराधह ज्ञानी जाप जपे जप ताप संयम क्रिया पूजा अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ अराधते दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते कोट बिसन अवतार संकर जटा धार चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी आसा महला पंजवां सलोक उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है दुख दर्द भ्रम जाए संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाईय भेटत साधु संग जमपुर नह जाइय दुख दर्द ना पौ ब्यापै नाम सिमरत सद सुखी सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी कृपाल दयाल रसाल गुण निद कर दया सेवा लाई है नानक पयंपै चरण जंपै नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है पावन पतत पनीत नाम निरंजना परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन जल फल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दैवसिया मिटे तिसैव सूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी सर्ब का पौ भंजना नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे हर चरण कारण करण स्वामी पतत उधरन हर हरि सागर संसार पाव उतार नाम सिमरत बहुतरी आद अंत बेअंत खोजह सुनी उधरन संत संग बिदे नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे भगत वचल हर

सहज सुपाई भगत कार्य सारिया आनंद हर जस महामंगल सर्व दुख वसारिया चमत्कार प्रगास दह दिस एक तह दृष्टाया नानक पयम पै चरण जम पै भगत

आवे अवनाशी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाण गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार ता कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नव निद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जा को राम पतार ताके आनंद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसो चरण पखार आप त्यागी है ताजे आप मिटे संताप आप नह जनाई है शरण गिही जय मान लीजै करे सो सुख पाई है।

संत पास सेवा लागी है, जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया, साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

नीच सठ कठोर को लहीन व्यापत मोह कीच मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत न आवे बनता बनोद आनंद माया अज्ञान ताल पटावे खिसै जोबन बदै जरुआ दिन निहारे संग मीच बिनवंत न

संग मीठे भोग सोहन प्रमत भार अगमते आयो बहु परदेसह तायो अब ओट धारी प्रभ मरारी सर्व सुख हर नायो राखन हारे प्रभ प्यारे मुझते कछु ना हुआ होन सुख सहज आनंद नानक कृपा तेरी तरह पौन नाम तारीक उधारे भगत हैं संसा कौन जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवन सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावे हर रंग राते प्रभ बधाते राम के गुण गावे बसद कागद बनराज कलमा।

गोविंद रमण निर्मल साधु संग नानक नाम ना विसरो एक घड़ी कर कृपा भगवंत संत इन्नी रह नड़ी है चाम कन तारी जाग है संत जना मेरे राम प्यारे सदा जाग है नाम सिमर है अन दिनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खिनो ताज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारी बिनवंत नानक सदा जाग है हर दास संत प्यारी मेरी से जड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया प्रभ मिले स्वामी सुखगामी चाव मंगल रस परी अंग संग लागे दुख भागे प्राण मन तन सब हरी मन इच पाई प्रभ त्याई संजोग साहा शुभ गणिया बिनवंत नानक मिले श्री तार सगल आनंद रस बनिया मिल सखियां कुछ है कहो कंत नी जानी रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी गुण गूढ़ गुप्त अपार करते निगम अंत ना पावहे भगत पाए त्याए स्वामी सदा हर गुण गावहे सगल गुण सुगयान पूरन अपने प्रभ पाणी बिनवंत नानक रंग राती प्रेम सहज समाणी सुख सोहिलड़े हर गावन लागे साजन सरसे अड़े दुख दुश्मन भागे सुख सहज सरसे हर नाम रहस्य प्रभ आप कृपा धारिया हर चरण लागे सदा जागे मिले प्रभ बनवारिया शुभ दिवस आए सहज पाए सगल निध प्रभ पागे बिनवंत नानक सरण स्वामी सदा हर जन तागे हासा महला पंजवा उठ मंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लुभाया कूड़े लुभाया तो माया करहें पाप अमित्या तन पसम टेरी जमै हेरी काल बपड़ै जितया माल जोबन छोड़ वैसी रहे ओ पैनन खाया नानक कमाणा संग जुलिया नह जाए किरत कमाया हाथ हो मिर्ग जिवें पेख रहन चंद्रायन सुख हो दुख भये नित पाप कमायन पापा कमाणे छड़ह नाही लै चले कत गलाविया हर चंदौरी देख मूठा कूड़ सेजा रावया लब लोभ अहंकार माता गर्भ भया समा

धर्म करे दूत भय पलायन, धर्म धीरज सहज सुखिए, साध संगत हर भजे, कर अनुग्रहो राख लीने, मोह ममता सब तजे, गह कंठ लाए गुरमलाए, गोविंद जपत अगायण, विनवंत नानक सिमर स्वामी, सगले आस पुजायण, निध सिद चरण गहे ता केहा काड़ा, सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा, गह पुजा लीने नाम दीने, करतार मस्तक राखिया, संसार सागर नह व्यापै, हम्यों हर रस चाखिया, साज संगे नाम रंगे,

आयो माथे जिस पास लुकाइंदड़ो सो वेखी साथ है संग देख करनहारा काए पाप कमाइए सो कृत की जय नाम लीजे नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमरहो चले तेरे साथी भज साध संगत सदा नानक मिट है दोख कमाते वलवंच कर उदर पर है मूर्ख गावारा सब किस दे रहे।

प्रसाद कमला ब्रह्म पीत कमला ब्रह्म पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवद अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलोह प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन।

नानक मगन होत अलियल गुंजात अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श पे

करत न लागी वार। महला दूजा, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ हजार। एते चानन होंदिया गुरबिन घोर अंधार। महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सोचेत।

विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेद वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लग है पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उजड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हूं लोक सबाया। सतगुर मिले सच पाया जिनी विच्चों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपियां पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन वर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुस्ते ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल। महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा झट पाए।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लय नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गुआ।

आईय कोरहै ना परिया पाईया सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

अरे तीर्थ नाव है अर्चा पूजा अगर वास बहकार जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार सूखम मूर्त नाम निरंजन।

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया।

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार।

सतगुरु नो पुछ कै बह रह करे निवास, सच सबना होए दारू पाप कड्डे तोए। नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी, दान महिंदा तली खाट जे मिले ता मस्तक लाइए, कूड़ा लालच छड्डीए होए इक मन अलख ते आईए।

की लेख है पत पवे चंगे से ही के पौड़ी तुर कर्म जिन्ना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया।

न होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो जिन कीती सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किछ करना सो कर रहया महला दूजा जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानकता का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।

होवै गुनहगार ता उमी साधना मारी है जेहा काले कालना तेवे हो ना उपचारी है ऐसी कला ना खेडी है जित दरगाह गया हारी है पढ़िया अते उमिया विचार अगे विचारी है मुहे चले सो अगे मारी है। सलोक महला पहला नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवाओ जुग जुग फेर वटाई है ज्ञानी बुझ ताए सत जुग रथ संतोख का धर्म अगे रथवाओ त्रेत रथ जत का जोर अगे रथवाह द्वापर रथ तपै का सत अगे रथवाह कल युग

अच्छा साच रही सबको सच समावे। ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाई लय परास्त जाहे नानक तौ मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

वारिया, जित मिलिया खसम संभालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया, खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बन जा रिया, सत गुरु है बोहे था विरले किने विचारिया, कर किरपा पार उतारिया, सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मोच, हुए जे आवह आस कर जाहे नरासे केत, फल फिके फुल बक बके कामना आवह पत, मिठत नीवी नानका गुण चंगे आईया तत, सबको निवै आप कहो

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमे का महल पाए सी खसमे भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण कौ कर लावहु गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ कतेबा संजम तुरका भाई।

भाग तिन कर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेर धोती खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर होवह परवान मलेश पान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देखे चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सोच होवे ता सच पाई है पौड़ी।

वडो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्टी जे करे सुल्ताना काहू कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़ी है हाथ दलाल के मुस्फी एहे करे नानक अग्गे सो मिले जे खटे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय नानक सूतक एव ना उतर है ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाही पौड़ी। सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नदरी आईयां जां तिस पाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हाथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां सह टुठे नौ निध पाईयां। सलोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचे बैठा आए सुचे अगे रखियोन कोई ना पिट्यो जाए सुचा हुए कह जीविया लगा पढ़न सलोक को थी जाए सटिया।

आए फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीर्थ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसे हैं रंग रूवे हैं चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निरजास।

किसनो अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक।

कियो गुर चरण लाग हम बिनवता पूछत कह जियो पाया कमन काज जग उपजै बिनसै कहो मोहे समझाया देव करहु दया मोहे मार्ग लाभ हो जित पै

निया इन भेद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पायन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग वे हर के सं

आ मेरा मन पाया, हम पूत तेरा तू बाप मेरा, एकै ठाहर दोहां बसेरा, कहो कबीर जन एको बूझिया, गुर प्रसाद मैं सब किस सूझिया, आसा इकत पत्र पर उरकट कुरकट, इकत पत्र पर पानी।

आस पास पंच जोगी आ बैठे बीच नकट दे रानी नकटी कोठन गन बाडाडू किन्ह बबेकी काटी तू रहाऊ सगल माहे नकटी का वासा सगल मार ओहेरी सगलियां की हो।

आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तऊ मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तऊ मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

शंख बजावे वंश को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुण गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवै खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिद पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे।

पढ़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हों खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं ना बदौगा पाई। जोरे खुदाए मोहे तुर्क करेगा, आपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए। फर्द शरीरी नार ना छोड़े, तां ते हिंदू ही रही है। शाड़ कतेब राम भज बौरे, जुल्म करत है पारी। कबीर पकड़ी टेक राम की, तुर्क रहे पचिहारी। हासा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूझे सब।

कोई तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तोहे करी ना राख कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो कां को, कमन पुरख की जोई। ठट फूटे को बात ना पूछे, काढ़ो होई। देहरी बैठी माता रोए, खटिया ले गए पाई। लट छिटकाए तिरिया रोए, हंस के ला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, तै सागर कहताई। इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई। दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके। सनक सनंद अंत नहीं पाया, वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया। हर का बलोव ना बलोवो मेरे भाई, सहज बलोवो जैसे तत ना जाई रहाओ। तन कर मटकी मन माहे बलोई, इस मटकी मह शब्द संजोई।

कैन कहावन समझ परी तो बिसरे ओ गावन कहत कबीर पंच जो चूरे इनते नाहे परम पद दूरे आसा सोते अपरा।

खंडस अवगन मेरा रहाउ, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन मन

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाओ जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग पुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कछ तप ना कियो, 30 वर्ष कछ देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सोकृत कर कर लीजै रे मन रहाउ, कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई, काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई, सुमह धन राखण को दिया मुगद कह धन मेरा, जमका दंड मूंड मह लागे किन मह करै निवेरा, हर जाने उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई, जो तिस भावै सत

आसा तम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन भावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाउ रोजा धरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा घट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरी की। माटी एक पेख तर नाना ताम है ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक बू

पूरे चराए कह बिसियर को दूध पियाए सत संगत मिल बबेक बुद्ध हुई पारस परस लोहा कंचन सोई साकत सुआन सब करे कराया जो तुर लिखिया।

घर खबर ना पाई, क्या मांगू किस थिर ना रहाई, देखत नैन चल्यो जग जाई रहाउ, एक लख पूत सवा लख नाती, तेह रावण घर दिया ना बाती, चंद सूरज जाके तपतर सोई, बैसंतर जाके कपड़े धोई, गुरमत

पहला पूत पशहरी माई गुरला गो चेले की पाई एक अचंभो सुनो तुम पाई देखत सिंह चरावत गाई रहाओ जल की मछली तरवर ब्याई देखत कुतरा ले गई बलाई तले रे बैसा ऊपर सूला तिसके पेड़ लगे फल फूला कोरे चार भैंस चरावन जा।

राम रमत तिस सब किश सूजे, बाईस चौपदे तथा पंच पदे, आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे आठ, दो तुके सत, एक तुका एक, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, दस मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म भूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकरे, तब है काहे रोया, जीव न की आस करह, जम ने

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आस वड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतके आए कोट ते तीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरों रे सखी सहेली।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधिया मैं राम रमत सुख पाया।

पढ़ो गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब के

तार चिरायु हो कैसे खसम हमारे तू बामन मैं कांसिक जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जै पासना देख आग काल पासना मुग्ध चेतै कनक कामन लाग कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब खुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई अब मोहे लाचनो न आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मह तेरा सोच विचार ना देख खबर ना कर है दीन के बौरे ता ते जन्म अलेख रहाव साचक तेब बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे जो दिल में

जियो के दुपदे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हीरे हीरा बेद पवन मन, सहजे रहे आसमाई, सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो, जब गुर गम दिया दिखाई। हासा पहली कुरूप कुजात कुलखनी, सोहरे पेये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की तरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे, जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा, बिटवह राम रम।

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़ रहाउ। घूंघट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तौ पर साचे हर गुण गाए कूदह अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा करवत भला ना करवट तेरी लाग गले।

जाना सब जागे अनतनायो ताना रहाओ जब तुम सुन ले बेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना तरन आकाश की कर गह बनाई चांद सूरज दोए साथ चलाई पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछ।

जे तीरथ नावै तिस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवै, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई। दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

एक मन सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाउ जल तरंग हर फेन बुद बदा जल ते भिन्न न होई एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचर ध्यान न होई मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया कहत नाम देओ हर की रचना देखो हृदय बिचारी घट घट अंतर सर्ब निरंतर केवल एक मरारी हासा आनी ले कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं बयालीस लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हां पूज करूं पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती माप माप काटो जम की फासी कहां करूं जाती कहां करूं पाती।

अरे अपना खसम त्याव सोने की सुई रुपे का तागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साफ कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को की जय ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जान।

घर जन्म दैला गुर उपदेश पहला संत है कह प्रसाद नामा हर भेटला आसा बाणी श्री रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाद जाम है ता की केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाओ त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन भय हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

ऊंच पए हैं गंध सुगंध निवासा माधो सतसंगत शरण तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ओछा पाती ओछा ओछा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रा मैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधो तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता।

ऐ सुने बोले दौरियो फिरत है रहाउ, जब कछ पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है, मन बच क्रम रास कसै लुभाना।

तन्ने जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने तन मन धन नहीं धीरे लालच बेख काम लुभ दराता मन बिसरे प्रभ हीरे रहाउ बिख फल मीठ लगे मन बौरे चार विचार ना जानिया गुण ते प्रीत बड़ी अनपांति जन्म मरण फिर तानिया जुगत जान नहीं हृदय निवासी जलत जाल जम फंद परे बिख फल संच परे मन ऐसे परम पुरख प्रभ मन बिसरे ज्ञान प्रवेश गुरह धन दिया ध्यान मान मन एक मई प्रेम भगत मानी सुख जानिया तृप्त अगाने मुक्त भये जोत समाए समानी जाकै अशली प्रभ पहचानिया धने धन पाया धरनी तर मिल जन संत समानिया महला पंजवां गोविंद गोविंद गोविंद सा

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजै बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनहूम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

मन पीरिया कंचन मन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहे आ जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजुलिया से आले सोहंदिया फिर गल बाहड़िया चले चलन हार बचारा ले मनो गा डेंदिया छे माह तुड़ंदिया हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे।

कारण आधार जा की भगत करह जन पूरे मुन जन सेवह गुर विचार रहाव राव सस दीपक जा के त्रे भवन एका जोत मरार गुरमुख होए सो अहनस निर्मल मनमुख रहन अंधार सिद्ध समाद करह नित झगरा दोह लोचन क्या हेरै अंतर ज्योत शब्द धुन जागै सतगुर झगर नबेरै सुर नर नाथ बेअंत अजोनी साचे महल अपारा नानक सहज मिले जग जीवन नदर करहो निस्तारा राग गुजरी महला तीजा कर पहला।

आओ। हर मेरा सिमरत, हर मेरा शास्त्र, हर मेरा बंदप, हर मेरा भाई, हर की मैं भूख लागे, हर नाम मेरा मन तृप्त है, हर मेरा साक अंत होए सखाई, हर दिन होर रास।

आए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राए तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझै कोई नानक विचों हउमै मारे तां हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभिमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझै हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पार सो होवै।

रहे ता भरम बिचों जाए रहाऊ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताए एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए हथ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाए नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आए जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाए गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाई जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख तू ता मन निर्मल होई रहाओ सतगुर मिले मन संतोखी है ता फिर तिछना भूख ना होए नाम निधान पाया पर कर जाए ना कोई कथनी बदनी जे करे मनमुख।

जो आप ना पछाने सच ना धरे प्यार सच्चे जगत दहकाया कहना कछु ना जाए नानक जो तिस पावे सो करे ज्यों तिस की रजाए एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गुजरी महला चौथा चौपदे घर पहला हर के जन सतगुर सतपुरखा।

देव मोकौ राम नाम पर जास गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भारहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध

मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सतगुर सरनाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिन नावै त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावै, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सर

ता गुरमुख सखी सहेली मेरी मोको देवो दान हर प्राण जिवाया हम हो वह लाले गोले गुर सिखा के जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया मेरा मन तन बिरहो गुर सिख पग लाया मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ जां हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया वड भागी गुर के सिख प्यारी हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया सत संगत गुर की हर प्यारी जिन हर हर नाम मीठा मन पाया जिन सतगुर संगत संग ना पाया से भागहीन पापी जम खाया आप कृपाल कृपा प्रभ धारी हरे आपे गुरमुख मिले मला।

था जिन सतगुरु पुरख जिन हर प्रभु पाया मोको कर उपदेश हर मीठ लगावे मन तन शीतल सब हरिया हुआ वड भागी हर नाम।

मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावे रहाव। तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नाम हर सिंह चित लावे। अमृत बचन सतगुर की बाणी, जो बोले सो मुख अमृत पावे। निर्मल नाम जित मैल न लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावे। नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, ते भागहीन मोहे मर जावे। आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को आनंद करहो हर त्यावे। तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मलावे। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा घर तीजा। माई बाप पुत्र सब हर के किए, सबना कौ संबंध हर कर दिए। हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर, हर का तन मन सब हर के वस है। शरीर रहाउ भगत जना कौ श्रद्धा आप हर लाई, विचे ग्रिस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ भाई। जित

हर लाई, सो हम करहें जो आप कराई। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवां, चौपदे घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवह उदम, जा आहार हर जियो परया। सैल पत्थर मह जनते उपाय, ता कारजक आगे कर तरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया। गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई ना किसकी तरिया। सिर सिर रिजक

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल ना उतरे हुमे बिन गुर बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

तात हिन मह थाप उथापन हारा आपन हाथ मतांत स्यान पकाहू काम नायात जो अनुरूपे हो ठाकुर मेरे होए रही ओह बात रहाओ देश कमावन धन जोरन की मनसा बीचे निकसे सास लश्कर नेब खवास सब त्यागे जम पुरूठ सदास होए अनन मन हट की दृढ़ता आप सुकौ जानात जो अनिंद निंद कर छोड्यो सोई फिर खात सहज सुपाई पई।

जिस मालुख पह करो बेनती सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटे प्रभ तज अवर सेवक जे होई है तित मान महत जस काटे।

पदे कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, दुख बिन से सुख किया निवासा, तृष्णा जलन बुझाई, नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

साध संगत मिल छूटे रहाउ आठ पैर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता हरख सोग दोह माहे नराला करने हार पछाता जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बने आई कहो नानक प्रभ पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई गुजरी महला पंजवा दो पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए करे अपने सगल करत नमचकारु वर्ण जात को पूछे नाही बांछ चरण रवारु ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारु सगल श्रेष्ठ को तनी की जय जन को अंग नरारु रहाउ साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारु नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु मुक्त पयो चमियारु गुजरी महला पंजवा है नाही को बूजन हारु जान कमन पता शिव ब्रंच अर सगल मोन जन गह नास काहे गता प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिए अवर अवर बिद बुझ।

आराधु प्यारू निमखना की जय ढीला संत सेवा कर पावनी लाइय त्याग मान हठीला मोहन प्राण मान रंगीला बास रहे ओ ही अरे कह संगे देख मोहयो मन लीला रहाउ जिस सिमरत मन होत अनंत।

पंजवा मन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपने ही तीन देव अर कोड़ तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साधते भागी होए केरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

सगल निहोरा गुजरी महला पंजवा आल जाल भ्रम मोहत जावे प्रभ सेती रंग लाई मन को एह उपदेश दृढ़ावे सहज सहज गुण गाई साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटह माया बंद बिसरना कबहू जाई रहाओ करत करत अनक बहु भांति।

जोहत धरी त्याई अपनो सदा हरी सोच अंदेसा ताका कहां करिए जा मह एक करी रहाओ तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी अचेत याने बारक नानक हम तुम राखो तार करी गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बस हो मेरे मन माही चरण कमल रिदमाहे समाये तह परम अंधेरा नाही ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही को प्रभ आही नानक टेक पई करते की होर आस बढ़ानी लाही गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निसे अर भोर।

नानक रंग राती हर दास है पैज रखाइए गुजरी महला पंजवां विश्वंबर दियन को दाता भगत।

चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिवलाव पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

कीता। मिल साध बचन गोविंद त्याई महा निर्मल रीत रहाउ। जाप ताप अनेक करनी सफल सिमरत नाम। कर अनुग्रहो आप राखे भये पूर्ण काम। सास सास ना बिसर कबहू ब्रह्म प्रभ समरथ। गुण

काम क्रोध अहंकार तजियले, लोभ मोह तिस माया, मन तत अवगत त्याया, गुर प्रसादी पाया, ज्ञान ध्यान सब दात कथियले।

चिन्ना मद्दम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग पाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस पावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेख करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई ऐ जी गुर की दात ना मेटै कोई मेरा ठाकुर आप दिवाई।

आई तू वड पुरख अगम तरोवर हम पंखी तुझ माही नानक नाम निरंजन दीजै जुग जुग शब्द सलाही गुजरी महला पहला घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद भगत प्रेम आराधितं सच प्यास परम हितं बिललाप बिलल विनंतिया सुख पाए चित हितं जप मन नाम हर सरनी संसार सागर तार तारन राम नाम कर करनी रहाओ ए मन मिर्त शुभ चिंतन गुर शब्द हर रमन मत तत ज्ञान कल्याण निधान हर नाम मन रमन चल चित वित ब्रह्मा भ्रमं जग मोह मग्न हितं हिर नाम भगत दृढ़ मती गुरवाक शब्द रतन परमात भरम ना चूकई जग जन्म ब्याद खपं अस्थान हर निह केवलं सतमती नाम तपं एहो जग मोहेत व्यापतं दुख अधिक जन्म मरनं भज सरन सतगुर उबरह हर नाम रिद रमन गुरमत निश्चल मन मन मनं सहज विचारं सो मन निर्मल जित साचे अंतर ज्ञान रतन सारं तै पाए भगत तर पवजल मना चित लाए हर चरनी हर नाम हृदय पवित्र पावन एहो शरीर तौ सरनी लभ लोभ लहर निवारण हर नाम रास मन मन मार तुही निरंजना कहो नानका सरन गुजरी महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद निरत करी एहो मन चाई गुर प्रसादी आप गवाई चित थिर राखै सो मुक्त होवै जो इच्छी सोई फल पाई नाच रे मन गुर कै आगै गुर कै भाणै नाच है ता सुख पावै अंते जम पौ भागै रहाउ आप नचाए सो भगत कहियै अपना प्यार आप लाए आपे गावै आप सुनावै इस मन अंधे को मार्ग पाए अन दिन नाचै सकत निवारै शिव कर नींद न होई शक्ति घर जगत सूता नाचै तापै अवरो गावै मनमुख भगत न होई सुर नर विरत पक करमी नाचे मुन जन ज्ञान बीचारी सिद्ध साधक लिव लागी नाचे जिन गुरमुख बुद्ध बीचारी खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे जिन लागी हर लिव तुमारी जी जंत सबे ही नाचे नाचे हैं खानी चारी जो तुद भाव है से ही नाचे हैं जिन गुरमुख शब्द लिव लाए से भगत से तत ज्ञानी जिन को हुक्म मनाए एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागै

ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यो बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई। जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है। अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई। तिनकी पैज सुवारी

संत जना की कथा न पावे कोई डूबे सन परवारी निंदक निंदा कर मालत होवे ओह मालपख माया धारी संत जना की निंदा व्यापे ना उरवार ना पारी एहो परपंच खेल किया सब करतै हर करतै सब कल धारी हर एको सूत वरतै जोगे अंतर सूत खिंचै एकंकारी रसन रसन रस गावह हर गुण रसना हर रस धारी नानक हर बिन अवर

भय त्रास नाश कृपाल गुण निद सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुध करना में चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

बेकार राख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक श्री धर पये गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस है रीत देत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

पौड़ी अपना आप अपायन तदहो होर ना कोई मता मसूर ते आप करी जो करे सो होई तदहो आकाश ना पताल है ना त्रै लोई तदहो आपे आप निरंकार है ना उपत होई ज्यों तिस भावै तिवें।

नानक हुक्म बुझ परवान होए ता फल पावे सच कतनी बदनी करता फिरे हुक्मे मूल ना बुझेई अंधा कच निकच पौड़ी संजोग वजोग उपायन सृष्टि का मूल रचाया हुक्मी सृष्ट साजियन ज्योति ज्योत मलाया ज्योति हूं सब चानना सतगुर शब्द सुनाया ब्रह्मा विष्णु महेश त्रै गुण सिर तंदे लाया माया का मूल रचायन तुरिया सुख पाया श्लोक महला तीजा सो जप सो तप जे सतगुर भावे सतगुर कै भाणे वडियाई पावे नानक आप छोड़ गुर माहे समावे महला तीजा गुर की सिख को विरला लेवे नानक जिसे आप वडियाई देवे पौड़ी माया मोह अज्ञान है बिखम अत भारी पत्थर पाप बहु लद्या क्यों तरिये तारी अन दिन भगती रत्या हर पार उतारी गुर शब्दी मन निर्मला हूं मैं छट बेकारी हर हर नाम त्याई है।

आए, तिसकी सेवा जो करे तिस ही को फिर खाए। गुरमुख कोई गारडू इन मल दल लाई पाए, नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए। पौड़ी ढाडी करे पुकार प्रभु सुनाए सी, अंदर धीरक होए पूरा पाए सी। जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी, जां होए खसम दयाल ता महल घर पाए सी। सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी। सलोक महला तीजा, सबना का सहो एक है सदी रह हजूर। नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर। हुक्म पी तिना मनाए सी, जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया। प्रेम सुहागण होए महला तीजा, रैन सबाई जल मुई कंतना लायो पावो। नानक सुख वसन सुहागणी, जिन प्यारा पुरख हर राव। पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया, हर इको दाता उपाए किते ना पाईए। हर कर्म बधाता गुर शब्दी, हर मन वसै हर सहजे जाता। अंदरों तृष्णा अग्न बुझी, हर अमृत सर नाता। वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता। सलोक महला तीजा, काया हंस क्या प्रीत है जे पया ही छड जाए। ऐसनों कूड़ बोल के खवाली है जे चलदिया नाल।

नानक हुकम ना जातू खसम का, जे रहा सच सुमाए महला तीजा। एको निश्चल नाम धन होर धन आवे जाए, इस धन को तस्कर जोहे ना सकई ना उ चक्का ले जाए। एहो हर धन जीए सेती रव रहिया, जीए नाले जाए। पूरे गुरते पाईए मनमुख पल्ले ना पाए, धन वपारी नानका जिन्ना नाम धन खटिया आए। पौड़ी मेरा साहिब अत वड्डा सत गहर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुर प्रसादी पाई है निश्चल धन धीरा,

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजै नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै

है काम क्रोध अहंकारा यह जम की सरकार है इना ऊपर जम का दंड करारा मनमुख जम मग पाईन

पाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विचों जाए। तन मन होवै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए महला तीजा। एहो मन के तड़िया जुग भरमिया, फिर रह न आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेल उपाय, जां हर बख्शे ता गुर मिलै, अस्थिर रह समाई।

आसक्त होगी। आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर जोगी, जो तिस भाव है सो करे हर करे सो होगी। हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी। श्लोक महला तीजा। वाह वाह आप अखाएंदा गुर शब्दी सच सोए, वाह वाह सिफत सलाह है गुरमुख बूझै कोय। वाह वाह बाणी सच है सच मिलावा होय, नानक वाह वाह करत्या प्रभ पाया कर्म प्राप्त होय। महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागिया वाह वाह मुंह कढ़ाई, वाह वाह करह सही जन सोहने तिन कौ परजा पूजन आई। वाह वाह कर्म प्राप्त हुए नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी भरम भूले नदर ना आवनी। मन मुखियां दे अज्ञानी उपाय कितै ना लभनी, कर भेख थके भेखवानी।

लाए, वाह वाह करमी बोले बुलाए, वाह वाह करतियां सूबा पाए, नानक वाह वाह सतर जाए, महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है, गुरमुख लद्दी भाल, वाह वाह शब्द उच्चरै, वाह वाह हिरदै नाल, वाह वाह करतियां हर पाया, सहजे गुरमुख भाल, सेवड भागी नानका, हर हर हृदय संभाल पौड़ी, ए मना अत लोभिया, नित लोभे राता, माया मनसा मोहनी, दह दिस फराता, अगै नाऊ जात न जाए सी, मन मुख दुख खाता, रसना हर रसना चखे हो, फीका बोलाता, जिन्ना गुरमुखे अमृत चाखिया, से जन त्रिपताता, सलोक महला तीजा, वाह वाह तिसनु आखिया, जे सच्चा गहर गंभीर, वाह वाह तिसनु आखिया, जे गुणदाता मत धीर, वाह वाह तिसनु आखिया,

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुरे अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भये अचिंत हर धन ने चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उच्चा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो बरसना ता बरस घना बहुल बरसह काहि। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहि। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास। नानक गुरमुख जानिए जा को आप करे प्रगास। पौड़ी प्रभ पास जन की अरदास तू सच्चा साई। तू रखवाला सदा सदा हो तुद त्याई। जी जंत सब तेरिया तू रहया समाई। जो दास तेरे की निंदा करे तिस मार पचाई। चिंता छद चिंत रहो नानक लग पाई। श्लोक महला तीजा आस्था करता जग मोआ आस्था मरे ना जाए। नानक आस्था पूरिया सच्चे स्यों चित लाए। महला तीजा आस्था मनसा मर जाए सी जिन कीती सो लै जाए। नानक निश्चल को नहीं बाजों हर कै नाए। पौड़ी

कहो नानक कृपा करे जिसनो एह वत दे जग मह उत्तम कांडी विरले के महला पंजवा रखे रखन हार आप उबारियन

पौड़ी। नित जपिया सास ग्रास नाओ परवदगार दा, जिसनो करे रहम तिस ना वसार दा, आप उपावन हार आपे ही मारदा, सब किस जाने जान बुझ विचार दा, अनक रूप खिन माहे कुदरत धार दा, जिसनो लाए सच तिसे उधार दा, जिस दै हुए वल सो कदे ना हारदा, सदा भग दी बाण है हों तिस नमस्कार दा। श्लोक महला पंजवां। काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजै अग्न जलाए, जीव दे अनित जापिए, नानक साचा नाओ महला पंजवां। सिमरत सिमरत प्रभ अपना।

जपतियां पहुंच ना सकै कोई तेरी टेक जन। गुरपूरे वाह वाह सुख लहां चितार मन। गुरपह सिफत भंडार करमी पाई है। सतगुर नदर निहाल बहुड़ ना ताई है। रखै आप दयाल कर दासा अपने। हर हर

जिन संग जपिया नाउ तिन संग संग ना कीचई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी सा वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निश्चल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुको बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुर ना खोटिया सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

आप दया तारी समरथ चुके बिल बलाप नथे ताप दुख रोग पूरे गुर प्रताप कीतियां ने अपनी रख गरीब नवाज थाप आपे लयन छडाए बंधन सगल काप तिसन बुझी आस पुन्नी मन संतोख तराप।

नानक प्रीत लगी तिन राम सिंह भेटत साध संगात महला पंजवा राम रमहु बड़ भागी हो जल थल महियल सोए नानक नाम आराध्य है।

जाए गुर समरथ देव गुरपार ब्रह्म परमेश्वर अपरंपर अलख अभेव सलोक महला पंजवा उदम करेंद्या जियो तू कमाव दया सुख पुंच त्याए दया तू प्रभु मिल नानक उतरी चिंत महला पंजवा शुभ चिंतन गोविंद रमन निर्मल साधु संग नानक नाम न ना विसरो एक घड़ी कर किरपा भगवंत पौड़ी तेरा कीता हुए ता काहे डरपीए जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अर्पिए आया चित निहाल साहिब बेशुमार तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार सब किश तिस कै वस न कोई बाहरा सो भगता मन बुठा सच समाहरा तेरे दास ध्यान तुद तू रखन वालिया सिर सबना समरथ नदर निहालिया।

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित जिसे पलाए आप मर मर जमे है नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खब सकह हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर।

तो हम हर की सेवा गुजरी कर पहला मलै न लाछे पार मलु परम लियो बैठो री आई आपत किने ना पेख्यो कमने जाने री बाई कौन कह किन बुझिए रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यो अकाश पंखी अलो खोज निरख्यो ना जाई ज्यो जल

मरै बेसवा जून वल वल अवतरै अंत काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंत काल जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै

अंतर जार। कोई भला कहो भावे बुरा कहो, हम तन दियो है ढार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा धार। जन नानक शरण तुम्हारी हर जियो, राखो हो लाज मरार। देव गंधारी हर गुण गावे हों तिस बलिहारी, देख देख जीवा साध गुर दर्शन। जिस हृदय नाम मरारी रहाओ, तुम पवित्र पावन पुरख प्रभ स्वामी। हम क्यों कर मिल है जूठारी, हमरे जिये होर मुख होर होत है। हम कर्महीन कूड़ियारी, हमरी मुदर नाम हर स्वामी। हृदय अंतर दुष्ट दुष्टारी, ज्यों पावै त्यों राखो स्वामी। जन नानक शरण तुम्हारी देव गंधारी, हर के नाम बिना सुंदर है नकती। ज्यों बेसवा के करपूत जमत है, तिस नाम परयो है त्रक्ति रहाओ। जिनकै हृदय नाही हर स्वामी, ते बिगड़ रूप बेरक्ति। ज्यों नुगुरा बहु बाता जाने, ओह हर दरगाह है प्रस्ती। जिनको दयाल हुआ मेरा स्वामी, तिन्ना साध जना पग चकती। नानक पतत पवित मिल संगत, गुर सतगुर पाते शुक्ति। छका एक देव गंधारी महला पंजवां, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। माई गुर चरणी चित लाई है,

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कुल हीन नानक हों आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

ज्ञान जिन तारा तिसह त्याग अवर लपटावे हैं मर जन्म है मुग्ध गुआरा अंध गुंग पिंगल मत हीना प्रभ राख हो राख नहारा करन कराम नहार समर्था।

आवे नरक रोग नहीं होवत जन संग नानक जिस लड़ लावे देव गंधारी पंजवा चंचल सुपने ही पुर जायो इतनी ना बूझे कब हूं चलना विकल भयो संग मायो रहाओ कुसम रंग संग रस रचिया विखिया एक उपायो लोभ सुने मन सुख कर मान बेग तहा उठतायो फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहु अनग्रहु स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन मह इहो सुख धारो गुण गावह ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारो नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए उड़ धारो देव गंधारी महल।

परमाइय टिकन्ना पावे बिन सत्संगत किसे आगे जाए रुआई है करह अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चेतलाई है संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाई है देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुई कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया

जब चितवो तब तुहारी, उन समाहार मेरा मन साधारी, सुन गावो गुरबचनारी, बल बल जाऊं साध दरसारी, मन मैं राखो एक असारी, नानक प्रभ मेरे करने हारी, देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ यह मनोर

पाए। छोड़ न जाए सद ही संगे, अन दिन गुर मिल गाए रहाओ। मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना, त्याग न कतहू जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे, प्रिय रोम न समसर लाए। मंदर भाग सोभ द्वार, अनहत रुण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग मान।

गुरुचरण तो उत्तरी सगल दुराख्य देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोह।

दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गाव है हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिख बन तरिया कुल है समूह उधारियो चरण कमल बसिया रिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीश्वर पुनः पुनः बलिहारियो राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन भेख मोहन रहत नराग।

नानक तिन भव जल तरियले प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा कर पंजवा।

चार बरन मुक्त भये सेव तो गुर शब्द दृढ़ाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कहो नानक पव सागर तरिया।

जान रहाल। काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई, रवियारी रविया सर्वथान। ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संजम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, मिल संगत ताज अभमान।

कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व सिद्ध अरसादक सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर वेद उचरत दिन रात।

ताकत स्यों करे उतीरे झूठै कीरे झूठ प्रीत छुटकी रे मन छुटकी रे ताकत संग ना छुटकी रे रहाओ ज्यो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू कीरे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा ने।

करै रहाउ। मद माया कै भयो बावरु, हर जस नह उचरै। कर पर पंच जगत को डहकै, अपनो उधर भरै। स्वान पूछ ज्यों होए ना सूदो, कहो ना कान धरै। कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरै। देव गंधारी महला नवा, सब किश जीवत को व्यवहार। मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव। तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीर्थ प्रेत पकार। आद करी को नह राखै, घर ते देत निकार। मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार। कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार। देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं झूठी।

पोयं गन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहु बंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा।

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए, हर हर नाम त्याए राम, हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए, जन नानक नाम समाए राम, हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए, ज्यों बालक लग दुध कीरे राम, हर बिन चातना पाईऐ मेरी जिंदड़िए, ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम,

फिर मरदा बहुड़ जीव आया राम। जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, इनके सब दुख गवाया राम। अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम। पतत पवित्र गुर हर।

निंदड़िए हर अमृत हर तरना राम अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम बिहागड़ा महला चौथा हौ बलिया।

लड़िए भिख पौ जल तारन हारू राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जय कारू राम नानक हर जप सुख

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले सोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगै गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिए है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चले सह राम। नानक तिन विटों वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मने सह राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हिरदा शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झाख मारन।

मिल साधु संग अगाणी राम। हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए, जप हर हर कृष्णा जाए राम। जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए, तिस मन नाम वसाए राम। जिस भेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए, सो हर धन निध पाए राम। वडभागी संगत मिले मेरी जिंदड़िए, नानक हर गुण गाए राम। थान थनंतर राव रहे आ

सहस सियाणप नह मिलै मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवां शंत घर पहला।

भाइयो, हर हर नाम अराधे राम, कर सेवो हो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो, जम का मार्ग साधे राम, मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख, हर दरगहा सुबा पाईए, जिनको बधाते तुरहु लिखिया, तिन्ना रहन दिन लिव लाईए, हौ मैं ममता मोह छुट्टा, जां संग मिलिया साधे, जन कह नानक मुक्त हुआ, हर हर नाम अरादे, कर जोड़े हो संत इकत्तर होए मेरे लाल जियो।

तूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते। नित देहे चढ़ सो आया, रिद सिद्ध नव निद हर जप। जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक वड भाग पाई है, साध साजन मीता जिन्नी सच वणंजिया हर।

जो जन प्रभ सिउ रातिया, एक जन है एक मन है, राम कै रंग मातिया, लग संत चरनी पड़े सरनी, मन तिना उमाहा, बिनवंत नानक जिन नाम पल्लै, से सच्चे साहा, नानक सोई सिमरिय हर जियो, जाकी कल धारी राम, गुरमुख मनु

संत प्रसाद तरे पवजल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन शांत आई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर एछ पुन्नी हमारी बिहागड़ा महला पंजवां घर दूजा।

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाई है, प्रभ ते आई है, जाहे मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, हर पतन तन एहो मना, बड पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भगे है।

ने प्रभ एक अगम अपारु बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रुण चुनकारु सुन बड़ भागिया हरे अमृत बाणी राम जिनको कर्म लिखी किस हृदय सुमानी राम अकथ कहानी तिन्नी जानी जिस आप प्रभ कृपा करे अमृतिया फिर नाम हुआ कल कलेशा दुख हरे हर सरन पाई तज ना जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाइए पवित्र अमृत बाणी मन तन गलत भये किस कहन ना जाई राम जिस ते उपजेड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया।

0: तपत न कत है बुझे बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, नाथ निर्गुण कछ ना जाना।
1: मेरा गुण अवगुण न बिचारी है,
0: दीन दयाल गोपाल प्रीतम। समरथ कारण करना नानक चातर कहर।

सांग मिले जप पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख बदीरन हर निमख मन होना बीसर आनंद अनदिन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर अगणत ऊच अपार ठाकुर अगम जाको तामा बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन मिले श्री रंग रामा कई कोटक जग फला सुन गावन हारे राम हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम हर नाम जपत।

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

गुण गपालना जप है रसना, फिर कदहो से देह आवे, तरवर सुन्ने नह पात जुड़ते, जम मग गौन अकेली।

कल्याण मैं प्रगट भये तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाही, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाही, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई है, बिन नाम हर के आन रचना, अहला जन्म गुआ।

पछताने तार अनग्रहो अपना कर लीना राम पूजा गह काग लियो साधु संग दीना राम साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले रसना अरादे एक स्वामी हर नाम मन तन पीना नानक जिसनो

करी कार्य सुहावा हुई मनमुख मूलो भुलायन विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अनदिन गुदरे शब्द ना करे विचार शुद्ध मत करता हिर लई बोलन सब विकार दिता कितै ना संतोखियन अंतर तृष्णा बहुत अज्ञान अंधार नानक मनमुखा नालों टुटिया भली जिन्ना माया मोहे प्यार महला तीजा तिन भव संसा क्या करे जिन सतगुर सिर करतार तुर तिन की पैज रखदा आपे रखण हार मिल प्रीतम सुख पाया सच्चा शब्द विचार नानक सुख दाता सेविया आपे परखण हार पौड़ी जी जंत सब तेरिया तू सब नारास जिस तू देहे तिस सब किश मिले कोई होर शरीक नाही तुद पास तू इको दाता सब सदा हर पह अरदास जिस दी तुद भावै किस दी तू मन लै है सो जन सबास सब तेरा चूज वरतदा दुख सुख तुद पास सलोक महला तीजा गुरमुख सच्चै भावंदे दर सच्चै सच्यार साजन मन आनंद है गुर का शब्द विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखण हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।

तुद जेवड़ होर शरीक होवै ता आखिए, तुद जेवड़ तू है होई, जिन तू सेवया तिन सुख पाया।

आय गुर का शब्द संभाल तू मूड़े गत मत शब्दे पाए नानक सतगुर तद ही पाए जा विचों आप गवाए पौड़ी जिस दै चित वसया मेरा स्वामी तिसनो क्यों अंदेसा किसै गल्ले दा लोड़ी है हर सुख दाता सबना गल्लां का तिसनो त्याए दिया केव निमख घड़ी मुंह मोड़ी है जिन हर त्याया तिसनो सर्ब कल्याण होए नित संत जना की संगत जाए बहिया मुंह जोड़ी है सब दुख भुख रोग गए हर सेवक के सब जन के बंधन तोड़ी है हर कृपा ते हुआ हर भगत।

जगत तरिया सब लोड़िया। सलोक महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का स्वाओ ना पाया, नानक रसना शब्द रसाए, जिन हर हर मन वसाया। महला तीजा, सारस ना जल जाओ, जिन हर का नाव वसारिया, नानक गुरमुख रसना हर जपै, हर कै नाई प्यारिया। पौड़ी हर आपे ठाकुर सेवक भगत, हर आपे करे कराए, हर आपे वेखै विगसै आपे, जित पावै तित लाए। हर इक ना मार्ग पाए आपे, हर इक ना उजड़ पाए, हर सच्चा साहिब सचत पावस, कर वेखै चलत सुबाई।

आए। गुर कै शब्द मन तन भिजे आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईए आपे लय मलाई पौड़ी। आपे वेद पुराण सब शास्त्र आप कथै आप भिजे। आपे ही बह पूजे करता आप परपंच करीजे। आप परविरत आप निर्विरति आपे अकथ कथीजे। आपे पुन सब आप कराई आप लिप्त वर्तीजे। आपे सुख दुख देवै करता आपे बख्श करीजे। श्लोक महला तीजा। सेखा अंदर हो जोर छड तू पहो कर झल गवाए। गुर कै भय कीते निस्तरे भय विच निरभउ पाए। मन कठोर शब्द भेद तू शांत वसै मन आए। शांति विच कार कमावनी सा खसम पाए थाए। नानक काम करो।

आपे खांडवर भांड करे आप समुंदे आप है सागर आपे ही विच रतन धरे आप लहाए करे जिस कृपा जिसनों गुरमुख करे हरे आपे

मंडन आपे सब कट भोग वै स्वामी आपे ही सब अंजन आप विवेक आप सब बेता आपे गुरमुख भंजन जन नानक सलाहे ना रजै तुद करते तू हर सुख दाता वडन। सलोक महला चौथा बिन सतगुर सेवे जी के बंदना जेते कर्म कमाहे बिन सतगुर सेवे खबर ना पावही।

पर बुझै सब आपे, एक थै आपे करे इयाणी, इकना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाणी, जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगह जानी। सलोक मर्दाना पहला, कल कलवाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोहे भरी, पीलावा अहंकार, मजलस कूड़े लभ की, पी पी होए खुआर, करनी लाहन सत गुड़, सच सरा कर सार, गुण मंडे कर सील के हो, शर्म मास आहार, गुरमुख पाइए नानका, हद है जाहे विकार। मर्दाना पहला, काया लाहने आप मद, मजलस तृष्णा तात, मनसा कटोरी कूड़ भरी,

सलाहा मंडी पौ मास आहार नानक एहो भोजन सच है सच नाम आधार काया लाहन आप मद अमृत किस की धार सत संगत स्यों मिलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी पी पी कट है बेकार पौड़ी आपे सुर नर गण गंधर्वा आपे खट दर्शन की बाणी आपे सेव संकर महेशा आपे गुरमुख अकथ कहानी आपे जोगी आपे भोगी आपे सन्यासी फिरै बिबाणी आपे नाल गोसत आप उपदेसै आपे

हरस्यों प्रीत उपजै, माया मोह जलावै, गुर प्रसादी दुगदा मरै, मनुआ अस्थिर संध्या करे विचार। नानक संध्या करै मनमुखी जियो ना टिकै, मर जम्मै होए खुआर महला तीजा। प्रियो प्रियो करती सब जग फिरी, मेरी प्यास ना जाए। नानक सतगुर मिलिया मेरी प्यास गई, फिर पाया घर आए पौड़ी। आपे तंत परम तंत सब आपे, आपे ठाकुर दास भया, आपे दस अठ वर्ण उपायन। आप ब्रह्म आप राज लया, आपे मारे आपे छोड़ै, आपे बख्शे करे दया। आप अभुल ना भुलै कब ही,

पावै, आपे सतगुर मेल सुख देवै, अपना सेवक आप हर पावै, अपने सेवका की आप पैज रखै, अपने भगतां की पैरी पावै, धर्म राए है हर का किया, हर जन सेवक नेड़ ना आवै, जो हर का प्यारा।

नानक गुरमुख पाई जा कौ नदर करी पौड़ी आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वर्तदा आपे ही जाहर जुग शक्ति गुबार कर वर्त्या सुन्ना हर उथै वेद प्राण ना सासता आपे हर नर हर

चूड़ा भन पलंग स्यो मुंदे सन बाही सन बाह एते वेश करेंदिए मुंदे सहो रातो अबराह ना मनियार ना चूड़िया ना से बंगड़िया जो सह कंठ ना लगिया जलन से बाहड़िया सब सहिया सहो रावण गईया हों धाती कै दर जावा अम्माली हों खरी सुचजी तैं सह एक ना पावा माठ गुंदाई पट्टिया भरिए मांग सदूरे अगै गई ना मनिया मरो वसूर वसूरे मैं रवंदी सब जग रुन्ना रुनने बणो पंखेरू एक ना रुन्ना मेरे तन का बिरहा जिन्हो पिरहो विछोड़ी सुपने आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए ना सका तुझ कन प्यारे भेज ना सका कोई।

मलाया, पूरे सतगुर हर नाम त्याया रहाय। ब्रह्म वेद बाणी परगासी, माया मोह पसारा, महादेव ज्ञानी वरतै घर अपने, तामस बहुत अहंकारा।

देहे शरीर सुख होवै शब्द हर नाय, नाम परमल हृदय रहया समाय। नानक मस्तक जिस वड भाग, गुर की बाणी सहज बैराग। वडहंस महला तीजा, पूरे गुर ते नाम पाया जाए।

ज्ञान आए, परमे भूला फिरे संसार, मर जन्मे जम करे खुआर, नानक से बड़भागी जिन हर नाम ते आया, गुर प्रसादी मन वसाया।

जिन तेर रावया सा भली सुहागण से मैं गुण नाही हों क्या करी दोहागण नित

मैं निर्गुण बख्श नानक वेचारा। वडहंस महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं मन वड्डी आस हरे, क्यों कर हर दर्शन पावा। हौ जाए पुछा अपने सतगुर, गुर पुछ मन मुग्ध समझावा। भूला मन समझे गुर शब्दी, हर हर सदा त्याए। नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा, तो हर चरणी चित लाए। हौ सब वेश करी पिर कारण, जे हर प्रभ साचे पावा।

सो हर हर सदा संभाली, सो हर हर नाम सदा सदा संभाली, जिस सतगुरु पूरा मेरा मिलिया, नानक हर जन हर इक्के होए, हर जप हर सेती रलिया। वडहंस महला पंजवा घर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नाही किश।

कोट कोट कोट लख तावे, एक तिल ताका महल ना पावे। सहावी कौन सो वेला, जित प्रभ मेला रहाउ। लाख भगत जाको अराध है, लाख तपीसर तप ही साध है। लाख जोगीसर करते जोगा, लाख पुगीसर भोग है भोगा। कट कट वस है जान है थोरा,

संतन पह आया, दुख भ्रम हमारा सगल मताया, महल बुलाया प्रभ अमृत पूंचा, कहो नानक प्रभ मेरा ऊंचा, वडहंस महला पंजवां, धन सो वेला जित दर्शन करना।

श्रेष्ठ सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त नवासी आए ना जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहिब भरपुर लीना।

जाति जिसह जनाब हो तिनह तुम जाति सदा सदा जाई बलिहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी मोहे निर्गुण गुण किशु ना जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रभ पूरा दान दे साधु की तूरा कर कृपा प्रभ दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल कल महियल रहे आपर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनो नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन परे हो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वड दाता अंतर जामी सब मह रविया पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा हौ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाव तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल होए संता तूरे चरण कमल हृदय उरतारे तेरे दर्शन को जाई बलिहारी।

तार संभाली, मैं निर्गुण को रख लेता। हों पई उडीनी कंत को अमाली, सो पेर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे, बिन पेर कित ना लेखा। यो कापड़ तन ना सखावई, कर ना सको हों वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा, तिन आगे हम आदेसा। मैं सब शिंगार बनाया अमाली, बिन पेर काम ना आए। जा सह बात ना पुछिया अमाली, ता बिरथा जोबन सब जाए। तन तन ते सुहागणी अमाली, जिन सहो रहया समाए। हम वारिया तिन सुहागणी अमाली, तिनके धुआं सद पाए। जिचर दूजा भरम सा अमाली।

वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना, नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आप वन्यावना।

वारी खसम कढाए किरत कमावण सब उपायन आप आपे नदर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम भावे सो करे किश पुन दान अनेक करनी नाम तुलना सम

आपे नदर करे बड़ा समहला पहला करहो दया तेरा नाम बखाना सब उपाय आप आपे सर्ब समान सर्बे समाना आप तू है उपाय तंदे लाइया एक तुझ ही किए राजे किकना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा एत भरम भलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाना नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाना दुख गया सुख आए समान गावन सुर नर सुगड़ सुजान सुर नर सुगड़ सुजान गावे जो तेरे मन भावहि माया मोहे चेतह नाही अहला जन्म गवावहि एक मूड मुग्ध

रंग रत्ती मुइये सुभावंती नारे सच्चा शब्द मिल रही मुइये फिर रावे पाए प्यारी सच्चा पाए प्यारी कंत सवारी हर हर त्यों ने हो रचाया आप गुआया ता फिर पाया गुर कै शब्द समाया सा धन शब्द सुहाई प्रेम कसाई अंतर प्रीत प्यारी नानक सा धन मेल लई पिर आपे साचै साहि सवारी निर्गुण वंतड़िए पिर देख हदूरे राम गुरमुख जिन्नी रावया मुइये पिर रव रहया भरपूरे राम पिर रव रहया भरपूरे वेख हजूरे जुग जुग एको जाता तन बाली भोली पिर सहज रावै मिलया कर्म विधाता जिन हर रस चाखिया शब्द सुभाखिया हर सर रही भरपूरे नानक कामन सा पिर भावै।

नानक हर की भगत नराली, गुरमुख विरलै कीजै, गुरमुख खेती हर अंतर बीजियै, हर लीजै शरीर जमाए राम, अपने घर अंदर रस पुंच तू, लाहा लै परथाए राम, लाहा परथाए हर मन वसाए, धन खेती वापारा, हर नाम त्याए मन वसाए।

नानक नाम बीज मन अंदर सच्चै शब्द सुपहाय हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमति मन निज कर वसिया सच्चै शब्द बैरागो राम मुख मस्तक भागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हऊ मैं मारी साचै शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पहु पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वडियाई राम गुरमति हुक्म बूझियै हुक्मे मेल मलाई राम हुक्म मलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वडियाई गुर ते पाई सच सवार नहारा पौ भजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम अगोचर हुक्मे रहया समाई वडहंस महला तीजा मन मेरिया तू सदा

पारा खोटे खरे सब परखियन तित सच्चे कै दरबारा राम खोटे दरगहा सुतियन उभे करन पुकारा राम उभे करन पुकारा मुग्ध गुवारा मन मुख जन्म गवाया विख्या माया जिन जगत पुलाया साचा नाम ना पाया मन मुख संता नाल वैर कर

आखी है और करना किछु ना जाई राम जित भावे तित लाए सी ज्यों तिस दी वडियाई राम ज्यों तिस दी वडियाई आप कराई वरियाम ना फुसती कोई जगजीवन दाता कर्म विधाता आपे बक्के सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखी है और करना किछु ना जाई।

रसना हर रस पीजै राम, रसना हर रस पीजै अंतर पीजै, साच शब्द बीचारी अंतर खूटा अमृत भरिया, शब्दे काढ पीए पनिहारी, जिस नदर करे सोई सच लागै, रसना राम रबीजै, नानक नाम रते से निर्मल, होर हौं मैं मैल परीजै, पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे, किस पह करह पुकारा राम, माया मोह अंतर मल लागै, माया के वापारा राम, माया के वापारा जगत प्यारा, आवन जान दुख पाई, बिख का कीड़ा बिख स्यों लागा, बिष्टा माही समाई, जो तुर लिखिया सोए कमावे, कोए ना मेटन हारा, नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया, होर मूरख कूक मोए गावारा, माया मोहे मन रंगिया, मोहे सुध न काई राम, गुरमुख इहो मन रंगी है, दूजा रंग जाई राम, दूजा रंग जाई साच समाई, सच भरे पंडा।

सच्चा मन पाया सच वसाया, शब्द रत्ते अंत नबेरा, नानक नाम रत्ते से सच समाणी, बहुर ना पवजल फेरा, माया मोह सब बरल है, दूजे

कोई जिन श्रेष्ठ साजी सो कर वेखै तिस जेवड़ अवर ना कोई मनमुख अंधा तप तप खपै बिन शब्दै शांत ना आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोहे खोआई एहो जग जलता देख कै भज पय हर सरनाई राम अरदास करी गुर पूरे आगै।

सेवा लागे सेवट भागे जुग जुग एको जाता जात सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई जो हर मत दे सा उपजै होर मत ना काई राम अंतर बाहर एक तू आपे देहे बुझाई राम आपे देहे बुझाई अवर ना पहाई गुरमुख हर रस चाखिया दर साचै सदा है साचा साचै शब्द सुभाखिया घर मह निज घर पाया सतगुरु दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पाए मत प्रवान सच साई वडहंस महला चौथा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम हर हर।

जप हर हर नाम भिक्षे राम, जप हर हर नाम कमल पर गास्ते, हर नाम नमंग निद पाई, हम मैं रोग गया दुख लाथा, हर सहज समाद लगाई, हर नाम वडाई सतगुर ते पाई, सुख सतगुर देव मन परसते, हों जीवा सतगुर देख सरसे, कोई आण मलावै।

हो मन तन काट काट तिस दे जो सतगुर बचन सुनाए मेरा मन बैराग भया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाती देहो सतगुर चरण हम तू।

देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख भरम पौ भागा सेवक भाई मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा कहो नानक हरे आप मलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई वडहंस महला चौथा हौ गुरबिन खरी निमाणी राम जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया जिस कारण हों ढूंढ टुनेंदी सो सज्जन हर घर पाया एक दृष्ट हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी हौ गुरबिन खरी निमाणी जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया

0: है मेरा अंत सखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया।
1: जिथे पुत कलत्तर कोई बेली नाही,
0: तिथे हर हर नाम छड़ाया। तन तन सतगुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुरबिन रहन ना जाई। जिन्नी दर्शन जिन्नी दर्शन, सतगुर पुरख ना पाया राम। तिन निफल जन्म, सब बिरथा गवाया राम। निफल जन्म तिन बिरथा गवाया,
1: ते साकत मोए मर चूरे।
0: कर हुंदे रतन पदार्थ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिनका

दर्शन सतगुर पुरख ना पाया हम चातरक दीन हर पास बेनंती राम गुर मेल मेरा प्यारा हम सतगुर करह भगती राम हर हर सतगुर करह भगती जा हर प्रभ कृपा तारे मैं गुर बिन अवर ना कोई बेली गुर सतगुर प्राण हमारे कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया हर हर नाम हर सती हम चातरक दीन हर पास बेनंती वडहंस महला चौथा हर कृपा कर सतगुर मेल सुखदाता राम हम पूछे हैं सतगुर पास हर बाता राम सतगुर पास हर बात पूछे हैं जिन नाम पदार्थ पाया पाए लगे हैं नित करहे बेनंती गुर सतगुर पंथ बताया सोई भगत दुख सुख समत कर जाने हर हर नाम हर राता हर कृपा कर गुर सतगुर मेल सुखदाता सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा राम जप हर हर नाम लथे अड़े जग तापा राम हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनके दुख पाप नवारे सतगुर ज्ञान खड़ग हाथ दीना जम कंकर मार बिदारे हर प्रभ कृपा धारी सुख दाते दुख लाथे पाप संतापा सुन गुरमुख नाम सब बिन से हूं मैं पापा जप हर हर नाम मेरा मन पाया राम मुख गुरमुख जप सब रोग गवाया राम गुरमुख जप सब रोग गवाया अरोगत भये शरीरा अनदिन सहज समाध हर लागी हर जपया गहर गंभीरा जात अजात नाम जिन त्याया इन परम पदार्थ पाया जप हर हर नाम मेरा मन पाया हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे राम हम पापी निर्गुण दीन तुम्हारे हर दयाल शरणाया तू दुख भंजन सर्व सुख दाता हम पाथर तरे तराया सतगुर भेट राम रस पाया जन नानक नाम उधारे हर तारु कृपा कर कृपा लेहु उबारे राम वडहंस महला चौथा घोड़िया एक ओंकार सतगुर प्रसाद देहे तेजन जी राम उपाइया राम धन मानस जन्म पुन पाइया राम मानस जन्म वड पुन्ने पाया देहे सो कंचन चंगड़िया गुरमुख रंग चलूला पावे हर हर हर नव रंगड़िया एहे देहे सो बांकी जित हर जापी हर हर नाम सुहाविया वडभागी पाई नाम सुखाई जन नानक राम उपाइया देह पावो जीन बुझ चंगा राम चढ़ लंगा जी विखम भोए अंगा राम विखम भोए अंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहत चढ़ वड भागी लंघै गुर खेवट शब्द तराए अन दिन हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अकड़ो कढ़ावे शब्द पावे अपेओ हर रस पीतिया सुन श्रवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महामार्ग पंथ बिखड़ा
जन नानक पार लंघाया घोड़ी तेजन देहे राम अपाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन तन दुखाइया राम। जित हर प्रभ जापै सा धन सबासै तुर पाया किरत जुड़ंदा। चढ़ दे हड़ घोड़ी बिखम लंघाए मिल गुरमुख परमानंदा। हर हर काज रचाया पूरे मिल संत जना जानी आई। जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वाधाई। वडहंस महला चौथा देह तेज नड़ी हर नवरंगिया राम। गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम। ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गतमित जानिया। सब जन्म सफलो किया करतै हर राम नाम बखाणिया। हर राम नाम सलाहे हर प्रभ हर भगत हर जन मंगी।

हर मिले हर गुण सुख घनी, गुर शब्द पाया हर नाम त्याया, बडभागी हर रंग हर बाणी, हर मिले स्वामी अंतर जामी, हर नव तन हर नव रंगिया, नानक बखाने नाम जाने, हर नाम हर प्रभ मंगिया, कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम, मन मैगल गुर शब्द वस आया राम, मन वसगत आया परम पद पाया, सा धन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सो है हर प्रभ नारी, हर रंग राती सहजे माती, हर प्रभ हर हर पाया, नानक जन हर दास कहत है, वडभागी हर हर त्याया, देह घोड़ी जी जित हर पाया राम, मिल सतगुरु जी।

तब जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुपहाय हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह घोड़ी चढ़ हर पाया राग बड़ा हंस मा

0: तुद सलाही
1: गुण अवगण मेरा किसना बिचारिया
0: बख्श लिया खिन माही नौ निद पाई बजी वधाई वाजे अनहद तूरे कहो नानक मैं वार घर पाया मेरे लाथे जी सगल वसूरे सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वंजन पवन चलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच धनी चंत तिन घोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम ते सहज सुहेले जिन हर हर रसना भणिया राम ते सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदारने आए भै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लंघाए जिन कौ कृपा करी मेरा ठाकुर तिनका लेखा ना गणिया कहो नानक तिन कोल कमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूह घणी नानक से अखड़िया बेअन जिन्नी दसंदो मा पिरे संत जिन्नी हर प्रभ डिठा तिन कुरबाणे राम से साची दरगाह पाणे राम ठाकुर माने से परधाने हर सेती रंग राते हर रसै अगाए सहज समाए घट घट रमैया जाते से सज्जन संत से सुखिए ठाकुर अपने पाणी

राम मन इच पाईऐ प्रभ त्याईऐ मिटहै जम के त्रासा गोविंद गाया साध संगाया भई पूर्ण आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन पाईऐ बिनवंत नानक दिन सरैणी सदा हर हर त्याईऐ दरवाजे हैं अनहत वाजे राम घट घट हर गोविंद गाजे राम गोविंद गाजे सदा बिराजे अगम अगोचर ऊचा गुण बेअंत किस कहन ना जाई कोई ना सकै पहुंचा आप अपाए आप प्रतपाले जी जंत सब साजे बिनवंत नानक सुख नाम भगती दर वजह है अनहद वाजे राग बड़ा हंस महला पहले।

शुभ कमाया। धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग तंदे लाया। साहिब सिमरहो मेरे भाई हो सबना एहो पयाण। इत धंदा कूड़ा चार देहा आगे सर पर जाना। आगे सर पर जाना ज्यों मेहमान काहे गर्व कीजै। जित सेवै दरगाह सुख पाइय नाम तिसै का लीजै। आगे हुक्म न चल।

होए मरह परवाणु। नानक किसनो बाबा रोइए, बाजी है यो संसारु। कीता वेखै साहिब अपना, कुदरत करे बीचारु। कुदरत बीचारे धारन धारे, जिन किया सो जाने। आपे वेखै आपे बूझै, आपे हुक्म पछाणै। जिन किछ किया सोई जाने, ता का रूप अपारु। नानक किसनो बाबा रोइए, बाजी है यो संसारु। वडहंस महला पहला दखनी, सच सरंदा सच्चा जानिए, सचड़ा परवदगारू। जिन आपी ने आप साजिया, सचड़ा अलख अपारू। दोए कुड़ जोड़ विछोड़ियन, गुरबिन घोर अंधारू।

रेवा रोवै माया मुठड़ी धंधड़ा रूवण हारेवा धंधा रोवै मैल ना धोवै सुपनंतर संसारू ज्यो बाजी गर पर मैं भूलै झूठ मुठी अहंकारू आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाई नाम रते गुरपूरै राखे नानक सहज सुभाय वडहंस महला पहला बाबा आया है उठ चलना एहो जग झूठ पसार होवा सच्चा घर सचड़ै सेवी है।

अपने कंत संभाल है ना कदे लग्या विजोगो सचड़ा फिर सलाही है सब किश करने जोगो सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लए मलाई सा धन प्रिय कै रंग रत्ती विचों आप गवाई फिर काल ना खाई गुरमुख एको जाता कामन इच पुन्नी अंतर भिन्नी मिलिया जग जीवन दाता शब्द रंग राती जोब नमाती फिर कै अंक समाए सचड़ा साहिब शब्द पछाणी है आपे लहे मलाए जिन्नी अपना कंत पछाणिया औतिन पूछो संता जाए आप छोड़ सेवा करे फिर सचड़ा मिले सहज सुपहाय फिर सच्चा मिले आए साच कमाए साच शब्द धन राती कदे ना रांड सदा सुहागण अंतर सहज समाधि फिर रहया परपूरे वेख हदूरे रंग माणे सहज सुपाए इन्नी अपना कंत पछाणिया हों तिन पूछो संता जाए।

प्रेम समाई जिन्हें अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड़ मुठी कूड़े आरे सुने हो कंत मेहली हो फिर सेवे हो शब्द विचारे सब जागे आप।

सचड़ आप जगत अपाया गुर बिन घोर अंधारू वडांस महला तीजा। एहो शरीर जजरी है इसनो जर पहुंचे आए गुर राखे से उभरे होर मर जमे आवे जाए होर मर जमे है आवे जावे है अंत गए पछतावे बिन नावे सुख न होई ऐथे कमावे सो फल पावे मनमुख है पत खोई। जमपुर घोर अंधार महा गुबार ना तिथे भैन ना भाई

सब आखुहु सतगुरु वाहु वाहु जिन दान हर नाम मुख दिया सलोक महला तीजा भै विच सब आकार है निरपव हर जीव सोए सतगुर सेवै हर मन वसै तिथे भउ कदे ना होए दुश्मन दुख तिसनो नेड़ ना आवै ओहे ना सकै कोई गुरमुख मन विचारिया जो तिस भावै सो होए नानक आपे ही पत रखसी कारज सवारे सोए महला तीजा एक सज्जन चले एक चल गए रहंदे भी फुन जाहे जिन्नी सतगुर ना सेवेओ ते आए गए पछताहे नानक सच रत्या।

थोड़ी किस मिलिया सतगुरु सज्जन है, जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिया सतगुर प्रीत मैं, जिन हूं मैं विचों मारी सो सतगुर पूरा धन धन है, जिन हर उपदेश दे सब सृष्ट सवारी, नित जप्यो हो संतो हो राम नाम भौजल बिख तारी, गुरपूरै हर उपदेसया।

काम क्रोध विनाश सतगुर का पहु छोड़िया मन हठ काम ना आवे रास जमपुर बद्दे मारिय है को ना सुने अरदास नानक पूर्व लिखिया कमावना गुरमुख नाम निवास पौड़ी सो सतगुर सेवे हो साध जन जिना हर हर नाम दिरडाया सो सतगुर पूजो हो दिन सरात जिन जगन्नाथ जगदीश जपाया सो सतगुर देखो हो एक निमक निमक जिन हर का हर पंथ बताया किस सतगुर की सब पगी पवो हो जिन मोह अंधेर चुकाया सो सतगुर कहो हो सब धन धन जिन हर भगत भंडार लहाया श्लोक महला तीजा सतगुर मिले भुख गई

मनाई। इस भेखै थामहु गिरहु भला जिथहु को वरसाय। शब्द रत्ते तिन्ना सूजी पई दूजे भरम भुलाय। पया किरत कमावना कहना कछु ना जाए। नानक ज्योति सुभावै।

ना होवे अचिंत वत्सै मन आय अंतर तीर्थ ज्ञान है सतगुर दिया बुझाय मैल गई मन निर्मल होवा अमृत सारे तीर्थ नहाय सज्जन मिले सज्जना सच्चै शब्द सुपहाय घर ही परचा पाया ज्योति ज्योत मिलाय पाखंड जम काल ना छोड़े ले जासी पत गवाय नानक नाम रते से उबरे सच्चे सिंह लिबलाए पौड़ी तित जाए बहु सत संगति जिते हर का हर नाम बिलोईए सहजे ही हर नाम लेहो हर तत् ना खोईए नित जप्यो हो हर हर दिन सरात हर दरगाह ढोईए सो पाए पूरा सतगुरु जिस तुर मस्तक लिलाट लखोईए तिस गुर को सब नमस्कार करहो जिन हर की हर गाल गलोईए श्लोक महला तीजा सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार मिल प्रीतम तिनी त्याया सच्चा प्रेम प्यार मन ही ते मन मानिया गुर कै शब्द अपार एह सज्जन मिले ना विछड़ है जे आप मेले करतार इक ना दर्शन की प्रतीत ना आईया शब्द ना करह विचार विछड़िया का क्या विछड़ है जिन्ना दूजे भाए प्यार मन

है सच सिरजनहारी। जिस तू मिलह प्यारिया सो तुद मिलै गुरमुख विचारी। हौ बलिहारी सतगुर अपने जिन मेरा हर अलख लखारी। सलोक महला तीजा रत्ना पारख जो होवै सो रत्ना करे विचार। रत्ना सार ना जानी अज्ञानी अंध अंधार। रतन गुरु का शब्द है बूझै बूझन हार। मूर्ख आप गणाइंदे मर जम्मै है होए खुआर। नानक रत्ना सोल है जिस गुरमुख लगै प्यार। सदा सदा नाम उच्चरै हर नामो नित व्यवहार। किरपा करे जे अपनी ता हर रखा उरतार। महला तीजा।

सुन सिखिया साधना आयु जिचर गुरमुख शब्द ना लागे सतगुरु सेवै नाम मन वसै विचों भ्रम भउ भागै जेहा सतगुरु नु जानै तेहो होवै तां सच नाम लिव लागै नानक नाम मिलै वडियाई।

सतगुर की गल मन्नी जो गुरमुख नाम के आए दे तिन चढ़ी चवगण वन्नी। सलोक महला तीजा मनमुख कायत रूप है बिन नावे नक नाही अन दिन धंधे व्यापिया सुपने भी सुख नाही। नानक गुरमुख हो है ता उबर है नाही ता बदे दुख सहाय। महला तीजा गुरमुख सदा दर सोहने गुर का शब्द कमाहे अंतर शांत सदा सुख दर सत्य सोभा पाए। नानक गुरमुख हर नाम पाया तैजे सच समाए। पौड़ी गुरमुख प्रहलाद जप हर गत पाई गुरमुख जनक हर नाम लिवलाई। गुरमुख वशिष्ट हर उपदेश सुनाई बिन गुर हर नाम ना किने पाया मेरे भाई। गुरमुख हर भगत हर आप लहाई। सलोक महला तीजा सतगुर की प्रतीत ना आईया शब्द ना लागो भाव उसनो सुख ना उपजै भावे सौ गेड़ा आवो जाओ। नानक गुरमुख सहज मिले सच्चे स्यों लिवलाओ। महला तीजा ए मन ऐसा सतगुरु खोज लहो जित सेवे जन्म मरण दुख जाए। सहसा मूल ना होवे हों मैं शब्द जलाए कूड़े की पाल विचों निकले सच वसे मन आए। अंतर शांत मन सुख होए सच संयम कार कमाए। नानक पूरे कर्म

सेवक सेवा करी हर सच्चे के गुण गाई नानक वेख विगस्या हर सच्चे की वडियाई पौड़ी जिनकै हर नाम वस्या सद हिरदै हर नामो तिनको रखण हारा हर नाम पिता हर नामो माता हर नाम सखाई मित्र हमारा हर नावै नाल गल्ला हर नावै नाल मसलक हर नाम हमारी करदा नित सारा हर नाम हमारी संगत अत प्यारी हर नाम कुल हर नाम परवारा जन नानक को हर नाम हर गुर दिया हर हलत पलत सदा करे निस्तारा सलोक महला तीजा जिन को सतगुर भेटिया ते हर कीर्त सदा कमाहे चिंत हर नाम तिनकै मन वसिया सच्चै शब्द समाहे कुल उधार है अपना मोख पदवी आपे पाहे पार ब्रह्म तिनको संतुष्ट भया जो गुर चरणी जन पाहे जन नानक हर का दास है कर कृपा हर लाज रखाए महला तीजा हम मैं अंदर खड़क है खड़के खड़क विहाय हम मैं वड्डा रोग है मर जम्मे आवे जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया प्रभ आए नानक गुर प्रसादी उभरे हम मैं शब्द जलाए पौड़ी हर नाम हमारा प्रभ अवगत अगोचर अविनाशी पुरख विधाता हर नाम हम सिरे वह हर नाम हम पूज्य है हर नामे ही मन राता हर नामे जेवड कोई अवर ना सूझ हर नामो अंत छाता हर नाम दिया गुर पर उपकारी धन धन गुरु का पिता माता।

सार नानक जिन को नदर करे से गुरमुख लंगे पार महला तीजा इको सतगुर जागता होर जग सूता मोह प्यास सतगुर सेवन जा गन से जो रते सच नाम गुणतास मनमुख अंध ना चेतनी जन्म मर होहे विनाश नानक गुरमुख तिन्नी नाम त्याया जिनको तुर पूर्व लिखे आस पौड़ी हर नाम हमारा भोजन शक्ति प्रकार जित खाया हमको तृप्त भई हर नाम हमारा पहनन जित फिर नंगे ना होवे होर पहनन की हमारी सरद गई हर नाम हमारा वणज।

पौड़ी, जिन उपाए जी तिन हर राखिया, अमृत सच्चा नाउ भोजन चाखिया, तिपत रहे आघाए मिटी पपाखिया, सब अंदर एक वरतै तिने विरले लाखिया, जन नानक भय निहाल प्रभ की पाखिया।

हो गई। जिचर शब्द ना करे विचार, हम मैं मैल ना चुकई, नाम ना लगे प्यार। एक आपे बस मलायन, दुबदा ताज विकार। नानक एक दर्शन देख मर मिले, सतगुर हेत प्यार। महला तीजा, सतगुरु ना सेवे मूर्ख अंध गवार। दूजा

0: मन हर सरनी पड़ रही है।
1: हर दिन कोई मार जीवाल ना सके।
0: मन होए निचिंद निसल होए रही है। उठदियां बहदियां सुतियां सदा सदा हर नाम ते आई है।

कहो अत भाई हुक्म भया बाहर घर छोड़िया हिन मह भई पराई नाम दान इशनान ना मन मुख इत तन धूड़ तुमाई मन मानिया नाम सिखाई पाए परहु गुर कै बलिहार जिन साची बूझ बुझाई रहा जग स्यों झूठ प्रीत मन भेदया जन स्यों वाद रचाई माया मगन एहन समग जो है नाम ना लेवै मरै बिख खाई गंधन वहन रत्ता हितकारी।

कन्नी सुन सुन शब्द सलाही अमृत हृदय वसाई निर्भउ निरंकार निर्वैर पूर्ण ज्योत समाई नानक गुरविण भरम ना भागै सच नाम वडियाई सोठ महला पहला दुतुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन चार कुंट चौबारा सगल भवन की।

जुगत सबाई सतगुर सेव पदार्थ पावह छूटह शब्द कमाई सूचै भांडै साच समावै विरले सूचाचारी तंतै कौ परम तंत मलाया।

कियो, सर अपसर की सार ना जाने, फिर कीच बड़ाही जियो। अंतर मैल लोभ बहु झूठे, बाहर नाव हो काही जियो। निर्मल नाम जपो हो सद गुरमुख, अंतर की गत ताही जियो। पर हर लोभ निंदा कूड त्याग हो, सच गुर बचनी फल पाही जियो। ज्यों पावै त्यों राखो हो हर जियो, जन नानक शब्द सलाही जियो। सोठ महला पहला पंच पदे, अपना घर मूसत राख ना साक है। की पर घर जोहन लागा, घर दर राख है जे रस चाख है। जो गुरमुख सेवक लागा, मन रे समझ कमन मत लागा। नाम विसार अन रस लोभाने, फिर पछताहे अभागा रहाव। आवत को हरख जात को रोवह, एह दुख सुख नाले लागा। आपे दुख सुख भोग पगावै, गुरमुख सो अनरागा। हर रस ऊपर अवर क्या कही है, जिन पिया सो तृप्तागा। माया मोहित जिन एहो रस खोया,

गुरमुख एक दृष्ट कर देखो घट घट जोत समोई जियो चलतो ठाक रखो घर अपने गुर मिले एह मत होई जियो देख अदृष्ट रहो बिस्मादी दुख बिसरै सुख होई जियो पीवो हो अपियो परम सुख पाईए निज करवासा होई जियो जन्म मरण भव भंजन गाईए।

प्रभ पाया छबदे हों मैं मारी गिरही मह सदा हर जन उदासी ज्ञान तत बीचारी सतगुर सेव सदा सुख पाया हर राखिया उर धारी एहो मनुआ दह दिस धामदा दूजे भाई खुआया मनमुख मुगद हर नाम ना चेतै बिरथा जन्म गवाया।

कर कर विगुते केहो चल ना चल दिया नाल गुरमुख हो वै सो नाम त्यावै सदा हर नाम संभाल सच्ची बाणी हर गुण गावै नदरी नदर निहाल सतगुर ज्ञान सदा घट चान अमर सिर बादशाह आन दिन भगत करह दिन राती राम नाम सच लाहा नानक राम नाम निस्तारा शब्द रते हर पाहा सूरठ महला तीजा दासन दास हुवै तां हर पाई विचों आप गवाई भगतां का कारज हर आनंद है आन दिन हर गुण गाई शब्द रते सदा एक रंगी हर सियों रहे समाई हर जियो साची नदर तुम्हारी अपने दासां नूं किरपा कर प्यारी राखो हो पैज हमारी रहाओ शब्द सलाही सदा हो जीवा गुरमती भौ भागा मेरा प्रभ साचा अत सवाल्यू।

सेवा कीनी अचिंत हर मन वसाया मन तन निर्मल सदा सुख अंतर विचों भरम चुकाया हर का मार्ग सदा पंथ विखड़ा वो पाए गुर विचारा हर कै रंग राता शब्दे माता हम मैं तजे विकारा नानक नाम रत्ता इक रंगी शब्द सवारन हारा सूरठ महला तीजा हर जियो तुदनो सदा सलाही प्यारी जिचर घट अंतर है सासा एक पल खिन बिसर है तू स्वामी जानो बरस पचासा हम मूड मुगद सदा से भाई गुर कै शब्द परगास।

रहाओ। हम शब्द मोए शब्द मार ज्वाले पाई, शब्दे ही मुक्त पाई। शब्दे मन तन निर्मल हुआ, हर वस्या मन आई। शब्द गुरुदाता जित मन राता, हर सिउ रहे आसमाई। शब्द ना जान है से अन्ने बोले, से कित आए संसारा। हर रस ना पाया बिरथा जन्म गवाया, जम्मे है वारो वारा। बिस्ता के कीड़े बिस्ता माहि समाणी, मान मुख मुग्ध गोबारा। आपे कर वेख मार्ग लाए भाई, किस बिन अवर ना कोई। जो तुर लिखिया सो कोई ना मेट पाई, करता करे सो होई। नानक नाम वस्या मन अंतर पाई,

आप राखह जो तेरे मन पाणी, तू गुण दाता शब्द पछाता, गुण कह गुणी समाणी, मन मेरे हर जियो सदा संभाल, अंत काल तेरा बेली होवे, सदा निभ तेरे नाल रहाव, दुष्ट चौंकड़ी सदा कूड़ कमावे, ना बूझह विचारी, निंदा दुष्टी ते किन फल पाया, हरनाक्ष नखह बिदारी, प्रहलाद जन सद हर गुण गावे, हर जियो लय उबारी, आपस कहो

आप पछाणे हर प्रभ है तिस केरा। सतगुरु सदा दयाल है भाई बिन भागा क्या पाईए। एक नदर कर वेखे सब ऊपर जेहा भाव तेहा फल पाईए। नानक नाम वसै मन अंतर विचों आप गवाईए। सोठ महला तीजा चौथुके सच्ची।

हृदय जग जीवन सद वस्या, तज काम क्रोध अहंकारा, सदा हजूर रविया सब ठाई। हृदय नाम अपारा, जुग जुग बाणी शब्द पछाणी, नाउ मीठा मनह प्यारा, सतगुर सेव जिन नाम पछाता, सफल जन्म जग आया, हर रस चाख सदा मन तृप्तिया, गुण गावे गुणी अगाया, कमल प्रगास सदा रंग राता, अनहद शब्द बजाया।

तेरा मन वसै पाई, सदा हर के गुण गाए रहाउ। नामै ते सब उपजे पाई, नाए विसरै मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है पाई, सूते गए मोहाए। गुरमुख जागे ते उभरे पाई, भवजल पार उतार। जग मैं लाहा हर नाम है पाई, हिरदै रखिया उरतार। गुर सरनाई उभरे पाई, राम नाम लिवलाए। नानक नाओ बेड़ा नाओ तुलहड़ा पाई, जित लग पार जन पाए। सोठ महला तीजा घर पहला, सतगुर सुख सागर जागे अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मर जन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए।

हर रस साध ना आया, संध्या तर्पण करह गायत्री, बिन बूझे दुख पाया। सतगुर सेवे सो वड भागी, जिसनो आप मलाई, हर रस पी जन सदा तृप्तासे, विचों आप गवाई। एहो जग अंधा सब अंध कमावे, बिन गुर मग ना पाई। नानक सतगुर मिले ता अखी वेखे, करे अंदर सच पाए। सोठ महला तीजा, बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा। जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते, शब्दे देह बुझाई। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे,

मन निर्मल हुआ, गिल बिख काटन हारा, शब्द मरहो फिर जीव हो सद ही, ता फिर मरन ना होई, अमृत नाम सदा मन मीठा, शब्दे पावे कोई, दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस देई, नानक नाम रते सुख पाया, दरगाह जाप है से, सोठ महला तीजा, सतगुर सेवे ता सहज धुन उपजे, गत मत तद ही पाए, हर का नाम सच्चा मन वस्या,

सारा अमृत अगम अथाह रहाउ। आपे सुन सब वेखदा प्यारा, मुख भोले आप मुहाउ। आपे

सारे मर जा। आपे पतन पातनी प्यारा, आपे पार लंघा, आपे सागर बोहे था प्यारा। गुर केवट आप चला, आपे ही चढ़ लंघदा प्यारा। कर जोज वेख पातशाह, आपे आप दयाल है प्यारा। जन नानक बख्श मला, सोरठ महला चौथा। चौथा आपे अंडज जेरज सेतज उत्पुज, आपे खंड आपे सब लोए। आपे सूत आपे बहुमणिया,

आपे वणज कराया आपे धरती साजियन प्यारे पिछे टंक चढ़ाया मेरे मन हर हर त्याए सुख पाया हर हर नाम निदान है प्यारा गुरपूरे मीठा लाया रहाऊ आपे धरती आप जा।

आप निमाणिया मान, आप दया कर रखदा प्यारा, आपे सुगड़ सुजान, मेरे मन जप राम नाम निशान, सत संगत मिल त्याए तू हर हर, बहुड़ ना आवन जान, रहाओ आपे ही गुण वरतदा प्यारा, आपे ही परवान, आपे बख्श कराईंदा प्यारा, आपे सच निशान, आपे हुक्म वरतदा प्यारा, आपे ही फुरमान, आपे भगत भंडार।

जन नानक सद कुर्बान झूठ महला चौथा आपे सेवा लाए दा प्यारा आपे भगत उमाहा।

प्यारी जप नानक भगत समाहा सोठ महला चौथा जो तुके अनक जन्म विछड़े दुख पाया मनमुख कर्म करे अहंकारी साधु पर सत ही प्रभ पाया गोविंद शरण तमारी गोविंद प्रीत लगी अत प्यारी जब सतसंग भये साधु जन हिरदय मिलिया शांत मरारी रहाओ तू हिरदय गुपत वस है दिन राती तेरा भाव ना बुझ गवारी सतगुरु पुरख मिलिया प्रभ प्रगटिया गुण गावे गुण विचारी गुरमुख प्रगास भया शांत आई दुरमत बुद्ध निवारी आत्म ब्रह्म कीन सुख पाया सत संगत पुरख तुमारी पुरख है पुरख मिलिया गुर पाया जिनको कृपा भई तुमारी नानक अतुल सहज सुख पाया अन दिन जागत रह बनवारी सोरठ महला चौथा हर स्यों प्रीत अंतर मन भेदया हर बिन रहन ना जाई ज्यों मछली बिन नीरै बिन सै त्यों नामै बिन मर जाई मेरे प्रभ कृपा जल देव हो हर नाय हो अंतर नाम मंगा दिन राती नामे ही शांत पाई रहाओ ज्यों चात्रक जल बिन बिल लावै बिन जल प्यास ना जाई गुरमुख जल पावै सुख सहजे हरिया भाए सुभाई

हाउ। कोट पराग मिट है जन सेवा, हर कीर्तन रस गाई, इहां सुख आगे मुख उजल, जन का संग वड भागी पाई है। रसना एक अनेक गुण पूरन, जन की केतक उपमा कही है। अगम अगोचर सद अविनाशी, शरण संतन की लही है। निर्गुण नीच अनाथ अपराधी, ओट संतन की आही।

आस पुजाई। दास अपने कौ तू विसरहै नाही, चरण धूर मन भाई, तेरी अकथ कथा कथन ना जाई। गुण निधान सुख दाते स्वामी, सब ते ऊच बढ़ाई रहाओ। सो सो कर्म करत है प्राणी, जैसी तुम लिख पाई। सेवक कौ तुम सेवा दीनी, दर्शन देख अघाई। सर्व निरंतर तुम्हें सुमाने, जा को तुदे आप बुझाई। गुर प्रसाद मिटेओ अज्ञाना, प्रगट भय सब ठाई। सोई ज्ञानी सोई त्यानी, सोई पुरख सुपहाई। कहो नानक जिस भय दयाला, तां को मन ते बिसर ना जाई। सोट महला पंजवां, सगल समग्री।

आद शर्म छुटकारा बिन गुर पूरे जन्म मरण ना रहे फिर आवत बारो बारा रहाओ ओहो जो परम पलावा कहियत तिन मह उर्जियो सगल संसारा पूर्ण भगत पुरख स्वामी का सर्व थोक ते न्यारा निंदो नाही काहू बात एहो खसम का किया जाको कृपा करी प्रभ मेरे मिल साध संगत नाउ लिया पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर सबना करत उदारा कहो नानक गुर बिन नहीं तरिया एहो पूरन तत बिचारा सोठ महला पंजवा खोजत खोजत खोज बिचारेउ राम नाम तत सारा किल बिख काटे निमख अराध्या गुरमुख पार उतारा हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बाणी रहाउ मुकत भुगत जुगत सच पाईए सर्व सुखा का दाता अपने दास कहो भगत दान देवे पूर्ण पुरख विधाता सरवणी सुनिए रसना गाइए हृदय त्याइए सोई करण कारण समर्थ स्वामी जाते बिरथा ना कोई वड्डे भाग रतन जन्म पाया।

जोगे अंतर गुरु नानक की वडियाई। चौठ महला पंजवा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक पिता एक सके हम बारक तू मेरा गुरहाई। सुन मीता जियो हमारा बल बल जासी।

हम पलो ना जाने, तुम सदा सदा दयाला, तुम सुखदाई पुरख बधाते, तुम राखो अपने बाला, तुम निदान अटल सुल्तान, जी जंत सब जाचे, कहो नानक हम इह हवाला।

मांगन कौ सगले दान देहे प्रभ पान हिन मह अवर हिन मह अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीरो ऊंचो अगम अपारी साध संग जो तुम्हें मिलायो।

अब कहां करे तू, जो फाट्यो सगलो लिखा, महा आनंद भई सुख पाया, संतन कै प्रसादे, कहो नानक हर सियो मन मानिया, रंग रतिए बिस्मादी।

तव आनंद मंगल सुख पाई है, काल ना भान अंतर बिद जाने, ताकी कर मन सेवा कर पूजा होम एहो मनुआ, अकाल मूत गुरदेवा गोविंद दामोदर दयाल माधवी।

तन सासा बिचरत आन मलाया पशु प्रेत मुग्ध भय स्रोते हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख वडाई ताकी कीमत कह ना जाई रहाओ दुख सोग का ताहयो डेरा अंध मंगल बिसरामा मन बांचत फल मिले अचिंता पूर्ण होए कामा इहा सुख आगे मुख उज्जल मिट गए आवन जाने निरपौ भए हिरदय नाम वस्या अपने सतगुर कै मन पानी उठत बैठत हर गुण गावे दुख दर्द भ्रम भागा कहो नानक ताके पूर करम्मा जाका गुर चरनी मन लागा चौथ महला पंजवा रतन छाड़ कौडी संग लागे जाते कछु ना पाईए पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर मेरे मन सदा त्याईए सिमरहो हर हर नाम परानी बिनसै काची दे अज्ञानी रहाउ मृग तृष्णार सुपन मनोरथ ताकी कछना वडाई राम भजन बिन काम ना आवस संग ना काहू जाई हौ हौ करत बेहाय।

ताव हो पूर्ण अबनासी काम क्रोध बिख जारी महाबिखम अगन को सागर साधु संग उधारी पूरा गुर में त्यो परम अंधेरा पाज प्रेम भगत प्रभ नेरा रहाओ हर हर नाम निदान रस पिया मन तन रहे अगाई जत कत पूर रहो परमेश्वर कत आवे कत जाई जप तप संजम ज्ञान तत बेता जिस मन वसै गोपाला नाम रतन जिन गुरमुख पाया ता की पूर्ण काला काल कलेश मिटे दुख सगले काती जम की पासा कहो नानक प्रभ कृपा तारी मन तन भये बिगासा सोठ महला पंजवा करन करावन हार प्रभ दाता पार ब्रह्म प्रभ स्वामी सगले जी किए दयाला तो प्रभ अंतर जामी मेरा गुर हुआ आप सहाई सुख सहज आनंद मंगल रस अचरज पई बढ़ाई रहा गुर की सरन पए पै नास्ती साची दरगाह मानी गुण गावत अराध नाम हर आए अपने थाने जय जयकार करे सब उस्तत संगत साध प्यारी सद बलिहार जाओ प्रभे अपने जिन पूर्ण पैज सुवारी गोष्ट ज्ञान नाम सुन उदरे जिन जिन दर्शन पाया पयो कृपाल नानक प्रभे अपना अंत सेती घरे आया सूरठ महला पंजवा प्रभ की शरण सगल पहलाती दुख बिन से सुख पाया दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी पूरा सतगुर ध्याया

थीवै विघ्न बनासन सब दुख नासन गुर चरणी मन लागा गुण गावत अचुत अविनाशी अन दिन हर रंग जागा मन इच्छे से फल पाई हर की कथा सुहेली आदि अंत मद नानक को सो प्रभ हुआ बेली सूरठ महला पंजवा पंच पदा बिन सह मोह मेरा अर तेरा बिन सह अपनी तारी संतो हो इहा बताव हो कारी जित हों मैं गर्भ नवारी रहाओ सर्ब भूत पार ब्रह्म कर मान्या होवां सगल रे नारी देखियो प्रभ जीओ अपने संगे चूकै पीत परमहारी औखद नाम निर्मल जल अमृत पाईऐ गुरु द्वारी कहो नानक जिस मस्तक लिखिया तिस गुर मिल रोग बेदारी सोरठ महला पंजवां कर दूजा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल बनस्पत मह बै संतर सगल दूध मह किया ऊच नीच मह जोत समाणी घट घट माध हो जिया संतो हो घट घट रहे समाहेउ पूर्ण पूर रहेउ सर्ब मह जल थलर मैया आहेउ रहाउ गुण निदान नानक जस गावै सतगुर भरम चकायउ सर्ब निवासी सदा अलेपा सब मह रहे समायु सूरठ महला पंजवा जा कै सिमरन होए आनंदा बिन सह जन्म मरण भय दुखी चार पदार्थ नव निध पावे बहुर ना तृष्णा भुखी जा को नाम लैत तू सुखी सास सास त्याव हो ठाकुर कौ मन तन की अरे मुखी रहाउ शांत पावह हो वह मन शीतल अग्न ना अंतर तुकी गुरु नानक को प्रभु दिखाया जल थल त्रे पवन रुखी सोरठ महला पंजवा काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इनते आप छडाव हो एहे पीतर ते इनको डार हो आपन निकट बलाव हो अपनी बिद आप जनाब हो।

गुर पूरा भेटियो वडभागी, जन नानक कतह ना धावहु, सूरठ महला पंजवा, जाकै सिमरन सब कछ पाईऐ, बिरथी काल न जाई, तिस प्रभ त्याग अवर कत राचुहु, जो सब मह रहे आसमाई, हर हर सिमरहो संत गोपाला, साध संग मिल नाम त्यावहु, पूर्ण होवै काला रहाउ, सार संभालै नित प्रतपालै, प्रेम सहत गल लावै, कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत, जगत जीवन कैसे पावै, सूरठ महला पंजवा, अबनासी जीयन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निधान भगतन कहो बर्तन, बिरला पावै कोई, मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई, जाकी सरन पया सुख पाई है, बहुड़ दुख ना होई रहाओ, वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई, तिन की धूर नानक दास बांचै, जिन हर नाम हृदय परोई, सूरठ महला पंजवा, जन्म जन्म के दुख निवारै, सूका मन साधारै, दर्शन भेटत होत निहाला, हर का नाम बीचारै, मेरा वैद गुरु गोविंदा, हर हर नाम औखद मुख देवै, काटै जम की फंदा रहाउ, समरथ पुरख पूर्ण बेधाते, आपे करनै हारा, अपना दास हर आप उभारिया, नानक नाम अधारा, सूरठ महला पंजवा, अंतर की गत तुम ही जानी, तुझ ही पाहे नबेरो, बख्श लै हो साहिब प्रभ अपने, लाख खते कर फेरो।

अंत प्रभ सगल उधारी दर्शन देखण हारी गुरपुरे की अचरज वडियाई नानक सद बलिहारी चौठ महला पंजवा संचन करो नाम धन निर्मल थाती अगम अपार बिलस बनोद आनंद सुख माणु खाए दीव हो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पा

रतन जास गाई, मिट गई चिंता सिमर अनंता, सागर तरिया पाई, हृदय हर के चरण बसाई, सुख पाया सहज धुन उपजी, रोगा घाण मटाई रहा, क्या गुण तेरे आख बखाना, कीमत कहन ना जाई, नानक भगत पए अबनासी, अपना प्रभ भया सहाई।

गए गुरबचनी मन पिछे फल पाया मेरा गुर पूरा सुखदाता करण कारण समरथ स्वामी पूर्ण पुरख बधाता रहाउ नंद बिनोद मंगल गुण गावहु गुर नानक पए दयाला जय जयकार पए जग भीतर हुआ पार ब्रह्म रखवाला।

सोए नानक प्रभु त्याई भाई मन तन शीतल होए चौथ महला पंजवा संत हो हर हर नाम त्याई सुख सागर प्रभु विसरो नाही मन चिंदियाड़ा फल पाई रहाओ सतगुर पूरे ताप गवाया।

नाम अधारू नानक पातराखी परमेश्वर उदरिया सब संसारू सोठ महला पंजवां मेरा सत

पूरी सब राखी हुए सर्व दयाल रहाउ। अन दिन नानक नाम त्याहे जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राख ज्यों बारिक पित माता। सूरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिख दारू नह पति आया। उमराव हुआ गै तेरा मिल राजन रामन बेरा अब ढूंढन कतहु ना जाई गोविंद भेटे गुर गोसाई रहाऊ।

ग्रह आई आनंद मंगल सुख पाई संतो राम नाम निस तरिया उठत बैठत हर हर त्याई अन दिन सो कृत करिए रहाउ संत का मार्ग धर्म की पौड़ी कोवड़ भागी पा।

हर चरण की ओत सतानी सब चूकी कान लुकानी जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक।

रखवाला कर कृपा अपनी कर राखे मात पिता ज्यों पाला रहाऊ वडभागी सतगुर पाया जिन जम का पंथ मटाया

या पर पूरी हेम कुशल भया इस नाना पार ब्रह्म वित्तों कुर्बाना गुर के चरण कवल रिद तारी विघ्न न लागे तिलका कोई कार्य सगल सवारी रहाउ मिल साधु दुर्मत खोए पतत पनीत सब होए रामदास सरो

मिल त्याई है मन बाछत फल पाई गुरपूरा हृदय त्याई गुर गोपाल आनंदा जप जप जीवे परमानंदा जन नानक नाम त्याया।

सर्व गुणा सुखदायो मंदर चढ़ के पंथ निहारो नैन नीर भर आयो हौ हौ पीत भयो है बीचो सुनत।

जैसा बालक पाए सुपाई लख अपराध कमावे कार्य उपदेश चिड़के बहु भांति।

सब नाथे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कारज सगले सांथे जग जीवन नाम तुम्हारा गुर पूरे दियो उपदेसा जप भौजल पारे उतारा रहाओ तू है मंत्री सुन है प्रभ तू है सब किस

प्रभ अपना अचरज तुम्हें वडाई, तार अनग्रहो आप प्रभ स्वामी, पात मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांछो संतां तूड़ी, चौठ महला पंजवा, गुरपुरा नमस्कारी, प्रभ सबे काज सवारी, हरे अपनी किरपा तारी, प्रभ पूरन पैज सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल

सब कुशल खेम प्रभ धारी, सही सलामत सब थोक उबारी, गुर का शब्द विचारी रहाओ, साध संग मल लाथी, पार ब्रह्म भयो साथी, नानक नाम त्याया, आद पुरख प्रभ पाया, चौठ महला पंजवा, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दइए वसाया, सुख सागर गुर पाया, ता सहसा

प्रभु की अकथ कहानी जन बोलह अमृत बाणी नानक दास बखाणी गुरपुरे ते जानी सोठ महला पंजवां आगे सुख गुर दिया पाशै कुशल खेम गुर किया सर्व निदान सुख पाया गुर अपना हृदय ते आया।

ताप गवाया गुर पूरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने बेदन सतगुर आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम त्याई रहाओ जो मंग है सो ले वह प्रभ अपने संतां देव है हर गोविंद प्रभ राखिया गन नानक साच सुभाखिया।

मिल साद संग हर प्याया, आठ पहर अरादियो हर हर, मन चिंदिया फल पाया रहाउ, परा पूर्बला अंकुर जागया, राम नाम मन लागया, मन तन हर दर्श

सो प्रभु अंतर्जामी रहाउ करतब सब सवारी प्रभु अपना बिरद सुमारी पतत पावन प्रभु नामा जन नानक सद कुर्बाना सोठ महला पंजवां।

हर हर हर अरादु हर अराद सबो किश पाईए कार्ज सगले साधु रहाव प्रेम भगत प्रबलागी सो पाए जिस वड भागी जन नानक नाम ते आया इन सर्व सुख

पन्ना आनंद करह नर नारी हर हर प्रभु कृपा तारी संतोह सुख हो आ सब थाई पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रव रह।

सोई संत गुण गावे, प्रेम भगतता का मन लीना, पार ब्रह्म मन पावे, आठ पहर हर का जस रवना।

ता जो सिवरै तिसकी गत हुवै उधरहै सगले कोटा रहाउ संत संग जस गाया एहु पूरन हर तन पाया कहो नानक आप मटाया सब पार ब्रह्म।

वाणी गावह पाई ओह सफल सदा सुखदाई नानक नाम ते आया पूर्व लिखिया पाया सोठ महला पंजवा गुर पूरा आराधे कार्य सगले साधे सगल मनोरथ पूरे बाजे अनहद तूरे संत हो राम जपत सुख पाया संत अस्थान बसे सुख सहजे सगले दुख मिटाया रहाउ गुरपूरे की बाणी पार ब्रह्म मन पाणी नानक दास वखाणी निर्मल अकथ कहानी सोठ महला पंजवा भूखे खावत लाज ना आवे त्यों हर जन हर गुण गावे अपने काज को क्यों अलकाइए जित सिमरन दरगाह मुख उज्जल सदा सदा सुख पाइए रहाओ ज्यों कामी काम लुभावे।

नानक प्रभ सुखदाई जिन पूरी बणत बनाई सोठ महला पंजवा प्रभ अपना हृदय त्याई कर सही सलामत आई संतोख भया संसार।

हरे सगले दास को सुमत दीती रहाओ प्रभ सगले थान वसाए सुख शांत फिर आए नानक प्रभ सरनाए जिन सगले रोग मिटाए सोठ महला पंजवां सर्व सुखा का दाता सतगुर ताकी सरनी पाईए दर्शन भेट होते आनंदा दुख गया हर गाईए हर रस पीवो हो पाई नाम जप हो नामो अराध हो गुरपुरे की सरनाई रहाओ तिसे प्राप्त जिस तुर लिखिया सोई पूरन पाई

तुम त्याई रहाओ। जो जन भजन करे प्रभ तेरा तिसै अंधेसा नाही। सतगुर चरण लगे पहु मिटिया हर गुण गाए मन माही। सुख सहज आनंद कनेरे सतगुर दिया दलासा जिन घर आए सोभा सेती पूर्ण होई आसा। पूरा गुर पूरी मत जाकी।

काल दीन दुख भंजन आपे सब बिद थाटी हिन मह राख लियो जन अपना गुरपूरै बेड़ी काटी मेरे मन गुरु गोविंद सद त्याई है सगल कलेश मिट है इस तन ते मन चिंदिया फल।

सिमर माधो होहे पतत पनीत। काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत। आज काल फुन तोहे ग्रस है समझ।

सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जोग हारियो।

तै खोजत उदयाना बहुत जन्म भरमत तै हारियो अस फिर मत नहीं पाई मानस दे पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नवा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जेहे सिमरत गणकासी उदरी ता को जस उरतारो रहाओ अतल पयो त्रू जा कै सिमरन हर निरपै पद पाया दुख हरता एह बिद को स्वामी तैं काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निधि।

करै, जाते भगत राम की पावे, जम को त्रास हरै रहाउ, कौन कर्म विद्या कहो कैसी, धर्म कौन फुन करी, कौन नाम गुर जा कै सिमरै।

परम ही परम खोयो नह अस्थिर मत पाई विख्या सकत रहो निसबासुर नह छूटी अधमाई साध संग कबहु

पूत सनबंदी सगरे तन स्यों लागे जब ही निर्तन देखो नर कौ संग शाड सब भागे कहो कहां या मन बौरे को इन स्यों

कह झूठह लागियो जन्मे अकारत खोयो कर पर पंच उदर निज पोखियो पश की न्यायी सोयो राम भजन की गत नहीं जानी माया हाथ बिकाना उर्ज रहे हो बिखियन संग बौरा नाम रतन बिसराना रहे हो अचेत ना चेते हो गोविंद बिरथा औद सरानी कहो नानक हर बिरद पछानो पूरी।

बहुत हित जासियों सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी एह काया प्रेत प्रेत कर भागी। एह बिद को व्यवहार बनियो है जासियों ने हो लगायो। अंत बार नानक बिन हर जी को काम ना आयो। सोठ माला पहला घर पहला अष्टपदियां चौतुकी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुगदा ना पढ़ो हर बिन होर ना।

बिंद सुखवासी नाम बसै सुख पाई। जिहवा नेतर सोतर सच राते जल बूजी तुझ है बुझाई। आस निरास रह बैरागी

पहाय। मनमुख जंत दुख सदा निवासी, गुरमुख देव वडियाई। अपर अपार अगम अगोचर, कहने कीम ना पाई। सुन संवाद महा परमार्थ, तीन पवन पत नाम। मस्तक लेख जिया जग जोनी, सिर सिर लेख सहाम। कर्म सुकर्म कराए आपे, आपे भगत दृढ़ाम। मन मुख झूठ लह पैमान।

क्या कथिय भाई चालो सदार जाई गुरदाता मेले ता मत होवे निगुरे मत ना काई ज्यों चलाए त्यों चाल है भाई होर क्या को करे चतराई एक परम पलाए एक भगती रा।

दुर्मत कणी विगुति पाई दूजे पाए खवाई बिन सतगुर नाम ना पाईए पाई बिन नामे परम ना जाई सतगुर सेवे ता सुख पाए पाई आवन जान रहाई साच सहज गुरते उपजे पाई मन निर्मल साच समाई गुर सेवे सो बूझे पाई गुर बिन मग ना पाई जिस अंतर लोभ के कर्म कमावे पाई कूड़ बोल बिख खाई पंडित दही वलोई है पाई विचों निकले तत् जल मथिए जल देखिए पाई एहो जग एहा वत गुर बिन परम बगूची है पाई घट घट देओ अलख एहो जग तागो सूत को पाई दह दिस बांधो माए बिन गुर गात ना छूटई पाई हाके कर्म कमाए एहो जग परम पलाया पाई कहना किशु ना जाए गुर मिले पौ मन वसे पाई पै वरना सच लेख मजन दान चंगियाईया पाई दरगहा नाम वसेख गुरे अंकस जिन नाम दिरड़ाया पाई मन वसिया चूका पेख एहो तन हाट सराप को पाई वखर नाम अपार एहो वखर वपारी सो दृढ़ पाई गुर शब्द करे विचार धन वपारी नानका पाई मेल करे वपार।

प्यारी अमृत रसन हरे बूढ़े पारे पै बिना प्यारे तारे नदर करे पी तू है सलाहना प्यारे पी तेरी सलाह बिन बोहित पै डुबिया।

है सजाई, हुक्मे शब्द पछाणी है प्यारी, दरगहा पैंदा जाय, हुक्मे गणत गणाई है प्यारी, हुक्मे हों मैं दोई, हुक्मे पवे पवाई है प्यारी, अवगण मुठी रोई, हुक्म सिया पै साहा का प्यारी, सच मिले बड़े आई होई, आखण औखा आखी है प्यारी, क्यों सुनिए सच नाओ, जिन्नी सो सलाह प्यारी।

पुरता हार सोरठ महला पहला पहला दुतुकी तू गुण दातो निर्मलो पाई निर्मल ना मन होय हम अपराधी निर्गुणे पाई

पाखंडिया भाई मन तन नाम वसेख रहाव बिख माया चित मोहया भाई कतराई पत खोय चित मह ठाकुर सच वसै भाई जे गुर ज्ञान समोय रूड़ो रूड़ो आखिय भाई रूड़ो लाल चलूल जे मन हर सिंह बैरागी है भाई दर कर साच अपूल पाताली आकाश तू भाई धर कर तू गुण ज्ञान गुर मिले सुख पाया भाई चूका मनो गुमान जल मल काया माजी है भाई पी मैला तन होए ज्ञान महारस नाई है भाई मन तन निर्मल होए देवी देवा पूजी है भाई क्या मांगो क्या दे पाहन नीर पखाली है भाई जल मैं बूट है ते गुर बिन अलख ना लखी है भाई जग बूढ़ पत खोय मेरे ठाकुर हाथ वडाइया भाई जय भावे तै दे बैयर बोले मीठली भाई साच कह पिर पाई।

गुर कै शब्द पछाता अचिंत काम करह प्रभ तिनके जिन हर का नाम प्यारा गुर प्रसाद सदा मन वसिया सब काज सुवारन हारा ऊना की रीस करे सोभ गुच्चे जिन हर प्रभ है रखवारा बिन सतगुर सेवे किने ना पाया मन मुख भौंक मोए बिललाई आवह जावह ठौर ना पावह दुख मह दुख समाई गुरमुख होवै सो अमृत पीवै सहजे साच समाई बिन सतगुर सेवे जन्म ना छोड़ै जे अनेक कर्म करै अधिकाई वेद पढ़ै तै वाद बखाणै बिन हार पत गुआई सच्चा सतगुर साची जिस बाणी भज सूट है गुर सरनाई।

इस विघ्न न लागे कोई। चौथ महला तीजा, हर जियो शब्दे जापदा पाई, पूरे भाग मलाई। सदा सुख सुहागणी पाई, अन दिन रतिया रंग लाई। हर जी तू आपे रंग चढ़ाई, गावो रंग राते हो पाई। हर सेती रंग लाए रहाओ, गुर की कार कमावनी पाई। आप छोड़ चित लाए, सदा सहज फिर दुख ना लगई पाई। हरे आप बसै मन आए, फिर का हुक्म ना जानी पाई। सा कुलखणी कुनार, मन हट कार कमावनी पाई। विणना वह कूड़ियार, से गावे जिन मस्तक भाग है पाई। पाए सच्चे बैराग, अन दिन राते गुण रवह पाई। निरभउ गुर लिवलाग, सबना मार जीवाल दा पाई। सो सेव हो दिन रात, सो क्यों मनो वसारी है पाई। जिस दी

जिस पर तीत ना आवे पाई सो जियड़ा जल जाओ। बहु गुण मेरे साहिब भाई हऊ तिसके बल जाओ। वो निर्गुण आरे पालदा भाई देन थावे थाओ। रिजक संभाहे सास सास भाई गूड़ा जाका नाओ। जिस गुर साचा पेटी है भाई पूरा तिस करमाओ। तिस बिन घड़ी ना जीवी है भाई सर्ब कला भरपूर। सास ग्रास ना विसर भाई पेखो सदा हजूर। साधु संग मिलाया भाई सर्ब रहया भरपूर। जिन्ना प्रीत ना लगिया भाई से नित नित मर दे चूर। अंचल लाए तराया भाई भौजल दुख संसार। कर कृपा नदर निहालिया भाई कीतोन अंग अपार। मन तन शीतल होया भाई भोजन नाम आधार। नानक तिस शरणागति भाई जे किल बिख काटनहार। चोरठ महला पंजवा मात गर्भ दुख सागरो प्यारी। तैं अपना नाम जपाया बाहर काड बिख पसरिया प्यारी। माया मोह बधाया जिसनों की तो कर्म आप प्यारी।

प्यारी एक ना चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारी तीन कुल लागे गाल हुंदी वस्त ना जातिया प्यारी कूड़ ना चली नाल सतगुर जिना मलाय उन प्यारी साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारी जिसनो नदर करे अन दिन कीर्तन गुण रवै प्यारी अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारी भव जल पार परे जिस भावै तिस मेल लह प्यारी से ही सदा खरे समरथ पुरख दयाल देव प्यारी भगता तिस का तान तिस सरनाई टह पे प्यारी जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारी मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे ना विसरै प्यारी नानक सद कुर्बान सोरठ महला पंजवा घर दूजा अष्टपदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अर वेद बिचारियो निवल पोंगम सादे पंच जना स्यों संग ना छुटकियो अधिक हम बुद बादे

कर पाती रहे हो, नग्न फिरे हो बन माही, तट तीरथ सब धरती भ्रम्यो, दुबदा छुटके नाही, मन कामना तीरथ जाए बस्यो, सिर करवत तराई, मन की मैल ना उतरे एह बिद, जे लख जतन कराई, कनक कामनी है वर गैवर, बहु विध दान दतारा, अन बस्तर भूम बहु अर्पे, नह मिलिय हर द्वारा, पूजा अर्चा बंदन डंडो होता, खट कर्मा रत रहता, हाँ हाँ करत बंदन मह परया।

फिर जन्मे हर सिंह संग ना गया। राज लीला राजन की रचना करिया हुक्म अफारा। सेज सोहनी चंदन चोआ नरक कोर का।

कहो नानक तिस भयो परापत जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक एह रंग माता भयो कृपाल दी।

ओरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल ना कत मन जीवै सच्चा सोए ससुरै पेयै पैवस्ती सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिले खुशी रावै पिर संग सदा शिंगारी नाओ मन कदे

जां हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले हर प्रेम कसाई दिन सरात हर रत्ती हर रंग चोले हर जैसा पुरख ना लभई सब देखिया जगत मैं टोले गुर सत गुर नाम दृढ़ाया मन अनत ना काहू डोले जन नानक हर का दास है गुर सत गुर के गोल गोले पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सिरजन हारिया तुदे आपे खेल रचाए तुदे आप सवारिया दाता करता आप आप भोगण हारिया सब तेरा शब्द वरतै उपावन हारिया हौ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया सलोक महला तीजा हौ मैं जल ते जल मोए भ्रम आए दूजै पाए पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए इहो जग जलता नदरी आया गुर कै शब्द सुपाए शब्द रते से सीतल पए नानक सच कमाए महला तीजा सफले हो सतगुर से।

हरे अपना सो जन होवै परवान। गुरमुख मोए जीवन दे परवान है, मनमुख जन्म मराहे। नानक मोए ना आखियै जे गुर कै शब्द समाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है। सत संगत साधु लग

वे सही चुक गया वे सास, नानक गुरमुखानो सुख अगला, जिन्ना अंतर नाम निवास, महला तीजा से सहन से सजना, जे गुरमुख मिल है सुपाई, सतगुर का पाना अन दिन कर है, से सच रहे समाई, दूजे पाए लगे सजन ना आखी है, जे अभिमान कर है वेकार, मन मुख आप स्वार्थी, कार्ज ना सकह सवार, नानक पूर्व लिखिया कमावना, कोई ना मेटन हार, पौड़ी तुदे आपे जगते अपाए कै, आप खेल रचाया, त्रै गुण आप सिरजिया, माया मोह वधाया, विच हों मैं लेखा मंगी है, फिर आवे जाया, जिन्ना हर आप कृपा करे, से गुर समझाया, बलिहारी गुरे अपने, सदा सदा कुमाया, सलोक महला तीजा।

जग कमला फिरे गुरमुख नदरी आया तंदा करत्या निफल जन्म गवाया सुखदाता मन ना वसाया नानक नाम तिना को मिलया जिनको तुर लिख पाया महला तीजा घर ही मह अमृत भरपूर है मन मुखा साधना पाया ज्यों कस्तूरी मिर्ग ना जाने भ्रम दा परम भुलाया अमृत ताज बिक संग्रह करत आप खुआया गुरमुख विरले सोजी पई तिना अंदर ब्रह्म दिखाया तन मन सीतल होया

ज्यो मजी ठह कपड़े रंगे पी पाहे, नानक रंग ना उतरै ब्याह ना लगे के पौड़ी। हरे आप वरतै आप, हरे आप बुलाए दा, हरे आपे सिठ सवार सिर तंदै लाए दा। इक ना भगती लाए इक आप खुआए दा, इक ना मार्ग पाए इक उजड़ पाए दा। जन नानक नाम त्याए गुरमुख गुण गाईंदा। श्लोक महला तीजा, सतगुर की सेवा सफल है।

इस जग में नाम अलभ है, गुरमुख वसै मन आय। नानक जो गुर सेव है अपना, फौतिन बलिहारै जाओ। महला तीजा, मनमुख मन अजित है, दूजै लगै जाय। तिसनु सुख सुपनै नहीं, दुखे दुख व्याय। कर कर पढ़ पढ़ पंडित थके, सिद्ध समाध लगाए। एहो मन वस न आवे, थके कर्म कमाए। भेख धारी भेख कर थके, अट अट तीरथ नहाए। मन की सार ना जाननी, हमें परम पलाय। गुर प्रसादी भव पया, वडभाग वस्या मन आय। पै पय मन वस हुआ, हमें शब्द जलाय। सच रति से निर्मले, ज्योति ज्योत मलाय। सतगुर मिले ना पाया, नानक सुख समाय। पौड़ी।

आप ले जाऊना जा पकड़ चलाया काल ता खरा ड्रामना ओ वेला हाथ ना आवे फिर पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर ते जो मोह फिरे से बदे दुख सहाय फिर मिलन ना पाए नी जमह तै मर जाय सहसा रूप ना छोड़ई दुख ही मह दुख पाए नानक नदरी बख्श ले शब्दे मेल मलाहे। महला तीजा। जो सतगुर ते मोह फिरे तिन्ना ठौर ना ठाऊं ज्यों छुट्टड़ घर घर फिरे दुहचारन बदनाव नानक गुरमुख बख्शी है जे सतगुर मेल मलाओ पौड़ी जो सेवह सत मरार से पवजल तर गया जो बोले हर हर नाउ तिन जम छड गया से दरगाह पैदे जाहे जिन्ना हर जप लया हर सेवह से पुरख जिन्ना हर तुद मया गुण गावा प्यारे नित गुरमुख भ्रम पहु गया। श्लोक महला तीजा। थाले विच तै वस्तु पईओ हर भोजन अमृत सार जित खादे मन तृप्ती है पाईए मोख द्वार एहो भोजन अलब है संतो लभै गुर विचार ए मदावनी क्यों विचों कढ़ी है सदा रखिए उर धार ए मदावनी सतगुरु पाई गुरसिखा लदी पाल नानक जिस बुझाए सो बुझसी हर पाया गुरमुख काल। महला तीजा। जो तुर मेले से मिल रहे सतगुर स्यों चित लाए आप विछोड़न से बिछड़े दूजे पाए खवाए नानक बिन कर्मा क्या पाई है पूर्व लिखिया कमाई पौड़ी बह सखियां जस गाव है गावन हारियां हर नाम सलाहे हो नित हर को बल।

चेतनी तिन तिग पहनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट न आवई हिम्मत कहन न जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली दे सवारी तड पैंदी भगत कर हर पाठ लगा अधिकाई बहो बहो विद भांत कर कोई बूझे बूझन हार अंतर विवेक कर सो बूझे इहो विवेक जिस बजाए आप हर जन नानक कह विचारा गुरमुख हर सत हर सलोक महला तीजा प्रथाए साखी महापुरख बोल दे सांझी सगल जहान गुरमुख होए सो भौ करे।

आई नानक गुरमुख मिला बड़े आईया जे आपे मेल मलाए पौड़ी हर रसना हर जस गावे हरी सुहावनी जो मन तन मुख हर बोले सा हर पावनी जो गुरमुख चखे साध सा त्रिपतावनी गुण गावे प्यारे नित गुण गाए गुणी समझावनी जिस होवे आप दयाल सा सत गुरु गुरु बुलावनी सलोक महला तीजा हस्ती सिर ज्यों अंकस है एहरन ज्यों सिर दे मन तन आगे राख कै ऊभी सेव करे यों गुरमुख आप निवारी है सब राज श्रिष्ट काली नानक गुरमुख बुझी है जा आपे नदर करी महला तीजा जिन गुरमुख नाम ते आया आए ते परवान नानक कुल उदार है अपना दरगाह पावह मान पौड़ी गुरमुख सखिया सिख गुरु मेलाइया एक सेवक गुरपास एक गुर कार लाइया जिन्ना गुर प्यारा मन चित तिन्ना पाओ गुरु देवाइया गुर सिखा एको प्यार गुर मित्ता पुत्ता पाइया गुर सत

सखाई जन नानक नाम त्याया गुरमुख सुख पाई। सलोक महला तीजा बिन कर्म नाओ ना पाई है पूरे कर्म पाया जाय। नानक नदर करे जे अपनी ता गुरमत मेल मलाए। महला पहला एक दज है एक दबी है एक ना कुत्ते खाए। एक पानी विच उसती है एक भी फिर हसन पाए। नानक एव ना जापई किथे जाए समाहे। पौड़ी तिनका खादा पैंदा माया सब पवित है। जो नाम हर राती तिनके घर मंदर महल सराई सब पवित है। जिनी गुरमुख सेवक सिख अभ्यागत जाए बरसाती। तिनके तुरे जीन खुरगीर सब पवित है। जिनी गुरमुख सिख साध संत चढ़ जाती। तिनके कर्म धर्म कार्य सब पवित है। जो बोल है हर हर राम नाम हर साती। जिनके पोते पुन है

पिछ सुख नहीं, मर जम्मह वारु वार, तृष्णा कदे ना बुझई, दुबदा हुए खुआर, मुह काले तिना निंदका, तित सच्चै दरबार, नानक नाम विहूनिया, ना उरवार ना पार पौड़ी, जो हर नाम ते आईंदे, से हर हर नाम रते मन माही, जिन्ना मन चेते क अरादया, तिना एक सबिन दूजा को नाही, से पुरख हर सेम दे, जिन तुर मस्तक लेख लखाही, हर के गुण नित गाम दे, हर गुण गाए गुणी समझाही, वड्याई वड्डी गुरमखा, गुरपूरै हर नाम समाही, सलोक महला तीजा, सतगुर की सेवा गाखड़ी, सिर तीजै आप गवाए, शब्द मरह फिर ना मरह, ता सेवा पवै सब थाए, पारस परसे है पारस हुए, सच रह लिवलाए, जिस पूर्व होए लिखिया, किस सतगुर मिले प्रभे आए, नानक गणतै सेवक ना मिले, जिस बख्शे सो पवै थाए, महला तीजा, महल कु महल ना

काली कांडी एक उत्तम पदवी इस जोग माहे गुरमुख हर कीरत फल पाई है जिनको हर लिख पाहे नानक गुर प्रसादी अन दिन भगत हर उच्चर है हर भगती माहे समाहे पौड़ी हर हर मेल साध जन संगत मुख बोली हर हर भली बाण हर गुण गावा हर नित चवा गुरमति हर रंग सदा मान हर जप जप औखद खाद्या सब रोग गवाते दुखा कान जिन्ना सास ग्रास ना विसरे से हर जन पूरे सही जान जो गुरमुख हर आराध दे तिन चूकी जम की जगत कान सलोक महला तीजा रे जन उथारे तप्यो सुत्या गई विहाय सतगुर का शब्द सुनना जाग्यो अंतर ना उपजो चाओ शरीर जलो गुण बाहरा जो गुर कार न कमाई जगत जलंदा डिठ मैं हम मैं दूजे पाए नानक गुर सरनाई उपरे सच मन शब्द त्याई महला तीजा।

हर सेती मन रव रहया सच्चे रहे आसमाय। नानक हो बलिहारी तिनको जो चलन सतगुर पाए। महला तीजा बिन शब्द सुध ना होवे जे अनेक करे श्रृंगार। फिर की सार ना जाने दूजे पाए प्यार। साक सुध साक लखणी नानक नारी विच कुनार। पौड़ी हर हर अपनी दया कर हर बोली बैणी। हर नाम त्याई हर उच्चरा हर लाहा लैणी। जो जप दे हर हर दिन सरात तिन हों कुरबैणी। जिन्ना सतगुर मेरा प्यारा अरादया तिन जन देखा नैणी। हों वारिया अपने गुरु को जिन मेरा हर सज्जन मेलिया सैणी। सलोक महला चौथा हर दासन स्यों प्रीत है। हर दासन को मित हर दासन कै वस है। ज्यों जंती कै वस जंत हर के दास हर त्याईंदे। कर प्रीतम स्यों नेव कृपा कर कै सुनो प्रभ। सब जग मह वरसै मेह जो हर दासन की उस्तत है। सा हर की वडियाई हरे अपनी वडियाई भाम दी। जन का जयकार कराई सो हर जन नाम त्याईंदा। हर हर जन एक समान जन नानक हर का दास है। हर पैज रखो भगवान। महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन साचै किस बिन रहन ना जाई। सतगुर मिले ता पूरा पाईए हर रस रसन रसाई। पौड़ी रहन दिन सप्रभात।

यह नाम उपजे किसना भुख सब जाय, नानक नामे रतिया नाम पल्ले पाए। महला चौथा, सतगुरु पुरख जे मारिया ब्रह्म भ्रमिया कर छोड़ गया, उस पिछे वजे पकड़ी मुंह काला आगे भया, उस अरल बरल मुंह निकले नित झगू सुतदा मोआ, क्या होए किसे ही डह कीते जां तुर किरत उस दा एहो जेहा पया, जिथे ओह जाए तिथे ओह झूठा कूड़ बोले किसे ना पावे। वेखो भाई वड्याई हर संतो स्वामी अपने की, जैसा कोई करे तैसा कोई पावे, एहो ब्रह्म विचार होए दर साचे, अगों दे जन नानक आख सुनावे। पौड़ी, गुर सच्चे बद्दा थे हो रखवाले गुर दित्ते, पूर्ण होई आस गुर चरनी मन रत्ते, गुर किरपाल बेअंत अवगुण सब हते, गुरे अपनी किरपा धार अपने कर लिते, नानक सद बलिहार जिस गुर के गुण इते। श्लोक महला पहला, तां की रजाए लेख्या पाए, अब क्या की जय पांडे, हुक्म होआ हासल तदे होए लिपड़िया, हंड है जी कमांदे। महला दूजा, नाक नाथ खसम हाथ किरत धके दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच हे। पौड़ी, सबे गल्ला आप हाट बहालियो न, आपे रचन रचाए आपे ही काल्यो न, आपे जंत उपाए आप प्रतपाल्यो न, दास रखे कंठ लाए नदर निहाल्यो न, नानक भगतां सदा आनंद पाओ दूजा जाल्यो। श्लोक महला तीजा, ए मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए, हर किया सदा सदा वड्याईया दे ना पछोताए, हों हर कै सद बलिहार ने जित सेवै सुख पाए, नानक गुरमुख मिल रह हम मैं शब्द जलाए। महला तीजा, आपे सेवा लाय आपे बख्श कर।

तेन निज करवास है, जुग जुग सुबा हुई पौड़ी। तू करन कारण समरथ है करती, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। तुदे आपे सिष्ट सिद्धिया, आपे फुन गोई। सब इको शब्द वर्तदा, जो करे सो होई। वडियाई गुरमुख दे प्रप, हर पावे सोई। गुरमुख नानक आराध्या, सब आखो धन धन धन गुर सोई। शुद्ध राग सोरठ बाणी भगत कबीर जी की, घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूतपूर्व।

जाई। हमरा भरम गया पहु भागा, जब राम नाम चित लागा, रहाउ बाजीगर डंक बजाई।

राम न कर सपतारा जग जीवन प्राण आधारा रहाउ तेरे गलह तौक पग बेरी तू घर घर रमैया।

जित लाई तित लागी चेरी तै समत कहां ते पाई जाते भ्रम की लीक मटाई सो रस कबीर है जानिया मेरो गुर प्रसाद मन मानिया जे बाज ना जिया जाई जो मिले ता काल अगाई सद जीवन भलो कहाही मुए बिन जीवन नाही अब क्या कथी है ज्ञान बिचारा निज निरखत गत व्यवहारा रहा कस कुंकम चंदन गारिया बिन नैन हो जगत निहारिया पूत पिता एक जाया बिन ठाहर नगर बसाया

सो पंच सैल सुख माने कबीर है सो धन पाया हर भेदत आप मिटाया क्या पढ़ी है क्या गुनी है क्या वेद पुराना सुनिए पढ़े सुने क्या होई जो सहज ना मिले हो सोई हर का नाम ना जप सगवारा क्या सोचे।

मन पवन सुख बनिया किस जोग प्राप्त गनिया रहाउ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी अले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उभा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया।

तहि अनहद शब्द भजंता ज्योति जोत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन कमल कोठरी चमकार भी जुल तही मेरे नाही दूर निज आत्म रहया भरपूर जह अनहत सूर उजियारा तह

मिल पारस कंचन होया, मुख मन सारतन परोया, निज पाओ पया ब्रह्म भागा, गुर पूछे मन पति आगा, जल पीतर

मैं नाही। अनल अगम जैसे लहर मैं उदत, जल केवल जल माही। माधवे क्या कही है भ्रम ऐसा, जैसा मानिए हुए ना तैसा रहा। नरपत एक संगा सुन सोया, सुपने पया पेखारी। अच्छत राज बिसरप दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज पोय अंग प्रसंग जैसे है, अब कछ मर्म जनाया। अनक कटक जैसे भूल परे, अब कहते कहन ना आया। सर्वे एक अनेक स्वामी, सब कट भोग वै सोई। कह रवदास हाथ पै नीरे, सहजे हुए सो होई। जो हम बांधे मोह फास, हम प्रेम बंधन तुम बाधे। अपने शूटन को जतन करो,

सब जगत व्यापियो भगत नहीं संतापा कह रविदास भगत एक बाडी अब एह कास्यो कही है जा कारण हम तुम आराधी सो दुख अजबू सही है दलाभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात अब बिकै राजे इंदर समसर ग्रह आसन बिन हर भगत कहो के लेख ना विचारियो राजा राम को रस यह रस अनरस दीसर जाही रहाओ जान अजान पए हम बावर सोच असोच दिवस जाही इंद्री सबल निबल विवेक बुद्ध परमार्थ प्रवेश नहीं कहियत ज्ञान अचरियत अनकश समझना पर अपर माया कह रविदास उदास दास मत पर हर कोप करहो जी दया सुख सागर सुरतर चिंता मन काम तेन बस जाके चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध नवनिध कर तल ताके हर हर हरना जपह रसना अवर सब त्याग वचन रचना रहाओ नाना ख्यान प्राण बेद बिद चौतीस अखर माही व्यास विचार कहो परमार राम नाम सरनाही सहज समाद उपाद रहत पुन बड़े भाग लिव लागी कह रविदास प्रगास हृदय धर जन्म मरण पै भागी जो तुम गिरवर तो हम मोरा जो तुम चंद तो हम पये है चकोरा माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोर है तुम स्यो तोर कमन स्यो जो रह रहा जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती साची प्रीत हम तुम स्यो जोरी तुम स्यो जोर अवर संग तोरी।

कौ नदर करे तुद बाज प्यारे केवरहा सावड़े आई दे जित नाम तेरे लाग रहा दूजा नाही कोई जिस आगे प्यारे जाए कहां रहाओ सेवी साहिब अपना।

राखै जा सोए, जह देखा तह रहया समाय, तुद बिन दूजी नाही जाय, जे को करे कीतै क्या होए, जिसनो बख्शे साचा सोए, हुण उठ चलन।

नहीं कोई। तनासरी महला पहला नदर करे ता सिमरिया जाए, आत्मा द्रवे रह लिवलाए, आत्मा प्रात्मा एको करे, अंतर की दुबदा अंतर मरे, गुर प्रसादी पाया जाए, हर सिंह चित लागे फिर का ना खाई, रहाओ सच सिमरिया हो।

काती कूड बोल मल खाए ब्राह्मण नावे जिया काए जोगी जुगत ना जाने अंध तीने उजाड़े का बंद सो जोगी जो जुगत पछाणे गुर प्रसादी को जाने काजी सो जो उल्टी करे गुर प्रसादी जीवत मरे सो ब्राह्मण जो ब्रह्म विचारे आप तरे सगले कुल तारे दान संबंध सोई दिल धोवे मुसलमान सोई मल खोवे पढ़िया बूझे सो परवान जिस सिर दरगाह का निशान तनासरी महला पहला कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद काल नाही जोग नाही नाही सत का टप था नष्ट जग प्रित होए डूबता इव जग कल मह राम नाम सार अखी ता मीट है नाक पकड़ है ठगण को संसार रहाओ आंट सेती नाक पकड़ है सूझते तिन लो मगर पाचे कछ ना सूझे एहो पदम अलो खतरिया ता धर्म छोड़िया मलेस भाख्या गही श्रेष्ठ सब एक वर्ण होई धर्म की गत रही अष्ट साज साज प्राण सोदह करह वेद अभ्यास बिन नाम हर के मुक्त नाही कह नानक दास तनासरी महला पहला आरती एक ओंकार सतगुर प्रसाद गगन में थाल रव चंद दीपक बने तारका मंडल जनक मोती धूप मल आलो पवन चवरो करे सगल बनराए फूलंत ज्योति कैसी आरती होए भाव खंडना तेरी आरती अनहता शब्द वाजंत भेरी रहाओ सहस तव नैन नन नैन है तो एको सहस मूरत नना एक तोही सहस पद बिमल नन एक पद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत।

सुख माने अंतर सहज समाणी, एक अचरज जन देखो भाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाय, गुर प्रसाद वसै मन आय, सब मह वसै प्रभ एको सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिलै मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत अपारा, गुर कै शब्द परे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जलै अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोई, किस सदा आनंद होए दिन रात।

बिन सतगुर सब मुई बिल लाए, अन दिन दाजह शांत ना पाए। सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम शांत सुख पाए। तनासरी महला तीजा, सदा धन अंतर नाम संभाले, जी जंत जिन्हें प्रतपाले।

हर सरनाई, राम नाम राते भगत दृढ़ाई, भगत करे जन वडियाई पाई, काच रते सुख सहज सुन।

रूप सत तृष्णा यज्ञ बुझाए अंतर शांत सहज सुख पाए गुर कै भाणै चलै ताय आप जाए साच महल पाए हर गुण गाए ना शब्द बूझै ना जाने बाणी

क्या पावा, तना श्री महला तीजा। मन मरे तात मर जाए, बिन मन बुए कैसे हर पाए। यो मन मरे दारू जाने कोई, मन शब्द मरे।

गुरमुख करनी कार कमावे, तां इस मन की सोजी पावे। मन मैं मत मैं गिल मिकदारा, गुर अंकस मार जवानन हारा। मन असाध साधे जन कोई, अचार चरै ता निर्मल होई। गुरमुख एहो मन लया सुवा।

नानक गुरमुख नाम पछाणे तनासरी महला तीजा काचा तन संचह मूर्ख गवार मनमुख भूले अंध गवार बिख्या कै तन सदा दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए साचा तन गुरमति पाए काचा तन हुनिया वै जाए रहाउ मनमुख भूले सब मरह गवार भवजल डूबे ना उरवार ना पार सतगुर भेटे पूरै भाग साच रखे अहनस बैराग चहो जुग मह अमृत साची बाणी

क्या है सोवे, उत्तम ब्रह्म पछाण है कोई, सच साचा सच आप दिरड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए, तना श्री महला।

निवलाय गुरमत साची साचा विचार आपे बख्शे दे विचार हर नाम अचरज प्रभ आप सुनाए कली काल विच गुरमुख पाए रहाओ हम मूरख मूरख मन माहे हम मैं विच सबकार कमाहे गुर प्रसादी हम मैं जाए आपे बख्शे लई मलाए भिख्या का तन बहुत अभमान अहंकार डूबे न पावे मान आप छोड़ सदा सुख होई गुरमत सालाही सच सोई आपे साजे करता सोए तिस बिन दूजा अवर ना कोए जिस सच लाए सोई लागे नानक नाम सदा सुख आगे रागत नासरी महला तीजा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हम भीख कपे खारी तेरे तू निज पत है दाता ओ दयाल नाम देहो मंगत जन को सदा रहो रंग राता हम बलिहार है जा।

कृपण को अब किस कृपा की जय हो दयाल दर्शन दे हो अपना ऐसी बख्श करी जय पणत नानक परम पट खुले गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है पीतर सतगुर सिंह मन मानिया तनासरी महला चौथा घर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद जो हर सेव है संत भगत।

हर उड़तारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हों मैं मारी, हर हर अगम अगाध बोध, अपरंपर पुरख अपारी, जन को कृपा करो जग जीवन, जन नानक पैज सुवारी, तनासरी महला चौथा, हर के संत जना हर जप्यो, तिनका दुख परम पौ भागी, अपनी सेवा आप कराई, गुरमत अंतर जागी, हर कै नाम रत्ता बैरागी, हर हर कथा सुनी मन पाई, गुरमत

अनेक कीरे, तुम वड पुरख वडागी, तुम्हारे गात में तो कह ना सक है प्रभु, हम क्यों कर मिल है अपागी। हर प्रभु स्वामी कृपा तारो, हम हर हर सेवा लागी, नानक दासन दास करो प्रभु, हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा, हर का संत सतगुर सतपुरखा, जो बोले हर हर बानी, जो जो कह सुने सो मुक्ता, हम तिस कह सद कुर्बानी, हर के संत सुनो जस कानी, हर हर कथा सुनो एक निमख पल, सब के लिख पाप लह जानी रहाव, ऐसा संत साध जिन पाया, तेवड पुरख वडानी, तिनकी तूर मंग है प्रभ स्वामी, हम हर लोच लुचानी, हर हर सफले हो बिरख प्रभ स्वामी, जिन जपे हो से त्रिपतानी, हर हर अमृत पी त्रिपता से, सब लाथी भूख भुखानी, जिनके वड्डे भाग वाडी विचे, तिन हर जपे हो जपानी, तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी, जन नानक दास दसानी, तनासरी महा

हर जपना हर संत चलै हर नाली जिन हर जपया से हर होए हर मिलया केल के लाली हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली जन नानक संगत साध हर मेलो हम साध जना पगराली तनासरी महला चौथा हर हर बूंद भये हर स्वामी हम चात्रिक बिलल बिल लाती हर हर कृपा करहो प्रभ अपनी मुख देव हो हर निमखाती हर बिन रह ना सको एक राती ज्यो बिन अमलै अमली मर जाई है त्यों हर बिन हम मर जाती रहा तुम हर सरवर आते अगाह हम लह ना सक है अंत माती तू परे परे अपरंपर स्वामी मित जानो आपन गाती हर के संत जना हर जपेओ गुर रंग चलो लहराती हर हर भगत बनी अत सुबा हर जपेओ उत्तम पाती आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती नानक जन तुमरी सरनाई हर राखो लाज पगाती तनासरी महला चौथा कर युग का धर्म कहो तुम पाई के विछूट है हम छुटका की हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपे हो तरह तरा की हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगत एकाकी रहा हर के सेवक से हर प्यारी जिन जपियो हर बचना की लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जम की बाकी हर के संत जपियो मन हर हर लग संगत साध जना की दिनियर सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरियो चंद चंदा की तुम वड पुरख वाडे अगम अगोचर तुम आपे आप अपाकी जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दासन दास दसा की तनासरी महला चौथा कर पंजवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद उरतार बीचार मरार रमो रम मनमोहन नाम जपीने अदृष्ट अगोचर अपरंपर स्वामी गुरपुरे प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष हर संग हरि सत संग भये हर कंचन चंदन कीने रहाओ नव से खट बोल है मुख आगर मेरा हर प्रभ इव नाप कीने जन नानक हर हिरदय सद त्यावो इं हर प्रभ मेरा पीने तनासरी महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर इव हर हर नाम त्याई हर दरगाह पावे है फिर जन्म ना आवे है हर हर हर जोत समाई जप मन नाम हरी हो हे सर्व सुखी।

भगत हर दीनी तब हर स्यों प्रीत बन आई बहु चिंत वसारी हर नाम उर तारी नानक हर पय है सखाई तनासरी महला चौथा हर पढ़ हर लिख हर जप हर गाओ हर पौ जल पार उतारी मन बचन हृदय त्याए हर हुए संतुष्ट इव भण हर नाम मरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होए दिन राती हर कीरत कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब पयो मन उद्दम हर हर नाम जपियो गत पई हमारी जन नानक की पात राख मेरे स्वामी हर आए परयो है सन तुम्हारी तनासरी महला चौथा चौरासी सिद्ध बुद्ध तेतीस कोट मुन जन सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावे जिनको ललाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामे नाम हर

हर कथा जिन जनहु जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभु चोज वडानी जन नानक आप मलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुख दाता हर जा कै वस है काम तिन्ना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जियड़े ता सर्व सुख पावे मेरे मना जप मन सतनाम सदा सतनाम हलत पलत मुख उज्जल होई है नित त्याई हर पुरख निरंजना रहाओ जह हर सिमरन भया तह अपाद गत कीनी वड भागी हर जपना जन नानक कहो गुर एह मत दीनी जप हर पवजल करना।

क्या सच सब होए, झूठा किस को आखिए साहा, दूजा नाही कोए, सबना विच तू वरतदा साहा, सब तुझे त्यावै।

प्यारे। सब तुझ ते आवह मेरे साह, ज्यो भावै त्यों रख तू मेरे प्यारे। सच नानक के पातशाह, तनासरी महला पंजवां, घर पहला चौपदी। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, भव खंडन दुख पंजन स्वामी। भगत वचल निरंकारी, कोट पराध मिटे खिन भीतर।

मरारी, ज्यों पावे त्यों राखो स्वामी, जन नानक सरन द्वारी, तनासरी महला पंजवा, दिन जाल प्राण तजे है मीना, जिन जाल स्यों हेत बढ़ायो,

मन गाय भयो परगास सदा सुख मन मह सतगुर पूरा पायो रहाओ गुण निदान रिद भीतर वसिया ता दुख भरम भौ भागा भई प्राप्त।

सुख सुबा बाजे अनहत बानी कहो नानक निश्चल घर बांधियो गुर कियो बंधानी तनासरी महला पंजवा वड्डे वड्डे राजने अर भूवन ताकि त्रिशन ना बूजी लपट रहे माया रंग माते लोचन कशु ना सूजी बिख्या मह किन्हीं त्रिपत ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रापै बिन हर कहां।

पाया। संत संग रहे होला हर तन संचन हर नाम पूजन। एहो नानक कीनो चोला

कृपा निध पतत पावन गोसाई कोट सुख आनंद राज पाए मुख ते निमुख बलाई जाप ताप भगत सा पूरी जो प्रभ कै मन पाई नाम जपत कृष्णा सब गुजी है नानक त्रिपत अगाई तनासरी महला पंजवा जिन कीने वस अपने त्रै गुण पवन चतुर संसारा जग इशनान ताप थान खंडे क्या एहो जंत विचारा प्रभ की ओट गही तो छूटो साध प्रसाद हर हर हर गाए बिखै ब्याद तब हूटो रहाओ नह सुनिए नह मुख ते बकिए नह मोह ओह डीठी ऐसी ठगौरी पाए पलावे मन सब कै लागे मीठी माए बाप पूत हित प्राता उन घर घर मेले ओ दुआ किस ही वाद घाट किस ही पह सगले लर लर मुआ हम बलिहारी सतगुर अपने जिन ओह चलत दिखाया गुजी पाहे जले संसारा भगत ना व्यापै माया संत प्रसाद महा सुख पाया सगले बंधन काटे हर हर नाम नानक धन पाया अपने घर लै आया खाते तनासरी महला पंजवा तुम दाते ठाकुर प्रतपालक नायक खसम हमारे निमख निमख तुम ही प्रतपाल हो हम बारक तुमरे तारे।

समझावहु हमें अज्ञान अल्प मत थोरी तुम्हें आपन बिरद रखावहु तुमरी शरण तुम्हारी आशा तुम ही सज्जन सोहेलिए।

निर्मोल कहर जस तिन पायो जिस किरपैन साध संग रंग प्रभ पेटे नानक सुख जन रैन तनासरी महल।

पीकै मन विश्वास प्रभ धारिया चरण रीन बांछै नित नानक पुनः पुनः बलिहारिया तनासरी महला पंजवां मेरा लागू राम स्यों हेत सतगुर मेरा सदा सहाय दिन दुख

त्रापस नाही तृष्णा भूख मन बासना रति बिखै ब्याद पंच दूत संग महा असाद जी जहान प्राण धन तेरा।

कीत, ऐसे भरम कुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा, रहाउ साच धर्म नहीं पावे दीठा, झूठ तो स्यों रचियो मीठा, दात प्यारी विसरिया दातारा, जाने नाही मरण विचारा, वस्त पराई को उठ रोवै

वह एकत्र तह हर जस गा वह नाथ कवित साध सभा मह अनंद विश्राम उन संग सो पाई जिस मस्तक करा।

निराश, मिल साज संगत होवत परगास। जीयन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिट।

जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करहे करावह स्वामी, सा मसलत प्रवान रहाउ। पत परमेश्वर गत नारायण, धन गोपाल गुण साखी, चरण सरन नानक दास हर, हर संति ए बिद जाति। तनासरी महला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ ते पाए, कंठ लाए गुर राखे, संसार सागर मह जलन ना दीने, किने ना दुत्तर पाखे।

अराध हर के प्रीतम साध जां कै संग तेरे बंधन छूटे गहो पार ब्रह्म सरन हृदय कमल चरण अवर आस कस पटल ना कीजै सोई भगत ज्ञानी ध्यानी तपा सोई नानक जां को कृपा कीजै तनासरी महला पंजवां मेरे लाल भलो रे भलो रे भलो हर मंग।

तिने ओट गही संत पल्ला तिन नाही रे जम संतावे साधु की संगना पायो रे परम निदान मिट्यो है अभमान एक निरंकार नानक मन लगना तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारी काल कलेश लोभ मोह महा पव जल तारे रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरहन चितारे साध संग जपन संग मन निदान तारे चरण कमल नमचकार गुण गोविंद बिचारे साध जना की रेन नानक मंगल सुख सधारे तनासरी महला पंजवा घर अठवा दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिमरौ सिमर सिमर सुख पावौ सास सास संभाले एह लोक परलोक संग सहाय जत कत मोहे रख।

टेक मात दूध जैसे बाले सागर मैं बोहित पायो हर नानक करी कृपा कृपाले तनासरी महला पंजवा पये कृपाल दयाल गोविंदा अमृत हृदय सिंचाई नवनित रिद सिद्ध हर लाग रही जन पाई संतन को अंध सगल ही जाई ग्रह बाहर ठाकुर भगतन का।

कर आई। संत अनुग्रह भये मन निर्मल नानक हर गुण गाय। तनासरी महला पंजवा जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिनै सगल वस ताकै जाका सतगुर पूरा। ठाकुर गाइय।

सब लग मुक्त ना कोई, कहो नानक दयाल स्वामी, संत भगत जन सोई, तनासरी महला पंजवां, नाम गुर दियो है अपने, जां कै मस्तक कर्मा, नाम दृढ़ावै नाम जपावै, तां का युग मह धर्मा।

जिस जन कै पालै सोई पूरा साहा नाम व्यवहारा नानक अधारा नाम प्राप्त लाहा तनासरी महला पंजवा नेत्र पनीत भय दर्श पेखे मातै परों रवाल रस रस गुण गा।

मंगल रूप तुमरे बचन अनूप रसाल हृदय चरण शब्द सतगुरु को नानक बांधे उपाल। तनासरी महला पंजवां अपनी उकत खिलावे भोजन अपनी उकत खिलावे सर्ब सुख भोग रस देवे।

सदा सलामत देवा। ईत ऊत जत कत तत तुम ही मिले नानक संत सेवा। तनासरी महला पंजवा संत कृपाल दयाल दमोदर काम क्रोध बिख जारी राजमाल जोबन तन जियरा इन ऊपर लै बारी मन तन राम नाम हितकारी सुख सहज आनंद मंगल सहत भवनिध पार उतारी रहाओ। तन सो थान ताने ओए भवना

नानक आनंद पये दुख भागे सदा सदा हर जाप तनासरी महला पंजवां चतुर दिशा कीनो बल अपना सिर ऊपर कर धारियो कृपा कटाक अवलोकन कीनो दास का दुख बिदारियो हर जन राखे गुरु गोविंद कंठ लाए अवगुण सब मेटे दयाल पुरख।

सरोवर पागा, तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस सीज गया सब तन ते, प्रीतम स्यों मन लागा रहाउ, जह जह पेखो कह नारायण, सगल कटा महतागा, नाम उदक पीवत जन नानक, त्यागे सब अनुरागा, तनासरी महला पंजवा, जन के पूर्ण होए काम, कली काल महा बिख्या मह, लज्जा राखी राम रहाउ, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, निकट न आवे जाम, मुक्त बैकुंठ साध की संगत, जन पायो हर का ताम, चरण कमल हर जन की थाती, कोट सूख विश्राम, गोविंद दामोदर सिमरों दिन रैन, नानक साध कुर्बान, तनासरी महला पंजवां, मांगो राम ते एक दान, सगल मनोरथ पूर्ण होवह, सिमरो तुमरा नाम रहाउ, चरण तुम्हारे हृदय वास है, संतन का संग पाऊ, सोग अग्न मह मन ना व्यापै, आठ पहर गुण गावो, स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा, मद हंत प्रभ जापन, नानक रंग लगा परमेश्वर, बहुड़ जन्म ना छापन, तनासरी महला पंजवां, मांगो राम ते सब थोक, मानुख को जाचत शर्म पाई, प्रभ कै सिमरन मोख रहाउ, कोखे मुन जन सिमरत पुराना, वेद पकार है कोख, कृपा सिंध सेव सच पाई, दोहै सुहेले लोक, आन चार व्यवहार है जेते, बिन हर सिमरन फोक, नानक जन्म मरण पै काटे, मिल साधु बिन से सोक, तनासरी महला पंजवां, त्रिष्णा बुझै हर कै नाम, महा संतोख होए गुर बचनी,

बंद हर देवनहारा, चरण कमल स्यो लागो नेहो, नानक की बेनंती एह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तनासरी महला नौवां, काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब नवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई रहाओ। पोह पमद ज्यो बास बस्त है, मुकर माहे जैसे शाई, तैसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतरे को जानो, एहो गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीनै, मिटै ना भ्रम की काई। तनासरी महला नौवां, साधो एहो जग भरम भलाना, राम नाम का सिमरन छोड़िया, माया हाथ बिकाना रहाओ। मात पिता भाई सुत बनता, तां कै रस लपटाना, जोगन धन प्रभता कै मद में, अहनस रह दीवाना। दीन दयाल सदा दुख भंजन, तां स्यो मन ना लगाना, जन नानक कोटन मैं किन्हू, गुरमुख होए पछाना। तनासरी महला नौवां, तेह जोगी को जुगत ना जानो, लोभ मोह माया ममता फुन, जेहे घट माहे पछानो रहाओ। पर निंदा उस्तत नह जाके, कंचन लोह समानो, हरख सोगते रह अतीता, जोगी ताहे बखानो। चंचल मन दह दिस को तावत, अचल जाए ठहरानो, कहो नानक एह बिद को जो नर, मुक्त ताहे तुम मानो। तनासरी महला नौवां, अब मैं कौन उपाउ करूं, जेह बिद मन को संसा चूकै, पहु निद पार परो रहाओ। जन्म पाए कछ पलो ना कीनो, ताते अधिक डरो, मन बच क्रम हर गुण नहीं गाए, यह जी सोच धरो। गुरमत सुन कछ ज्ञान ना उपजियो, पास ज्यो उदर भरो, कहो नानक प्रभ बिरत पछानो, तब हो पतत तरो। तनासरी महला पहला, कर दूजा अष्टपदियां। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गुर सागर रतनी परपूरे, अमृत संत चुगह नहीं दूरे, हर रस चोग चुगह प्रभ पावे, सर्वर मह हंस प्राण पत पावे। क्या बग बपड़ा छपड़ी नाए, कीचड़ डूबे मैल ना जाए रहाओ। रख रख चरण तरे विचारी, दुबदा छोड़ पए निरंकारी, मुक्त पदार्थ हर रस चाखे, आमन जान रहे गुर राखे। सर्वर हंसा छोड़ ना जाए, प्रेम भगत कर सहज समाए। सर्वर मह हंस, हंस मह सागर, कथ कथा गुर बचनी आदर, सुन मंडल एक जोगी बैसे, नारना पुरख कहो को कैसे। त्रि भवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सच्चे सरनाई, आनंद मूल अनाथ अधारी, गुरमुख भगत सहज बीचारी, भगत वचल पै काटन हारे, हों मैं मार मिले भगत हारी। अनक जतन कर काल संताए, मरन लखाए मंडल मह आए, जन्म पदार्थ दुबदा खोवे, आप ना चीनस भ्रम भ्रम रोवे, कहतो पढ़तो सुनतो एक, तीर्ज धर्म तरनी तर टेक, जत सत संयम हृदय समाए। चौथे पद को जे मन पति आए, साचे निर्मल मैल ना लागे, गुर कै शब्द भरम पौ भागे, सूरत मूरत आद अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी

दास मह सोई जह देखा तह अवर ना कोई। गुरमुख भगत सहज घर पाईए बिन गुर भेटे मर आईए जाइए रहाउ। सो गुर करो जे साच दरड़ावे कथ कथावे शब्द मलावे। हर के लोग अवर नहीं कारा साचो ठाकुर साच प्यारा। तन मह मनुआ

ना बहु भीख है कड़ पांडे जिन्हें अमृत पाया प्रेम भगत प्रभ मन पति आया पड़ पड़ भूलह चोटा खाहे बहुत सियाणप आवह जाहे नाम जपै पहु भोजन खाए गुरमुख सेवक रहे समाए पूज सिला तीर्थ बन वासा परमत डोलत भये उदासा मन मैलै सूचा क्यों होए साच मिलै पावै पत सोए आचारा विचार शरीर आद जगाद सहज मन धीर पल पंकज महकोट उधारी कर

नावे पढ़े रे सगल भेद नह चूकै मन भेद एक खिन ना धीरह मेरे घर के पंचा कोई ऐसो रे भगत जो माया ते रहत एक अमृत नाम मेरे हृदय सिंचा जे तेरे तीर्थ नाए हम बुद्ध मैल लाए घर को ठाकुर एक तिल ना माने कद पावो साध संग हर हर सदा आनंद ज्ञान अंजन मेरा मन इशनान सगल अश्रम कीने मनुआ नह पतीने विवेकहीन देही धोए कोई पाइय रे पुरख बधाता पार ब्रह्म कै रंग राता मेरे मन की दुर्मत मल खोए कर्म धर्म जुगता निमख ना हेत करता गर्भ गर्भ पढ़े कहीं ना लेख जिस भेती है सफल मूरत करे सदा कीरत गुर प्रसाद को नेत्रों पेख मन हठ जो कमावे तिल ना लेख पावे बगल ज्यो ध्यान लावे माया रे तारी कोई ऐसो रे सुखदाई प्रभ की कथा सुनाई जिस भेटे गत होए हमारी सो प्रसन्न गोपाल राय काटे रे बंधन माए गुर कै शब्द मेरा मन राता सदा सदा आनंद भेट्यो निरपै गोविंद सुख नानक लादे हर चरण पराता सफल सफल भई सफल यात्रा आवन जान रहे मिले सादा रहाउ दूजा तलासरी महला पहला शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ दस पुरब सदा दसाहरा हो नाम हर का सदा जाचो देहो प्रभ तरनी तरा संसार रोगी नाम दारू मैल लागे सच बिना गुरवाक निर्मल सदा चानन नित साच तीर्थ मजना साच ना लागे मैल क्या मल धोई है गुणहा हार परोए किस को रोई है विचार मारे तरे तारे उल्ट जोन ना आवे आप पारस परम ध्यानी साच साचे पावे आनंद अन दिन हरक साचा दुख

आप पूरा नामणु गावे गावण हार शब्द सुहावण सलाहे साचे मन सतगुर पुन दान दया मते फिर संग भावे सहज नावे देनी ता संगम सत सते आराद एक अंकार साचा नित दे चढ़े सुआया गत संग मीता संत संगत कर नदर मेल मलाया कहन कह सब को एक वडे आखी है हो मूर्ख नीच अजान समझा साखी है सच गुर की साखी अमृत पाखी तित मन मानिया मेरा पूछ करह आवह बेखला दे शब्द सच्चे गुर मेरा आखण तोट ना भगत पंडारी भरपुर रहे आसोई नानक साच कह बेनंती मन मांजे सच सोई तनासरी महला पहला जीवा तेरे नाए मन आनंद है जियो साचू साचा नाओ गुण गोविंद है जियो गुर ज्ञान अपारा।

मन भाणे अमरा पद पाया आप गवाया बिरला ज्ञान विचारी नानक भगत सोहन दर साचे साचे के वापारी भूख प्यासो आत क्यों दर जाए साजियो सतगुर पूछो जाए नाम त्याए साजियो सच नाम त्याई साच चवाई गुरमुख साच पछाणा दीना नाथ दयाल निरंजन।

था घर पहला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद हर जियो कृपा करे ता नाम त्या यह जियो सतगुरु मिले सुपहाय सहज गुण गाये जियो गुण गाये विगसे सदा आनंदिन जा आप साचे भावे अहंकार हों मैं तजै माया सहज नाम समावे।

लगातार सर्व दुख भंजनो जियो दुख हरत करता सुख स्वामी शरण साधु आया संसार सागर महा बिखड़ा पाल एक माहे तराया पूर रहया सर्व थाई गुर ज्ञान नेत्री अंजनो बिनवंत नानक सदा सिमरी सर्व दुख पै भंजनो आप लिए नर लाए कृपा ता।

जागया। सद सदा सिमरतभ्य स्वामी सास सास गुण बोलई, बिनवंत नानक धूर साधु नाम प्रभु अमोलई। राग तलासरी बाणी भगत कबीर जी की, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, सनक सनंद महेश समाना, सेख नाग तेरो मर्म ना जाना, संत संगत राम हृदय बसाई, रहाउ हनुमान सर गरुड़ समाना, सुरपत नरपत नहीं गुण जाना, चार वेद हर सिमरत पुराना, कमला पत कबला नहीं जाना, कह कबीर सो पर मैं नाही, पग लग राम रह सरनाही, दिन ते पहर पहर ते घड़िया, आप कटे तन सीजै, काल एहेरी फिरै बदक ज्यों, कहो कवन बिध की।

पाओ। जब लग जोत काया मह बरतै, आपा पशु ना बूझै, लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कशु

तरना जो जन भाव भगत कश जान ता को अचरज काहू ज्यो जल जल मह पैस ना निकसै त्यों ढुर मिलो जलाहू हर के लोगा मैं तो मत का पूरा जो तन कांसी तजह कबीरा रमैया कहाने होरा रहाऊ कहत कबीर सुनो रे लोई परम ना भूलो कोई क्या कांसी क्या ऊखर मगहर राम हृदय जो होई इंद्र लोक शिव लोक कह जैबू पूछे तप कर बहुर ऐबू क्या मांगो किस थिर नाही राम नाम रख मन माही रहाउ शोभा राज बिभै बढ़ियाई अंत न काहू संग सहाय पुत्र कलत्तर लक्ष्मी माया इनते कहो कमने सुख पाया कहत कबीर अवर नहीं कामा हमरे मन धन राम को नामा राम सिमर राम सिमर भाई राम नाम सिमरन बिन बूढ़ ते अधकाई रहाउ बनता सुत देह गृह संपत सुखदाई इन मैं कछ नाही तेरु काल अब दे आई अजा मल गज गन का पतत कर्म कीने तेहु पुत्र पार परे राम नाम लीने सूकर कूकर जोन ब्रह्मे तउ लाज ना आई राम नाम छाड अमृत काहे बिख खाई ताज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही गुर प्रसाद जन कबीर राम कर स्नेह तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई ऊपर मंडप छाई मार कंडे ते को अधकाई जिन त्रिण तार मूंड बलाई हमरो करता राम स्नेही काहे रे नर गर्भ करत हो बिन सजाए झूठी देही रहाओ मेरी मेरी कैरों करते दुर्योधन से पाई बारह योजन शत्र चले था देही गिरजन खाई सर्ब सोइन की लंका होती रावण से अधकाई कहां पयो दर बांधे हाथी खिन मैं पई पराई दुर्बासा से

जाए। दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नाम, सत्तर दोहे परे अमृत सार, बिख को मार कढावो, पाछे बहुर ना आवन पावो, अमृत बाणी घट ते उचरो, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, ए संसार ते तब ही छूटो, जो माया मह लपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहे तज दर्शन पावो, इत कर भगत करह जो जन, तिन भव सगल चुकाइए, कहत नाम देव बाहर क्या भरम हो, एह संजम हर पाइए, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा करहला, जो करंक निस नाद

ज्यों धरनी को इंद्र बालहा, कुसम बास जैसे भवरला, ज्यों कोकिल को अंब बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, चकवी को जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसुला, ज्यों तरनी को कंत बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, पार्क को जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली को जैसे नीर बालहा, त्यों मेरे मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डीठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, तांचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानू, हर हर नचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंडी महसागरा, रहाऊ।

लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे नाम तेरो तागा नाम फूल माला पार अठारह सगल जूठारे तेरो किया तुझह क्या अर्पों नाम तेरा तुही चवर टोलहारे दस अठा अठसठे चारे खानी यह बर्तन है सगल।

कर्मरि रहाव शंकर मस्तक बस्ता सुरसरी स्नान रे कुल जन मदे मिलियो सार्ग पान रे कर्म कर कलंक मफीत सरी विश्व का दीपक स्वामी ताचे रे स्वार्थी पंखी राये गरुड़ ताचे बांधवा कर्म कार अरण पिंगलारी अनक पात कहरता त्रे पवन नाथरी तीर्थ तीर्थ प्रमता लह ना पाररी कर्म कर कपाल मफीत सरी अमृत ससी तेन लक्ष्मी कल्पतर शिखर समागर नदी के नाथं कर्म कार्य खार मफीत सरी दादी ले लंका गाड़ पपाड़ी ले रावण बाण सालब साल आण तो खीले हरी कर्म कर कछोटी मफीत सरी पूर्व लो कृत कर्म ना मिटैरी कर गेहन ताचे मोहे जापी अले राम चे नाम बदत तरलोचन राम।

खंड खोजते नव निध पाई ना कछ आइबो ना कछ जाइबो राम की दोहाई रहाउ जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवै परम तत् है सतगुर हुए लखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करंते तिनके काज सुवारता रहाउ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो पनिया साधन नीका अनाज मंगो सत सीका।

जैत श्री महला चौथा कर पहला चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरे ही रह रतन नाम हर बसिया।

चौथा जैत श्री महला चौथा हीरा लाल अमूल कह पारी गिन गाहक मीका काखा रतन गाहक गुर साधु देखियो तब रतन बकानू लाखा मेरा मन गुप्त हीर हर राखा दीन दयाल मलायो गुर साधु गुर मिले हीर पराखा रहाऊ मनमुख कोठी अज्ञान अंधेरा तिन घर रतन ना लाखा ते उजड़ भरम मोए गावारी माया पुआंग बिख चाखा हर हर साध मेलो जन नीके

जिहवा क्या गुण आख बखान है। तुम वड अगम वड पुरखा, जन नानक हर कृपा धारी, पाखान डुपत हर राखा। जैत श्री महला चौथा, हम बारिक कछु न जान है गत मेत, तेरे मूर्ख मुग्ध एना, हर कृपा धार दीजै मत उत्तम, कर लीजै मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया उगलाना, हर हरियान मलायो गुर साधु, मिल साधु कपट खलाना रहाओ। गुर खिन खिन प्रीत लगावो मेरे ही अरे, मेरे प्रीतम नाम पराना, बिन नावे मर जाइए मेरे ठाकुर, जो अमली अमल लुभाना। जिन मन प्रीत लगी हर केरी, तिन तुर भाग पुराना, तिन हम चरण सरे वह खिन खिन, जिन हर मीठ लगाना। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, जन बिछरिया चिरी मलाना, तन तन सतगुर जिन नाम दिरडाया, जन नानक तिस कुरबाना। जैत श्री महला चौथा, सतगुर साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लाघबा, माया भुयंग ग्रस्यो है।

रहाउ। तन तन वड भाग मिलियो गुर साधु, मिल साधु लिव उन मन लागवा। तृष्णा अगन बुझी शांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके भाग खीन तुर पाई, जिन सत गुर दर्शना पाएबा। ते दूजै पाए पवह गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाएबा। हर देहो बिमल मत गुर साध पग सेव है, हम हर मीठ लगाएबा। जन नानक रेण साध पग मांगै, हर हुए दयाल दुआएबा। जैत श्री महला चौथा, जिन हर हृदय नाम ना बसेऊ। तिन मात की जय हर।

कृपाल कृपा प्रभ तारी गुरु ज्ञान दियो मन समझा रहाउ हर कीरत कल युग पादे उत्तम हर पाइय सतगुर महजा हम बलिहारी सतगुर अपने जिन गुप्त नाम पर गाजा दर्शन साध मिलियो वड भागी सब किल विख गए गवाजा सतगुर साहु पाया वड दाना हर किए बहु गुण सांझा जिनको कृपा करी जग जीवन हर उरतार्यो मन महजा धर्म राय दर कागद फारी जन नानक लेखा समझा जैत्री महला चौथा सत संगत साध पाई वड भागी मन चल तो भयो अरूड़ा अनहत धुन वाजह नित वाजे हर अमृत धार।

साकत बंद भय है माया, बिख संच है लाएज कीड़ा, हर कै अर्थ खर्च नह साक है, जम काल सह सिर पीड़ा, जिन हर अर्थ शरीर लगाया गुर साधु, बहु श्रद्धा लाए मुख धूड़ा, हलत पलत हर सोभा पाव है, हर रंग लगा मन गूड़ा, हर हर मेल मेल जन साधु, हम साध जना का कीड़ा, जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुर मिल साधु पाखान हरिओ मन मूड़ा। जैत श्री महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर हर सिमरोह अगम अपारा, जिस सिमरत दुख मिटै हमारा, हर हर सतगुर पुरख।

हर हर अमृत बचन सुनावहु, गुर मिलिया प्रगट होई राम, मधुसूदन हर माधु प्राणा, मेरा

हर हर हर हर भगत दृढ़ावहु, हर हर नाम उमा हाराम, हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कह रंग सदा गुण गाहा, हर हर हर जस घूमर पावहु, मिल सत

आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथ तत कढ़ाई, जप नाम रतन ओ महाराम, सखी मिलो मिल गुण गावाहा, गुरमुख नाम जप हो हर लाहा, हर हर भगत दृढ़ी मन पहा।

मिल सत संगत संग गुराहा, पूंजी नाम गुरमुख वेसाहा, हर हर कृपा धार मद सूदन। मिल

तोल अत पहारी गुरमत जप उमाहा राम सब कर्म धर्म हर नाम जपाहा किल विख महल पाप तुवाहा दीन दयाल हो जन ऊपर देहो नानक नाम उमाहा राम जय श्री महला पंजवा घर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई जाने कमन इहां जग मीत जिस होए कृपाल सोई बिद बूजै ताकी निर्मल रीत रहाउ मात पिता बनता सुत बंदप इष्ट मीत अर भाई

सब महियो वर्ण ना दिसै चिहन ना लखियै सुहागन सांत बजहियो सर्व निवासी घट घट वासी लेप नहीं अलपहियो नानक कहत सुनो रे लोगा संत रसन को बसहियो जय श्री महला पंजवा धीरों सुन धीरों प्रभ को रहाओ जी प्राण मन तन सब अर्पो नीरो पेख प्रभ को नीरो बेशमार बेअंत बड दाता मने गहीरो पेख प्रभ को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जप प्रभ को गुरु प्रसाद नानक मन वसिया।

तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परियो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत भेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाई मोरो हर चरणी चित लाग जय श्री महला पंजवां मन मह सतगुर ध्यान धरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहा काल जाल अर महाजंजाला छुटके जमह डरा आयो दुख हरन।

जिन रस रस हर गुण गाई, जय श्री महला पंजवां। गोविंद जीवन प्राण धन रूप, अज्ञान मोह मगन महाप्राणी।

या रस में है मग्न होत कृपाती महाविख्याति तूर आयु शरण दीन दुख भंजन चितवं तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को रब नानक बंधन शोर जय श्री महला पंजवा चातरक चितवत बरसत में कृपा सिंध करुणा प्रभ तारु हर प्रिय।

लाड़दास जाने अपने उदरे उदर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे जय श्री महला पंजवां आए अनक जन्म भ्रम सरणी उधर दे अंध कूप ते लाभ हो अपनी चरणी रहाओ ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना नाहिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लाभ हो बिखम नदी जाए तरनी सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मह तरनी हर दर्शन त्रिपत नानक दास पावत हर नाम रंग आभरनी जय श्री महला पंजवां हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवे पूर्ण दास के काम रहाओ कोट बिघन बिन सह हर सेवा निश्चल गोविंद धाम भगवंत भगत को भओ किश नाही आदर देवत जाम तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहु नानक सुख समूह विश्राम जय श्री महला नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद भूल्यो मन माया उरझायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जानियो नाहिन बन खोजन को तायो रतन राम घट ही के भीतर ताको ज्ञान ना पायो जन नानक भगवंत।

हमको त्रास भयो उरे अंतर, शरण गही कृपा निध तेरी रहाओ। महापतत मुग्ध लोभी फुन, करत पाप अबहारा

दहन दिस को उठ ताया, घट ही भीतर बसै निरंजन, ताको मर्म ना पाया, नाहिन गुण नाहिन कश जप तप, कौन कर्म अब कीजै, नानक हार परयो शरनागत, अपै दान प्रभ दीजै। जैत श्री महल।

को जोगी खोज तहारे पायो नाहे तेह पारा सो स्वामी तुम निकट पछानो रूप रेख ते न्यारा पावन नाम जगत में हर को कबहू नाहे संभारा नानक सरन परयो जग बंदन राखो हो बिरद तुहारा जैत श्री महला पंजवा संत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक दर्शन प्यासी दिन सरात चितवन दिन नीत खोल कपट गुर मेलिया नानक हर संग मीत संत सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया किस मोहन लाल प्यारे हो फिरो खोजंतिया तिस दस प्यारे सिर धरी उतारे एक पूरी दर्शन दीजे नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे।

पूरा पाया सगली तिखा बुजंतिया यार वे प्रयह बे सखिया मुंह कही ना जेहिया यार वे हिक डू हिक चाड़े हौ किस चिते हिया हिक डू हिक चाड़े अनक प्यारे नित कर दे भोग बलासा तिना देख मन चाओ उठंदा हौ कद पाई गुण तासा जिन्नी मैंदा लाल रजाया हौ तिस आग्या मन डेहिया नानक कह सुन बिनो सुहागण मूं दस दिखा पेर के हिया यार वे पेरे आपन पाना किसनीशी छंदा यार वे तैरावया लालन मूं दस दसंदा लालन तै पाया आप गवाया जै तन भाग मथाने बाहां पकड़ ठाकुर हौं किद्दी गुण अवगुण ना पछाणे गुण हार तै पाया रंग लाल बनाया तिस हब्बो किस सुहंदा जन नानक तन सुहागण साई जिस संग पता।

महामंगल रहसथिया फिर दयाल साधना वरंगिया वड भाग पाया गुर मिलाया साध कै सत संगिया आसा मनसा सगल पूरी त्रय अंक अंक मलाई बिनवंत नानक सुख सखेंदी सा मैं गुर मिल पाई जय श्री महा।

आठ पहर कर जोड़, सो प्रभ त्याई है, त्याए सो प्रभ सदा अपना, मन है चिंदिया पाई है, तज मान मोह विकार दूजा, एक स्यों निवलाई है, अर्प मन तन प्रभु आगे, आप सगल मिटाई है, बिनवंत नानक धार कृपा, साच नाम समाई है, सलोक रे मन ता कौ त्याई है, सब बिद जा कै हाथ, राम नाम तन संची है, नानक निब है साथ संत, साथी अड़ा प्रभ एक, दूसर नाहे कोए, थान थरंतर आप, जल थल पूर सोए, जल थल मैयल पूर रहया, सर्वदाता प्रभ धनी, गोपाल गोविंद अंत नाही, बेअंत गुणता के क्या गनी, पाज सरन स्वामी सुखागामी।

मान बूढ़े मरण चीत ना आवे, पुत्र मित्र व्यवहार बनता एह करत बिहावे, उज दिवस आए लिखे माए दुख धर्म दूत है जिथेया, किरत कर्म ना मिटै नानक हर नाम धन नहीं खटिया, उदम करह अनेक हर नाम ना गावही, भरम है जोन असंख मर जन्म है आवही, पशु पंखी सैल तरवर गणक कशु ना आवे, बीज बोवस भोग भोग है किया अपना पावे, रतन जन्म हर अंत जुए प्रभु आप ना पावही, बिनवंत नानक परम है परमाए खिन एक टिकन ना पावही, जोबन गया बेतीत जर मल बैठिया कर कंप है सिर डोल नैन ना डीठिया, नह नैन दीसै बिन भजन ईसै छोड़ माया चालिया, कहया ना मन है सिर खाक छन है जिन संग मन तन जालिया, श्री राम रंग अपार पूर्ण नह निमख मन मह वूठिया, बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया, चरण कमल शरण आए नानक आया, दुत्तर भै संसार प्रभ आप तराया, मिल साध संगे भजे श्री तर कर अंग प्रभ जी तारिया, हर मान लिए नाम दिए अवर कछ ना बिचारिया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया, गुण निधान अपार ठाकुर मन लोड़ींदा पाया, बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया।

साध संग हर गुण रमहु बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करनं माया अनेक उदम है हर भगत भाव।

शांत हुए केत बिद मन तीरे सलोक चरण कमल बिरहं खोजंत बैरागी दह दिसह त्यागंत कपट रूप माया नानक आनंद रूप साध संग मह मन साई मुख उच्चरा वत्ता हबे लो नानक हब अडंबर कूड़िया सुन जीवा सच्ची सोए पौड़ी बस्ता टूटी झुंपड़ी चीर सब छिन्ना जात ना पात ना आदरु उद्यान पर मिन्ना मित्र ना एठ धन रूपहीन किस साक ना सिन्ना राजा सगली सृष्ट का हर नाम मन पिन्ना किसकी धूड़ मन उदरै प्रभ हुए सो प्रसन्ना सलोक अनक लीला राज रस रूपं शतर चमर तख्त आसनं रचंत मूड अज्ञान अंध है नानक सुपन मनोरथ माया।

लोक बसंत स्वर्ग लोक है, जित ते पृथ्वी नव खंडन है, बिसरंत हर गोपाल है, नानक ते प्राणी उद्यान भरमण है, कौतिक कोड तमाशिया चेतना आवस नाउ, नानक कोड़ी नरक बराबरे, उजड़ सोई थाऊ पौड़ी, महाभयान उद्यान नगर कर मानिया।

बंदा वै त्यों संत जना हर प्रीत है। देख दर्श अगावे सलोक चितवंत चरण कमलं। सास सास आराधन है नह बिसरंत नाम अच्युत। नानक आस पूर्ण परमेश्वर है। सीतड़ा मन मजाहि पलक ना थीवै बाहरा। नानक आसड़ी निवाहि सदा पे खंदो सच धणी।

प्रभु कौन है जित प्रभ को पाई। सो मूरत भला संयोग है जित मिले गुसाई। आठ पहर हर त्याई कै मन इच्छ पुजाई। बड़े भाग सतसंग होए निव लागा पाई। मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई। सलोक पतत पनीत गोबिंद है सर्व दुख निवारण है। सरन सूर भगवान है जपंत नानक हर हर हरे। छड्यो हबे आप।

जपंदड़ो हर नाम पौड़ी, चरण कमल की ओट उदरे सगल जन। सुन प्रताप गोविंद निरपौ भये मन, टूट न आवै मूल संचिया नाम धन। संत जना स्यो संग पाई वड्डे पुन, आठ पहर हर

0: दयाल गुर
1: गुर पूर्ण नारायण है गुर दयाल समर्थ गुर गुर नानक पतत उदाहरण है भवजल बिखम असगाह गुर बोहित है तारियम नानक पूर करम सतगुर चरणी लग्या पौड़ी धन धन गुर देव जिस संग हर जपे गुर किरपाल जब पई ता अवगुण सब छपे पार ब्रह्म गुरदेव नीचो उच थपे काट सिलक दुख माया कर लीने अप दसे गुण गाए बेअंत रसना हर जसे सलोक दृष्टंत एको सुनियंत एको वर्तंत एको नर हर है नाम दान जा चंत नानक दयाल पुरख कृपा करह हिक सेवी हिक सम्मला हर इकस पह अरदास नाम वखर धन संचया।

गुर प्रसाद राग टोडी महला चौथा घर पहला हर बिन रह ना सकै मन मेरा मेरे प्रीतम प्राण हर प्रभ गुर मेले बहुर न भवजन फेरा रहाऊ मेरे ही अरे लोच लगी प्रभ केरी हर नैन हो हर प्रभ हेरा सतगुर दयाल।

कहिए है। तिन मस्तक भाग मंदेरा विवेक बुद्ध सतगुर ते पाई, गुर ज्ञान गुरु प्रभ केरा, जन नानक नाम गुरु ते पाया।

बाद संतन अवर न काहू जानी बेपरवाह सदा रंग हर कै जाको पाख स्वामी रहाउ ऊच समाना ठाकुर तेरो अवर न काहू तानी ऐसो अमर मिलियो भगतन को राज रहे रंग ज्ञानी रोग सोग दुख जरा मरा हर जन है नहीं निकटानी निरपो हुए रहे लिव एक नानक हर मन मानी टोडी महला पंजवा हर बिसरत सदा खुआरी ताको धोखा कहां ब्यापै जाको ओट तुहारी रहाउ बिन सिमरन जो जीवन बलना सर्प जैसे अर

तन उस जन्मा नानक तिस बलिहारी टोडी महला पंजवा कर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद तायो रे मन दह दिस तायो माया मगन स्वाद लोभ मोहयो इन प्रभ आप पलायो रहाव हर कथा हर जस साद संगत सियो एक मोहत ना एहु मन लायो बिगसेओ पेख रंग कसुंभ को पर ग्रह जोहन जायो चरण कमल सियो पाओ ना कीनो नह सत पुरख मनायो तावत कहो तावह बहु भांति ज्यो तेली बल्द परमायो नाम दान इशनान ना कियो एक निमख ना कीरत गायो नाना झूठ लाए मन तो खियो नह बूझियो अपनायो पर उपकार न कबहू किए नहीं सतगुर सेवत आयो पंच दूत रच संगत गोष्ट मतवारो मद मायो करो बेनती साध संगत हर भगत वश्चल सुन आयो नानक भाग परयो हर पाछे राख लाज अपनायो टोडी महला पंजवां मनुख बिन बूझे बिरता आया अनक साज शिंगार बहु करता ज्यो मृतक ओढ़ाया रहाओ ताए ताए कृपन सरम कीनो एकत्र करी है माया दान पुन नहीं संतन सेवा कित ही काज ना आया कर आभरण सवारी सेजा कामन थाट बनाया संग न पायो अपने परते पेख पेख दुख पाया।

तैसी बुद्ध करहो परगासा, लागे प्रभ संग प्रीत रहाउ। दास तुम्हारे की पावो धूरा, मस्तक ले ले लावो। महापतत ते होत पनीता, हर कीर्तन गुण गावो। आज्ञा तुमरी मीठी लागो, कियो तुहारो पावो। जो तू देहे तही एहो तृप्तै, आन न कतहु तावो। सब ही निकट जानो प्रभ स्वामी।

काल अनेक भोग रस सगल तरवर की श्याम ताए ताए बहु विध कौ तावै सगल निरारत काम बिन गोविंद अव

पंजवां सतगुरे आयो शरण तुहारी मिले सूख नाम हर सोबा चिंता लाहे हमारी रहाओ अवर

पावह सेव हर के चरण रसायन जन्म मरण दोहू ते छूटह पवजल जगत तरायण खोजत खोजत

थाट्यो खात खर्चत किसन खुटत नाही राम रतन धन खाट्यो पसमा भूत हो आखिन भीतर अपना किया पाया आगम निगम कह जन नानक सब देख लोक सबाया टोडी महला पंजवा किरपन तन मन किल विख भरे साध संग भजन कर स्वामी ताकन को एक हरे रहाओ अनक शिदर बोहित के छुटकत थाम ना जाही करे जिसका बोहित तिस अरादे खोटे संग खरे गली सहल उठावत चाहे वे ऊहा ही है तरे जोर सकत नानक किश नाही प्रभ राखो सरन परे टोडी महला पंजवा हर के चरण कमल मन त्याओ काड कुठार पित बात हंता औखद हर को

ए दुख पंजन जाका बड परताप तोड़ी महला पंजवा स्वामी सरन परयो दरबारी कोट अपराध खंडन के दाते तुझ बिन कौन उदारी रहाओ खोजत खोजत बहु परकारे सर्व अर्थ बिचारे साध संग परम गत पाईए माया रच बंद हारे चरण कमल संग प्रीत मन लागी सुर जन मिले प्यारे नानक अंध करे हर जप जप सगले रोग निवारे टोडी महला पंजवा घर तीजा चौपदी।

या टोडी महला पंजवा हमारे एकै हरी हरी आन अवर सियान ना करी रहाऊ बड़े भाग गुरे अपना पायू गुरमो को।

सब किस किस के ग्रह मह आया, टोडी महला पंजवा घर चौथा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रूढ़ो मन हर रंग।

आयो रे। महाराज रो गाथ बाहु स्यो लुबड़ियो, नेह भागड़ो पाहे संजोयो रे। सुन मन सीख साधु जन सगलो, थारे सगले परास्त मिट्यो रे। जाको लहणो महाराज री गाठड़ियो, जन नानक गर्भास ना पौड़ियो रे। टोडी महला पंजवा कर पंजवा दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन, पंच दुख अर अंग रोग। एह तन ते सगल दूर कीन रहाओ, बंधन तोर छोर बिख्याते। गुर को शब्द मेरे ही अरे दीन, रूप अनरूप मोरो कछ ना बिचारियो। प्रेम गहियो मोहे हर रंग पीन, पेखियो लालन पाठ बीच खोए। अनद चिता हरखे पतीन, तिस ही को ग्रहो सोई प्रभ नानक।

बिसर नहीं निम कही रेते, अपने भगत को पूर्ण दान रहाओ। खोबो परम राख मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगड़ सुजान। कोट राज नाम धन मेरे, अमृत दृष्ट तारुह प्रभ मान। आठ पहर रसना गुण गावे, जस पूर अगावे समरथ कान। तेरी शरण जीयन के दाते, सदा सदा

हजूर जो तुमरा जस गावह करते से जन कभो ना मरते चूर धंद बंद बिनसे माया के साधु संगत मिटे बिसूर सुख संपत भोग इस जी के बिन हर नानक जाने कूर।

राम निरंजन करते मन तन ते सब किल विखनास पूर्ण पार ब्रह्म सुख दाते अबनासी बिमल जा को जास संत प्रसाद मेरे पूर मनोरथ कर कृपा भेटे गुण तास शांत सहज सुख माने उपजेव कोट सूर नानक प्रगास टोडी महला पंजवा हर हर पतत पावन जी प्राण मान सुख दाता अंतर जामी मन को पावन रहाओ सुंदर सुगड़ चतुर सब बेता रिददास निवास भगत गुण गावन निर्मल रूप अनूप स्वामी कर्म भूम बीजन सो खावन विस्मन विस्म पय।

सुख कोट आनंद राज सुख भुगवे हर सिमरत बिनसै सब दुख रहाउ कोट जन्म के किल विख नास है सिमरत पावन तन मन सुख देख स्वरूप पूर्ण भई आसा दर्शन भेटत उतरी भुख चार पदार्थ अष्ट महासिद्ध काम तीन पार जात हर हर रुख नानक शरण गही सुख सागर जन्म मरण फिर गर्भ ना दुख टोडी महला पंजवा हर हर चरण हृदय उरतारी सिमर स्वामी सतगुर अपना कार्य सफल हमारा।

अतुल सुख पाया ठाकुर अगम अपारी जो जन पार ब्रह्म अपने कीने तिनका बहुर कछ ना बिचारी नाम रतन सुन जप जप जीवा हर नानक कंठ मजारी टोडी महला नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कहो कहां अपनी अदम्भाई।

कबहू होत जो संग सहाई मगन रहे हो माया मैं निस दिन छुट्टी ना मन की काई कह नानक अब नाही अंत गत बिन हर की सरनाई टोडी बाणी भगतां की एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई बोले निर्वा कोई बोले दूर जल की माछली चरे खजूर काए रे बकवाद लायो जिन हर पायो तिन्ह छपायो रहाओ पंडित हुए कै बेद बखाने मूर्ख नाम देव राम जान कौन को कलंक रहो राम नाम लेत ही पतत पवित भय राम कहत ही रहाओ राम संग नाम देव जन को प्रतज्ञा आई एकादशी बरत रह काहे को तीर्थ जाई पंत नाम देव सो कृत समत भय गुरमत राम कह को ना बैकुंठ गए तीन संदे खेल आछे रहाओ कुंभार के घर हांडी आछे राजा के कर सांडी गो बामन के कर रांडी आछे रांडी सांडी हांडी गो बाणिये के कर हींग आछे पैसर माते सींग गो देवल मदे लीग आसे लीग सीग हींग गो तेली कै कर तेल आछे।

ईश्वर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक को हर पेटे स्वामी दुख हमै रोग गुआयो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावे जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावे रहाऊ जो

हंस तारा, कोटक तंत्र के पाप सब खोवे, हर पवजल पार उतारा रहाउ, काया नगर बस्त हर स्वामी, हर निर्भव निर्वैर निरंकारा, हर निकट बसत कस नगर ना आवे, हर लादा गुर विचारा, हर आपे साहू सराफ रतन हीरा, हर आप की आपा सारा, नानक जिस कृपा करे, सो हर नाम विहाजे, सो साहू सच्चा बणजारा, बैराड़ी महला चौथा, जप मान हर निरंजन निरंकारा, सदा सदा हर त्याय सुखदा।

उदर मंजारा सोवे साहर सेवो मेरे मन हर अंत छावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन को करहो नमस्कारा।

सा व्रत पूजा जित हर स्यो प्रीत लगाए, बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी, एक खिन मैं बिसर सब जाए, तू बेअंत सर्व कल पूरा किसी

प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेश तो दरगोस पुन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल ग्रिफ तह दिल हेच ना दानी रहाउ जन पिसर पदर बिरादरा कसनेस दस्तंगीर आखर बेअपतम कस ना दारद चू स्वद तकबीर सब रोज गस्तम दर हवा कर देम बदी खयाल गाहे ना नेकी कार करदम मम ईचनी अहवाल बद बखत हम चोब खील गाफिल बे नजर बेबाक नानक बुगोयद जन तुरा तेरे चाकरा पाखाक तलंग महला पहला कर दूजा।

तौ दर्शन की करो समाए, मैं दर मांगत भीख्या पाए। रहाउ केसर कुसुम मृग मैं हरना, सर्ब शरीरी चढ़ना। चंदन भगता जोत अनेही, सर्वे परमल करना। के पट भांडा कह ना कोई, ऐसा भगत वर्ण मह होई। तेरे नाम निवे रहे लिव लाई, नानक तिन दर पीछिया पाई। तलंग महला पहला कर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एह तन माया पाया प्यारी, लीतड़ा लभ रंगाई। मेरे कंपना पावे चोलड़ा प्यारी, क्यों धन सीजै।

कामन नौ निद पाई अपने कंत प्यारी सा सुहागन नानक सा सबराई ऐसे रंग राती सहज की माती एहन सफाए समाणी सुंदर साए स्वरूप विचखण।

पाप की जंज लह काबल हो ताया, जोरी मंगे दान वे लालो, शर्म धर्म दोए शप खलोए, कूड़ फिरे परदान वे लालो, काजियां बामणा की गल थकी,

रूपा सिमर सिमर सिमर जन सोई नानक कर्म प्राप्त होई। जिन जपया तिस कहो बलिहार तिस कै संग तरै संसार कहो नानक।

मन तन बसै सच साहा बंदी मोच रहाउ। दीद ने दीदार साहिब कछ नहीं इसका मोल, पाक परवदगार तू खुद खसम वड्डा।

उस्तत है, जो हर प्रभ भावे, जो गुरमुख प्यारा सेम दे, तिन हर फल पावे, जिन्ना हर सेती पिरहड़ी, तिना जी प्रभ नाले, ओए जप जप प्यारा जीव दे, हर नाम संभाले, जिन गुरमुख प्यारा सेविया, तिन को घुम जाया, ओए आप छुटे परवार सिउ, सब जगत छडाया, गुर प्यारे हर सेविया, गुर धन गुर तनो, गुर हर मार्ग दसिया, गुर पुन वड पुनो।

आपे हार एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी कलंग महला नौवां काफी एक ओंकार सतगुर प्रसाद चेतना है तू चेत लै निस दिन मैं प्राणी छिन छिन औद बे

संपत रथ धन राज सिउ अतनेहो लगायो काल पास जब गल परी सब भयो परायो जान बूझ कै बावरे तैं काज बिगारियो।

चिलकना कोटिम कालड़ी मस तोतियां झूठ ना उतरै जे सौ तो तिस सज्जन से ही नाल मैं चल दिया नाल चलन जिथे लेखा मंगी है तिथे खड़ी दिसन रहाउ कोठे मंडप माड़िया पासों चितवियाह टटियां कामना आवनी विचों सखणियाह बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मांज वसन कोट कोट जिया खावने बग्गे ना कहियन सिमल रुख शरीर मैं जन देख पुलन से फल कामना आवनी ते गुण मैं तन हन अंदल

नानक नाम संभाल तू बदा छुट है जेत सुई महला पहला जप तप का बंद बेड़ला।

इनको लिखिया अमृत हर का नाउ देवै दिखिया चल है सतगुर भाई पवह ना भीखिया जा को महल हजूर दूजे निवै किस दर दर वाणी नाही मूले पुछ तिस छुट्टै ता कै बोल साहिब नदर जिस कले आने आप जिस नाही दूजा मतै कोई।

जो तिस भाव सी पांदा आत्मलीन तोता अच्छा ना होए सी गुरु द्वारे होए सोजी पाए सी एत द्वारे तोए अच्छा होए सी मैले हचे का विचार आप वरताए सी मत को जाने जाए अग्गे पाए सी जे कर्म कमाए तेहा हुए सी अमृत हर का नाउ आप वरताए सी चलिया पत स्यों जन्म सवार वाजा वाए सी मानस क्या विचारा तेहो लोक सुनाए सी नानक आप निहाल सब कुल तार सी सूही महला पहला जोगी होवे जोग वै भोगी होवे खाए तपिया होवे तप करे तीर्थ मल मल नहाए तेरा सदड़ा सनीजै भाई जे को बह अलाए रहाउ जैसा बीजै सो लुणे जो खट्टे सो खाए अगे पुछ ना होवई जे सण निशान जाए तैसो जैसा कांडियै जैसी कार कमाए जो दम चेतना आवई सो दम बिरथा जाए एहो तन वेची बै करी जे को लए विकाए नानक कम ना आवई जित तन नाही सच्चा नाउ सूही महला पहला कर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद जोग ना खिंथा जोग ना डंडै जोग ना पसम चढ़ाई जोग ना मुंदी मूंड मडाए जोग ना सिंगी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गली जोग ना हुई एक दृष्ट कर समसर जान।

जोग ना दिए सिद्ध संतर भवे है, जोग ना तीर्थ नाई है, अंजन माहे निरंजन रही है, जोग जुगत इव पाई है, सतगुर भेटै।

हर हर करहें नित कपट कमावह, हृदय शुद्ध ना हुई अन दिन कर्म करहें बहुतेरी, सुपने सुख ना हुई ज्ञानी गुर बिन भगत ना हुई, कोरे रंग कदे ना चढ़े जे लोचे सब कोई रहाव, जप तप संयम वर्त करे पूजा मनमुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभमाना दूजे पाए।

गुण नाम दृढ़ाई, हौ हर प्रभ प्यारा ढूंढ ढूंढाई, सत संगत मेरा हर रस पाई, तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेले हर पाई, सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाई, गुरमुख हर हर नाम समाई, हर रंग राता मन रंग माणी, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ, हर रंग को लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मनमुख मुग्ध नर कोरा होई, जिसो लोचै रंग ना होवै कोई, नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै, सूही महला चौथा, जिहवा हर रस रही अगाई, गुरमुख पीवै सहज समाई, हर रस जन चाखो हो जे पाई, तौ कत अनत साद लुभाई रहाउ, गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मरार, मनमुख हर रस चाखिया ना जाई, हौ मैं करै बहुती मिलै सजाई, नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस

जिसनो हर सो प्रसन्न हुए सो हर गुणा रवे सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय बसिया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुरु की सफल है जिसके पाइए परम निदान जो दूजे पाए साकत कामना अर्थ दुर्गंध सरेम दे सो ने

समान जो बिन परतीती कपटी कूड़ी कूड़ी अखी मीट दे उनका उत्तर जाएगा झूठ गमान जेता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जेहा तू कराए तेहा हों करी बखियान सूही महला चौथा घर सतवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरे कवन कवन गुण।

त्यो नानक साध जना जगत आन सब पैरी पाए। सूही महला चौथा। तू करता सब किसे आपे जान है, क्या तुद पह आख सुनाई है। बुरा भला तुद सब किस सूझे, जेहा को करे तेहा को पाई है। मेरे साहिब तू अंतर की बिद जान है, बुरा भला तुद सब किस सूझे, तुद भावे तिवें बला वह रहाओ। सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मनुख भगत कराई। एक ना सतगुर मेल सुख देवह, एक मनमुख धंद पिटाई। सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना

अंतर वस्या मेरा हर हर तिनके सब रोग गवाई ते मुक्त पये जिन हर नाम त्याया तिन पवित परम पद पाई मेरे राम हर जन अरोग पये।

जो हर भावे त्यों रखिए मेरे हर जियो सब को तेरे वस असा जोर नाही जे किछ कर हम साक है।

तुज श्रेष्ठ सब साजी कोई सेवा करो जे किछ कीता होवै इकना सतगुर मेल तू बुझावे है एक मनमुख करह से रोवै हर की वडिआई।

मैं मालत हुई कहो नानक मेरी परम गत हुई सूही महला पंजवा कीता लोड़ है सो प्रभ होए तुझ बिन दूजा नाही कोई जो जन सेवे तिस पूर्ण काज दास अपने की राखो लाज तेरी सरन पूर्ण दयाला तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाऊ जल थल महियल रहया भरपूर।

आवे सास सुहागण अंक समावे गर्भ गहेली महल ना पावे फिर पछतावे जब रहन बिहावे कर्महीन।

जन नानक पिर तन मिल सुख पाया, सूही महला पंजवा उमके ओहियो मिलन प्रभ ताई, खोजत चरयो देखो प्रिय जाई, सुनत संदेसरो प्रिय ग्रह सेज बछाई, भ्रम भ्रम आयो तो नदर ना पाई, किन बेदही अरो तीरै निमानो, मिल साजन हों तुझ कुर्बानो रहाओ, एका सेज विशी धन कंता।

सी बहुत दिन लागी, देश दसंतर मैं सगली झागी, खिन रहन ना पावू बिन पग पागी, वे कृपाल प्रभ मिलह सुभागी, पयो कृपाल सतसंग मलाया, बूझी तपत करह फिर पाया, सगल शिंगार हुन मुझे सुहाया, कहो नानक गुर परम चकाया, जह देखा तह पिर है पाई।

कूठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया, अवसर अपना बुझे ना याना, माया मोह रंग लपटाना रहाओ, लोभ लहर को बिगस फूल बै।

भीना, हर जस सुनत आलस मन कीना, दृष्ट नाही ए पेख ते अंधे, छोड़ जाहे झूठे सब तंदे रहाओ। कहो नानक प्रभ बख्श करी जै, कर कृपा मुहे साध संग दीजै, तो किश पाइय जो होइय रे ना।

कामह वासह भगत प्यारी, सहज कथा प्रभ की अत मीठी, विरलै काहू नेत्र हो डीठी रहाउ, कह गीत नाद अखारे संगा, ऊहा संत करह हर रंगा, कह मरन न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत वरखा, गोज कथा एह गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी, सूही महला पंजवा, जा कै दर्श पाप कोट उतारी, भेट तसंग इहो भव जल तारी, ओए साजन ओए मीत प्यारी, जो हम कहो हर नाम चितारी रहाउ, जा का शब्द सुनत सुख सारी, जा की टहल जमदूत बदारी, जा की तीरक इस मन है सधारी।

लपट लपटाना छोड़ चलिया ता फिर पछताना कृपा निदान नानक को करो दात नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा कट कट अंतर तुम्हें बसारी सगल समगरी सूत तुम्हारी तू प्रीतम तू प्राण आधारी तुम ही पेख पेख मन बिगसारी रहा अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारी ओट गही अब साध संगारी अगम अगोचर

का भांडा, हाथ कुचील मिलै जम डांडा, काम क्रोध लोभ मोह बादा, महा गर्त मह निगरत जाता।

मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला सुई महला पंजवा दर्शन।

साजन सुत बंध पपाई, जत कत पीखो हर संग सहाई, जत मेरी पत मेरी धन हर नाम, सुख सहज आनंद विश्राम रहाव, पार ब्रह्म जप पहर सलाह, कोट आवद तिस बेदत नाही, हर चरण सरन गढ़ कोट हमारे, काल कंटक जम तिस ना बदारे, नानक दास सदा बलिहारी, सेवक संत राजा राम मरारी, सूही महला पंजवा, गुण गोपाल प्रभ के नित गाहा, आनंद बनोद मंगल।

दूर बछाहा जन्म जन्म के किल विखलाहा मन तन प्राण जियो अरपाहा हर सिमर सिमर मान मोह कटाहा दीन दयाल करहु उत्साहा नानक दास हर सरन समाहा सुई महला पंजवा बैकुंठ नगर जहां संतवासा प्रभ चरण कमल रिद माही निवासा सुन मन तन तुझ सुख दिखलावू हर अनक बिंजन तुझ भोग पुंचावू रहाउ अमृत नाम पुंच मन माही आचर्ज साध ताके बरनी ना जाही लोभ मुआ तृष्णा बुझ थाकी पार ब्रह्म की शरण जन ताकी जन्म जन्म के भय मोह निवारी नानक दास प्रभ कृपा तहारी सूही महला पंजवा अनक बींग दास के पर हरिया कर कृपा प्रभ अपना करिया तुम्हें छडाई लियो जाने अपना उर्ज परियो जाल जग सुपना रहाओ पर्वत दुख महा बिकराला किन मैं दूर किए दयाला सोग रोग विपत अत भारी दूर पई जप नाम मरारी दृष्ट धार लीनो लड़ लाए

आहार पूदाता प्रदेवन हार राम रमत संतन सुख माना नानक देवन हार सुजाना सुई महला पंजवा बहती जात कदे दृष्ट ना धारत मिथ्या मोह बंद है नित पारच माधवे भज दिन नित रैनी जन्म पदार्थ जीत हर सरनी रहाओ करत विकार दू कर चारत राम रतन रिद तिल नहीं धारत भरन पोखण संग औद बेहानी जय जगदीश की गत नहीं जानी सरन समराते अगोचर स्वामी।

सिमर रत्नागर सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब बिन से गुरपूरे मिल पाप तजायन रहाउ। जीवन पदवी हर का नाउ मन तन निर्मल साच सुआउ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है पूर्व लिखत होए ता पाई है।

त्यो मूड़ा जित तू लाव है तित तित लगना जा तू देहे तेरा नाव जपना रहाउ हर के दास हर सेती राते राम रसायण अन दिन माते बाहा पकर प्रभ आपे काढे जन्म जन्म के टूटे गांडे उधार स्वामी प्रभ कृपा तारी नानक दास हर सरन द्वारी सूही महला पंजवा संत प्रसाद निश्चल घर पाया सर्ब सुख फिर नहीं डोलाया गुरु त्याए हर चरण मन चीने ताते करता असथर कीने रहाउ गुण गावत अचुत अबनासी ताते काटी जम की फासी।

एको नाम मन मह प्रवेशा साधु तूर मुख मस्तक लाई नानक उदरे हर गुर सरनाई सुही महला पंजवा कर तीजा गोविंदा गुण गाओ दयाला दर्शन देहो पूर्ण कृपाला रहाओ कर कृपा तुम ही प्रतपाला जियो पिंड सब तुमरा माला अमृत नाम चल जप नाला नानक जाचै संतर वाला सूही महला पंजवा किस बिन दूजा।

महला पंजवा दर्शन कौ लोचै सब कोई पूरे भाग प्राप्त होई रहाउ श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई महामोहनी दूता लाई प्रेम बशोहा करत कसाई निर्दय जंत तिस दया ना पाई अनक जन्म बीतियन परवाई घर वास ना देवै दुत्तर माई दिन रैन अपना किया पाई

जो सगल कौ फिर फिर लपटाऊ करहो कृपा करनापति तेरे हर गुण गाऊ नानक की प्रभ बेनती साध संग समाऊ राग सूही महला पंजवा कर पंजवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीत प्रीत गुरिया

सरनी आया पुरुष आया कृपा आया ज्यो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग गुरह पठाया रहाउ महा दुत्तर माया जैसे पवन चलाया सुन सुन ही डराया कर रो धर्म राया गृह अंध कुपाया पावक सगराया गही ओट सधाया नानक हर त्याया अब मैं पूरा पाया राग सूही महला पंजवा कर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

या पार ब्रह्म तेरिया चरना कहो बलिहारा राग सूही महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तेरा पाना तू है मनाई।

जित तुद त्याई निर्मल हुवै देहा मेरे राम हौं सो थान पालने आया खोजत खोजत भया साध संग तिन सरनाई पाया रहाऊ वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे हारे एक तिल नहीं कीमत पाई साधक सिद्ध फिरह बिल लाते ते पी मोहे माई दस अवतार राजे हुए।

सुख आनंद नाम रस हर संति मंगल गाया सफल दर्शन भेट्यो गुरु नानक ता मन तन हर हर त्याया।

प्रीजै, साध संग जो हर गुण गावै सो निर्मल कर लीजै। वेद कतेब सिमरत सब सासत, इन पढ़िया मुक्त ना हुई। एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, अपदेश चहो वरना को सांझा। गुरमुख नाम जपै उदरै सो कल मह।

जल थल मही अल सोई रहाउ, कोट अपराधी संत संग उदर है, जम ता कै नेड़ ना आवे, जन्म जन्म का बिछड़िया हुवे, तिन हर

इनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बख्श ना मेटे कोई, सतगुर का दिलासा, नाम ते आयन सुख फल पायन, आठ पैर आराध है, तेरी शरण तेरे परवास है, पांच दुष्ट लै साध है, ज्ञान ध्यान किस कर्म न

राग सूही अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद सब अवगुण मैं गुण नहीं कोई क्यों कर कंत मलावा होई ना मैं रूप ना बंके नैना ना कुल ढंग ना मीठे बैना रहाओ सहज शिंगार कामन कर आवे तां सुहागण जां कंतै पावे ना तिस रूप ना रेखिया काई अंत ना साहिब सिमरिया जाई सुरत मत नाही चतराई कर कृपा प्रभ लाभ पाई खरी सियाणी कंत ना पाणी माया लागी परम पलाणी हों मैं जाई तां कंत समाई तौ कामण प्यारे नव निद पाई अनक जन्म बिछरत दुख पाया कर गै ले हो प्रीतम प्रभ राया भणत नानक सहो है पी होसी जय भावै प्यारा तै रवेसी सूही महला पहला कर नौवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद कच्चा रंग कसुंभ का थोड़िया दिन चार जीओ विण नावै भ्रम भुलिया ठग मुठी कूड़े आर जीओ।

ना बूझह आपना से पशुआ से ढोर जियो नित नित खुशियां मन करे नित नित मंगै सुख जियो करता चेतना आवई फिर लगह दुख जियो सुख दुख दाता मन वसै तित तन कैसे।

सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शन हार जियो, अनको की जय मितड़ा, खाक रल मर जाए जियो, बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आ

दसै मूर्ख मन समझाए आखों के तड़ा गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा नित नित हृदय संभाल प्रीतम अपना जे चलै गुण नाल नाही दुख संतापना मनमुख भरम भुलाना ना तिस रंग है मरसी होए वडाणा मन तन भंग है गुर की कार कमाए लाहा घर आणिया गुरबाणी निर्वाण शब्द पछाणिया एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजै नाम निवास हर गुण गावसी सूही महला पहला ज्यों आरण लोहा पाए भन कढ़ाई है त्यों साकत जोनी पाए भवै पवाई है बिन बूझे सब दुख दुख कमावना हों मैं आवै जाए भरम भुलावना रहाओ तू गुरमुख रखण हार हर नाम ते आई है मेलह तुझ रजाए शब्द कमाई है तू कर कर वेख है आप देहे सो पाई है तू देख है थाप उथाप दर बेनाई है देही होवग खाक पमन उड़ाई है एहो कित्थे कर औताक महल ना पाई है देहो दीवी अंध कोर कप महाई है गर्भ मुसै घर चोर किस रुआई है गुरमुख चोर ना लाग हर नाम जगाई है शब्द निवारी आग जोत दी पाई है लाल रतन हर नाम गुरसुरत बुझाई है सदा रह नेह काम जे गुरमत पाई है रात देह हर नाम मन वसाई है नानक मेल मलाए जे तुद पाई है सूही महला पहला मनो ना नाम वसार एहन सत्याई है ज्यो राख है कृपा धार तिवै सुख पाई है मैं अंदले हर नाम लकटी टोहनी रहो साहिब की टेक नामो है मोहनी रहाओ जह देखो तह नाल गुर दे खालिया अंतर बाहर पाल शब्द निहालिया सेवी सतगुर पाए नाम निरंजना तुद भावै तिवै रजाए भरम पौ भंजना जन्मत ही दुख

गुरमुख गावे गुरमुख बूजे गुरमुख शब्द बिचारी जियो पिंड सब गुर ते उपजे गुरमुख कारज सुवारी मनमुख अंधा अंध कमावे दिख खट्टे संसारी माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुर अत प्यारी सोई सेवक जे सतगुर सेवे चाले सतगुर पाई साचा शब्द सिफत है साची।

चाखी तृष्णा अग्न बुझाए, गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रहिया समाय। हर का नाम सत कर जाने, गुर कै भाई प्यारी सच्ची वडियाई गुर ते पाई, सच्चै नाई प्यारी एको सच्चा सब मह वरतै, विरला को विचारी आपे मेल लए ता बख्शे सच्ची भगत सवारी। सबो सच सच सच वरतै, गुरमुख कोई जाने जम्मण मरना हुक्मो वरतै, गुरमुख आप पछाणे नाम त्याए ता सतगुर पाई, जो इच्छै सो फल पाई। नानक तिसदा सब किश होवै, जे विचो आप गवाए। सूही महला तीजा काया कामन अत सवालियो, फिर वसै जिस नाले फिर सच्चे ते सदा सुहागण। गुर का शब्द सुमहले हर

अलख न लख आ जाई मनमुख मुगध बूझै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लिखाई काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे भंडारा इस काया अंदर नौ खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा इस काया अंदर नाम नौ निद पाईए गुर कै शब्द विचारा काया अंदर तोल तलावे आपे तोलन हारा इहो मन रतन जवाहर मानक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाईए नाही नाम पाईए गुर बीचारा गुरमुख होवै सो काया खोजै होर सब भरम भलाई जिसनो दे सोई जन पावै होर क्या को करे चतुराई काया अंदर भाओ भाओ वसै गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चै अपना खेल रचाया आवा गौण पासारा पूरे सतगुर आप दिखाया।

मिलन जो सतगुर सेवन अंतर नव निध नाम है खान खर्चन नान खुटई हर गुण सहज रवन ना ओए जन्म है ना मर है ना ओए दुख सहन गुर राखे से उभरे हर स्यों केल करन सज्जन मिले ना विछड़ है जे अन दिन मिले रहन इस जग में विरले जानी है नानक सच लहन सूही महला तीजा हर जी सूखम अगम है कित बिद मिलिया जाय गुर कै शब्द भ्रम कटी है अचिंत वसै मन आय गुरमुख हर हर नाम जपन हौ तिन कै बलिहार न मन हर गुण सदा रवन रहाव गुर सरवर मान सरोवर है वड भागी पुरख लहन सेवक गुरमुख खोजिया से हंसले नाम लहन नाम त्याइन रंग सिउ गुरमुख नाम लगन तुर पूर्व होए लिखिया गुर भाणा मन लेन वड भागी घर खोजिया पाया नाम निदान गुरपूरै वे खालिया प्रभ आत्म राम पछान सबना का प्रभ एक है दूजा अवर ना कोए गुर प्रसादी मन वसै तित घट प्रगट होए सब अंतर जामी ब्रह्म है ब्रह्म वसै सब थाए मंदा किसनो आखिए शब्द वेखो हो लिवलाए बुरा भला तिचर आखदा जिचर है दोहो माहे गुरमुख एको बुझिया एक समाहि समाए सेवा सा प्रभ भावसी जो प्रभ पाए थाए जन नानक हर अरादिया गुर चरणी चित लाए राग सूही अष्टपदिया महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद कोई आन मलावे मेरा प्रीतम प्यारा हौ तिस पह आप बचाई दर्शन हर देख।

तुझ अराधी दुख पी तुझ त्याई जे भुख दे ता इत ही राजा दुख विच सूख मनाई तन मन काट काट सब अर्पी विच

आई। जे गुर झिड़के ता मीठा लागे, जे बख्शे ता गुर वडियाई। गुरमुख बोले है सो थाए पाए, मनमुख किस थाए ना पाई। पाला ककर वर्फ वरसै, गुर सिख गुर देखन जाई। सब दिन सरैन देखो गुर अपना, विच अखी गुर पैर तराई। अनेक अपाव करी गुर कारण, गुर भावै सो थाए पाई। रैन दिनस गुर चरण अरादी, दया करहो मेरे साई। नानक का जियो पिंड गुरु है, गुर मिल तृप्ति अघाई। नानक का प्रभ पूर रहियो है, जात कत तत गुसाई। राग सूही महला चौथा।

गुर सलाहिय उठदियां पी गुर अलाव। कोई ऐसा गुरमुख जे मिले हौं तां के धुआं पाव। कोई ऐसा सज्जन लोड़ लहो मैं प्रीतम दे मलाए। सतगुर मिलिया हर पाया मिलिया सहज सुपाए। सतगुर सागर गुण नाम का मैं तिस देखन का चाऊ। हौं तिस बिन घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मर जाऊ। ज्यों मछली बिन पानीए रह ना कितै उपाए। त्यों हर बिन संत ना जीवई बिन हर ना मैं मर जाए। मैं सतगुर सेती पिरहड़ी

गुरु तुठा देव माए, मैं धर सच्चे नाम की, हर नाम रहा लिव लाए। गुर ज्ञान पदार्थ नाम है, हर नामो दे दृढ़ाए। जिस

प्रभ दरबारा आस अंदेसा बंद पराना महल न पावे फिरत बेगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास जो जल बिन मीना कशु सियानप उकत ना मोरी एक आस ठाकुर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे पयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अगन शोक सागर कर कृपा उधर हर नागर चरण कमल सरनाए नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत पै मेटन साध संग जम दूत ना भेटन जीवन रूप अनूप दयाल।

आद मध अंत प्रभ सोई, नानक तिस बिन अवर ना कोई। राग सूही महला पंजवां, अष्टपदियां घर नौवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जिन जिठिया मन रहसी है, क्यों पाई है तिन संग जियो। संत सज्जन मन मित्र से, लाइन प्रभ स्यों।

सुनी कूड़ कमावै धंद जियो नाम त्यावै से जिन चले गुरपूरे संबंध जियो हुक्मे जोग मह आया चलन हुक्म संजोग जियो हुक्मे परपंच पसरिया हुक्म करे रस भोग जियो।

मन बुठा निरंकार जियो तां का अंत ना पाईऐ ऊंचा अगम अपार जियो जिस प्रभ अपना विसरै सो मर जम्मै लख वार जियो साच नेहो तिन प्रीतमा जिन मन बुठा आप जियो गुण सांझी तिन संग बसे आठ पहर प्रभ जाप जियो रंग रते परमेश्वरै बिनसे सगल संताप जियो तू करता तू करनहार तू है एक अनेक जियो तू समरथ तू सर्वमय तू है बुद्ध विवेक जियो नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो राग सूही महला पंजवा अष्टपदियां कर

दातड़ी नित हृदय रखा संभाल पाव जलाई पंध तौ नैनी दर्श दिखाल श्रवणी सुनी कहानियां जे गुर की वै कृपाल किती लख करोड़ प्रिये रोम ना पुजन तेरिया तू साही हूं साह हों कह ना सका गुण तेरिया सहिया तऊ असंख मन्यो आप वधानिया एक भोरी नदर निहाल देह दर्श रंग माणिया जय जिथे मन धीरी है किले विख मंजन दूरे सो क्यों विसरै माओ मैं जो रहे आपर पूरे होए नमाणी तह पई मिलिया सहज सुपाए पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय तू ही महला पंजवा सिमरत बेद पुराण पकारन पोथिया नाम बिना सब कूड़ गाली होशिया नाम निदान अपार भगता मन वसै जन्म मरण मोह दुख साधु संग नसै रहाउ मोहे बाद अहंकार सर पर रुनिया सुख ना पायन मूल नाम विशुनिया मेरी मेरी तार बंधन बंधिया नरक सुर्ग अवतार माया धंधिया सोदत सोदत सोद तत बिचारिया नाम बिना सुख नाही सर पर हारिया आवह जाहि अनेक मर मर जन्मते बिन बूजे सब वाद जोनी भरमते जिनको भय दयाल तिन साधु संग भया अमृत हर का नाम तिनी जनी जप लया खोज है कोट असंख बहुत अनंत के जिस बजाए आप नेड़ा तिस हे विसरना ही दातार अपना नाम देहु गुण गावा दिन रात नानक चाओ एह राग सूही महला पहला कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कुचजी अम्मावन डोसड़े हों क्यों सहो रावण जाऊं जियो एक दू एक चढ़ंदिया कौन जाने मेरा नाऊं जियो जिन्नी सखी सहो रावया

गुण सार न जानी भरम पलानी जो गुण बाद गुआया वार घर दर दर्शन नहीं जाता फिर का सहज ना पाया सतगुर पूछना मार्ग चाली सूती रहन विहानी नानक बाल तनरा डेपा बिन फिर तन कुमलानी बाबा मैं वर दे मैं हर वर भावे तिसकी बलराम जियो रव रहिया जुग चार त्रिभवन बाणी जिसकी बलराम जियो त्रिभवन कंत रवै सुहागण अवगण मंती दूरे जैसी आसा तैसी मनसा पूर रहिया पर पूरे हर की नार सो सर्व सुहागण रांड ना मैले विस्ती नानक मैं वर साचा पावै जुग जुग प्रीतम तैसी बाबा लगन गणाए हम पी मन्या सोहरे बलराम जियो साहा हुक्म रजाए सो ना तले जो प्रभ करे बलराम जियो किरत पया करते कर पाया मेट ना सके कोई जानी ना उन्दरे ने केवल रव रहिया तेहो लोई माए नरासी रोए वछुनी बाली बाले हेते नानक साच शब्द सुख महली गुर चरणी प्रभ चेते बाबुल दितड़ी दूर ना आवे घर पेय बलराम जियो रहस्ती वेख हदूर फिर रावी घर सोहिय बलराम जियो साचे पिर लोड़ी प्रीतम जोड़ी मत पूरी परधानी संजोगी मेला थान सुहेला गुणवंती गुर ज्ञानी सत संतोख सदा सच पल्ले सच बोले पिर पाई नानक बिछड़ ना दुख पाए गुरम

प्रसाद हम घर साजने आए साचे मेल मलाए सहज मलाए हर मन पाए पंच मिले सुख पाया साई वस्त प्राप्त होई जिस सेती मन लाया अन दिन मेल भया मन मानिया कर मंदर सोहाई पंच शब्द तुन अनहद वाजी।

सोहाय कार्य शब्द सुवारी ज्ञान महारस नेत्री अंजन त्रिभवन रूप दिखाया सखी मिलो रस मंगल गावो हम घर साजन आया मन तन अमृत भिन्ना अंतर प्रेम रतन्ना अंतर रतन पदार्थ मेरे परम तत् विचारू जंत भेख तू सफले उदाता सिर सिर देवन हारू तू जान ज्ञानी अंतर जामी आपे कारण कीना सुनो सखी मन मोहन मोहिया तन मन अमृत पीना आत्म राम संसारा साचा खेल तुम्हारा सच खेल तुम्हारा अगम अपारा तुद बिन कौन बुझाए सिद्ध साधक सियाने केते तुझ बिन कवन कहाए काल बिकाल पये देवानी मन राखिया गुर ठाई नानक अवगण शब्द जलाए गुण संगम प्रभ पाए।

ता गुण रवे मन भावे सोई गुर की पौड़ी साच की साचा सुख होई सुख सहज आवे साच पावे साच की मत क्यों टले इशनान दान सुग्यान मज्जन आप अशल्यो क्यों छले परपंच मोह बेकार थाके कूड़ कपट ना दोई मेरा मन राता गुण रवे मन भावे सोई साहिब सो सलाही है जिन कारण किया मैल लागी मन मैल है किने अमृत पिया माथे अमृत पिया इहो मन दिया गुर पह मोल कराया आपनड़ा प्रभ सहज पछाता जा मन साचे लाया।

प्रीतम सिंह मन मानिया हर सेती राता साहिब रंग राता सच की बाता जिन बिंब का कोट उसारिया पंच भू नायको आप सरंदा जिन सच का पिंड सवारिया हम अवगुण यारे तू सुन प्यारे तुद भावे सच सोई आवन जाना ना थी है साची मत हुई अंजन तैसा अंजी है जैसा पिर भावे समझै सूझै जानी जे आप जनावे आप जानावे मार्ग पावे आपे मनुआ लेवे कर्म सकर्म कराए आपे कीमत कौन।

साजन रंग रंगी लड़े रंग लाल बनाया अंधा आगू जे थी है क्यों पादर जाने आप मुस्से मत होशी है क्यों राह पछाने क्यों राह जावे महल पावे अंध की मत अंधली बिन नाम हर के कसना सूजे अंध बूढ़ो तंदली बिन रात चानन चाओ उपजे शब्द गुर का मन वस्से कर जोड़ गुर पह कर बेनंती राह पादर गुर दस्से मन परदेसी जेती है सब देश पर आया किस पै खोलो गंथड़ी दुखी भर आया जगत सबाया।

झूणे ना गुर शब्द सुनाया मन परदेसी जेती है सब देश पराया गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना सेवक सेवा तां करे सच शब्द पतीना शब्दे पतीजे अंक पीजे सो महल महला अंतरे आप करता करे सोई प्रभ आप अंत निरंतरे गुर शब्द मेला तां सुहेला पा जंत अनहद बीना गुर महली घर अपने सो भर पुर लीना कीता क्या सालाही है।

हमारा जुग मह राम नाम निस्तारा साजन आए उठे घर माही हर गुण गावे है तृप्त अगाही हर गुण गाए सदा तृप्तासी फिर भूख न लागे आई दह दिस पूज होए हर जन की जो हर हर नाम त्याई नान

चाल सच्ची अत निर्मल नाम सच्चा मन पाया। नानक भगत सोह दर साचे जिनी सचो सच कमाया। हर भगता की जात पत है भगत हर कै नाम समाने राम। हर भगत करह बिचों आप गवावह जिन गुण अवगण पछाने राम। गुण अवगण पछाण हर नाम वखाण पै भगत मीठी लागी। अन दिन भगत करह दिन राती कर ही मह बैरागी। भगती राते सदा मन निर्मल हर जियो वेख है सदा नाले। नानक से भगत हर कै दर साचे अन दिन नाम संभाले। मन मुख भगत कर है बिन सतगुर बिन सतगुर भगत ना होई राम। हम माया रोग व्यापे मर जन्म है दुख होई राम। मर जन्म है दुख होई दूजे पाए परज बिगोई। विण गुर तत ना जानिया भगत विहूणा सब जग भरमिया। अंत गया पछतानिया कोट मदे किने पछाणिया। हर नामा सच सोई नानक नाम मिले वडियाई। दूजे पाए पत खोई भगता कै कर कारज साचा। हर गुण सदा बखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया काल कंटक मार समाने राम। काल कंटक मार समाने हर मन पाने नाम निधान सच पाया। सदा अखोट कदे नान खुटे हर दिया सहज सुपाया। हर जन ऊचे सद ही ऊचे गुर कै शब्द सुहाया। नानक आपे बख्श मलाए जुग जुग सोभा पाया। सूही महला तीजा शब्द सच्चे सच सोहिला। जिते सच्चे का हुए विचारो राम। हम मैं सब किलविख काटे साच रखिया उर तारे राम। सच रखिया उर तारे दुत्तर तारे फिर भवजल तरन ना होई। सच्चा सतगुर सच्ची वाणी जिन सच बखालिया सोई। साचे गुण गावे सच समावे सच वेख सब सोई। नानक साचा साहिब साची नाई सच निस्तारा हुई। साचे सतगुर साच बुझाया पात राखे सच सोई राम।

है सुबा साचे ही सुख होई। साच रते भगत एक रंगी दूजा रंग ना कोई। नानक जिस को मस्तक लिखिया तिस सच प्राप्त होई। सूही महला तीजा जुग चारे तन जे भवै बिन सतगुर सुहाग न होई। राम निश्चल राज सदा हर केरा तिस बिन अवर न कोई। राम तिस बिन अवर न कोई सदा सच सोई।

सतगुर सेव धन बालणीए, हर वर पावह सोई राम, सदा होवह सुहागणी, फिर मैला वेस न होई राम, फिर मैला वेस न होई, गुरमुख बूझै कोई, हो मैं मार पछाणिया, करनी कार कमावै, शब्द समावै, अंतर एको जानिया, गुरमुख प्रभ रावे दिन राती अपना, साची सुभा हुई, नानक कामन पिर रावे अपना, रव रहिया प्रभ सोई, गुर की कार करे धन बालड़िए, हर वर दे मलाए राम, हर कै रंग रती है कामन, मिल प्रीतम सुख पाए राम, मिल प्रीतम सुख पाए सच समाए, सच वरतै सब थाई, सच्चा शिंगार करे दिन राती, कामन सच समाई, हर सुख दाता।

गुरमति घट चानन होआ। प्रभ रब रहिया सब थाई राम, प्रभ रब रहिया सब थाई मन वसाई। पूर्व लिखिया पाया सेज सुखाली मेरे प्रभ पाणी, सच सिंगार बनाया कामन निर्मल हो मैं मल खोई। गुरमत सच समाई नानक आप मलाई, करते नाम नवें निध पाई।

शब्द रवहु, अनदिन शब्द बजाए राम, अनहद शब्द बजाए हर जियो घर आए, हर गुण गावो नारी, अनदिन भगत करह गुर आगे, सा धन कंत प्यारी, गुर का शब्द वसया घट अंतर, से जन शब्द सुहाई, नानक तिन घर सद ही सोहिला, हर कर किरपा घर आई, भगता मन आनंद भया, हर नाम रहे लिवलाए राम, गुरमुखे मन निर्मल हुआ, निर्मल हर गुण गाए राम, निर्मल गुण गाए नाम मन वसाए, हर की अमृत बाणी, जिन मन वसया से जन निस्तरे, घट घट शब्द सुमाणी, तेरे गुण गाव है सहज समाव है, शब्दे मेल मलाए, नानक सफल जन्म तिन केरा, जे सतगुर हर

सद जीवन मुक्त भये हर कै नाम लिव लाए राम हर नाम चित लाए गुर मेल मलाए मनुआ रत्ता हर नाले सुखदाता पाया मोह चकाया अन दिन नाम संभाले गुर शब्दे राता सहजे माता नाम मन वसाए नानक तिन घर सद ही सोहला जे सतगुर सेव समाए बिन सतगुर जग भरम भुलाया

मुख गवाया जा हर मन पाया सदा गावह रंग राते हर के भगत सदा जन निर्मल जुग जुग सद ही जाते साची भगत करह दर जापह घर दर सच्चा सोई नानक सच्चा सोहिला सच्ची सच बाणी शब्दे ही सुख होई सूही महला तीजा जे लोड़ है वर बालड़िए ता गुर चरणी चित लाए राम सदा होवह सुहागणी हर जियो मरे न जाए राम हर जियो मरे न जाए गुर कै सहज सुपाई सा धन कंत प्यारी सच संजम सदा है निर्मल गुर कै शब्द शिंगारी मेरा प्रभ साचा सद ही साचा जिने आपे आप उपाया नानक सदा पिर रावे अपना जिन गुर चरणी चित लाया फिर पायड़ा बालड़िए अनदिन सहजे माती राम गुरमती मन आनंद भया तित तन मैल न राती राम तित तन मैल न राती हर प्रभ राती मेरा प्रभ मेल मलाए अनदिन रावे हर प्रभ अपना विचो हो आप गवाए गुरमत पाया सहज मलाया अपने प्रीतम राती नानक नाम मिले वडियाई प्रभ रावे रंग राती।

हर मन तनो गुरमुख भीजै, राम नाम प्यारे राम, राम नाम प्यारे सब कुल उधारे, राम नाम मुख बाणी आवन जान रहे सुख पाया, कर अनहद सुरत सुमाणी, हर हर एको पाया हर प्रभ,

प्रभ अत ऊंचा क्यों कर मिलिया जाए राम। गुर मेली बहु कृपा तारी हर कै शब्द सुपाए राम। मिल शब्द सुपाए आप गवाए रंग स्यों रलिया माणी। सेज सुखाली जा प्रभ पाया हर हर नाम सुमाणी। नानक सुहागन सावड भागी

ताटकते सबना विच एको एको राम पतारो राम इकना प्रभ दूर वसै इकना मन आधारो राम इकना मन आधारो सिरजनहारो वडभागी गुर पाया घट घट हर प्रभ एको स्वामी गुरमुख अलख लखाया सहजे आनंद हुआ मन मानिया नानक ब्रह्म विचारो घट घटे सबना।

हर धूड देव हो मैं पूरे गुर की। हम पापी मुक्त कराया राम, पापी मुक्त कराए आप गुआए। निज कर पाया वासा बबेक बुद्धि सुख रैन विहानी। गुरमत नाम परगासा हर हर आनंद भया दिन राती।

परम गत पाई, पंच मिले सुहाया, गया क्रोध ममता तन नाठी, पाखंड भरम गवाया, हौ मैं पीर गई सुख पाया, अरोगत भये शरीरा, गुर प्रसादी ब्रह्म पछाता, नानक गुणी गहीरा, मनमुख विछड़ी दूर, महल ना पाए बल गई बलराम जियो, अंतर ममता कूर, कूड़ विहाजे कूड़ लई बलराम जियो, कूड़ कपट कमावे महा दुख पावे, विन सतगुर मग ना पाया, उज्जड़ पंथ भ्रमे गावारी, खिन खिन धक्के खाया, आपे दया करे प्रभदाता, सतगुर पुरख मलाई, जन्म जन्म के विछड़े जन मेले, नानक सहज सुभाए, आया लगन गणाए, हिरदय धन ओमाहिया बलराम जियो, पंडित पांदे आन, पत्ती बह वाचाइया बलराम जियो, पत्ती वाचाई मन बजी वधाई, जब साजन सुने घर आए, गुणी ज्ञानी बह मता पकाया, फेरे तत दिवाए, वर पाया पुरख अगम अगोचर, सद नवतन बाल सिखाई,

वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो धर्म दृढ़ हो हर नाम त्याव हो सिमरत नाम दृढ़ाया सतगुरु गुरु पूरा आराध हो सब किल विख पाप गुआया सहज आनंद हुआ बड़ भागी

स्वामी सर्व रहे आप पूरे अंतर बाहर हर प्रभ एको मिला हर जन मंगल गाए जन नानक दूजी लाम चलाई।

संत जना हर मेल हर पाया, बड़ भागिया बलराम जीओ। निर्मल हर पाया हर गुण गाया, मुख बोली हर बाणी। संत जना बड़ भागी पाया, हर कथिया अकथ कहानी। हृदय हर हर हर धुन उपजी, हर जपिया मस्तक भाग जीओ। जन नानक बोले तीजी लावे, हर उपजे मन बैराग जीओ। हर चौथड़ी लाम मन सहज भया, हर पाया बलराम जीओ। गुरमुख मिलिया सुपाए, हर मन तन मीठा लाया बलराम जीओ। हर मीठा लाया मेरे प्रभ पाया, अन दिन हर लिव लाई। मन चिंदिया

हर पाया प्रभ अविनाशी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद राग सूई संत महला चौथा कर दूजा गुरमुख हर गुण गाए हृदय रसन रसाए हर रसन रसाए मेरे प्रभ पाए मिलिया सहज सुपाए अन दिन भोग भोगे सुख सोवे शब्द रह लिवलाए वड्डे भाग गुरपूरा पाईए अन दिन नाम त्याए सहजे सहज मिलिया जग जीवन नानक सुन समाए संगत संत मलाए हर सर निर्मल नाए निर्मल जल नाए मैल गवाए भये पवित शरीरा दुर्मत मैल गई भ्रम भागा हम मैं बिनठी पीरा नदर प्रभु सत संगत पाई निज कर होआ वासा हर मंगल रस रसन रसाई नानक नाम परगासा अंतर रतन बीचारी गुरमुख नाम प्यारी हर नाम प्यारी शब्द निसतारी अज्ञान अंधेर गवाया ज्ञान प्रचंड बलिया घट चानन कर मंदर सोहाया तन मन अर्प शिंगार बनाई हर प्रभ साचे पाया जो प्रभ कहे सोई पर की जय नानक अंक समाया हर प्रभ काज रचाया गुरमुख व्याहण आया गुरमुख हर पाया।

हो संत जन हो गुण गाव है गोविंद केरे राम। गुरमुख मिल रही है कर वाज है शब्द कनेरे राम। शब्द कनेरे हर प्रभ तेरे तू करता सब थाई। ऐनस जपी सदा सालाही साच शब्द लिवलाई। अन दिन सहज रह रंग राता राम नाम रिद पूजा। नानक गुरमुख एक पछाण अवर ना जाने दूजा। सब मह रव रहया सो प्रभ अंतर जामी राम। गुर शब्द रवै रव रहया सो प्रभ मेरा स्वामी राम। प्रभ मेरा स्वामी अंतर जामी घट घट रवया सोई। गुरमत सच पाई सहज समाई है तिस बिन अवर ना कोई। सहजे गुण गावा जे प्रभ भावा आपे लए मलाए। नानक सो प्रभ शब्दे जापै अहनस नाम त्याए। एहो जगो दुत्तर मनमुख पार न पाई राम। अंतरे हों मैं ममता काम क्रोध चतुराई राम। अंतर चतुराई थाए ना पाई बिरथा जन्म गवाया। जम मग दुख पावे चोटा खावे अंत गया पछताया। बिन नावे को बेली नाही पुत कटंब सुत पाई।

प्रवत्याया जिन प्रवत्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो नमाणा सब कुरबाणा सगला आप मिटाई है ओह धन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पह आप विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवां हर चरण कमल की टेक सतगुरु दित्ती तुस कै बलराम जीओ हर अमृत भरे भंडार सब किश है घर तिस कै बलराम जीओ बाबुल मेरा वड समरथा करन कारण प्रभहारा जिस सिमरत दुख कोई न लागे भौजल पार उतारा आदि जगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम।

निर्जनहारा जिसते खाली कोई नाहीं, ऐसा प्रभु हमारा। संत जना मिल मंगल गाया, दिन रहन आस तुम्हारी। सफल दर्स भेटिया गुरपूरा, नानक सद बलिहारी। संभलिया सच थान मान महत, सच पाया बलराम जियो। सतगुर मिलिया दयाल, गुण अविनाशी गाया बलराम जियो। गुण गोविंद गाओ नित नित, प्राण प्रीतम स्वामिया। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए, मिले अंतर जामिया। सत संतोख वजह वाजे, अनहदा चुनकारी। सुन भै बनासी।

सदा हर गुण गावा, गुर मिल सागर तरिया, हर चरण जपत निस तरिया, हर चरण त्याय सब फल पाए, मिटे आवन जाना, पाए भगत सुपाए हर जप, अपने प्रभ पावा, जप एक अलख अपार पूर्ण, तिस बिना नहीं कोई, बिनवंत नानक गुर परम खोया, जत देखा तत सोई, पतत पावन हर नामा, पूर्ण संत जना के कामा, गुर संत पाया प्रभ त्याया, सगल इच्छा पुनिया, हौ ताप बिन से सदा सरसे, प्रभ मिले चिरी वछुनिया, मन शांत आई वजी वधाई, मनहु कदे ना विसरै, बिनवंत नानक सतगुर दरड़ाया, सदा भज जगदीसरै।

तुम गौहर अत गहर गंभीरा, तुम पेर हम बहुरिया राम। तुम वड्डे वड्डे वड ऊचे, हौ इतनी कलहरिया राम। हौ किस नाही एको तू है, आपे आप सुजाना। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, सर्ब रंग रस माना। चरण सरनी दासह दासी, मन मौलै तन हरिया। नानक ठा

ली वन्या तू पर्वत मेरा ओला राम। हौ बल जाई लाख लाख लाख बरिया जिन ब्रह्म परदा खोला राम। मिटे अंधारे तजे बिकारी ठाकुर सिउ मन माना। प्रभ जी पाणी पई निकाणी सफल जन्म परवाना। पई अमोली पारा तोली मुकत जुगत दर खुला। कहो नानक हौ निरपो होई सो प्रभ मेरा ओला। सूही महला पंजवां साजन पुरख सतगुर मेरा पूरा। तिस बिन अवर न जाना राम। मात पिता भाई सुत बंदप जी प्राण मन पाणा राम। जियो पिंड सब तिसका दिया सर्ब गुणा पर पूरे। अंतर जामी सो प्रभ मेरा सर्ब रहे पर पूरे। ताकी सरन सर्ब सुख पाए हुए सर्ब कल्याण। सदा सदा प्रभ कौ बलिहारे नानक सद कुर्बाना। ऐसा गुर वड भागी पाई जित मिले प्रभ जापै राम। जन्म जन्म के किल विख उतर है हर संत धूड़ी नित नापै राम। हर धूड़ी नाइय प्रभु ते आई है बहुड़ जोन ना आई है। गुर चरनी लागे ब्रह्म पौ भागे मन चिंदिया फल पाई है। हर गुण नित गाए नाम ते आए फिर सोग नाही संतापै। नानक सो प्रभ जी का दाता पूरा जिस पर तापै। हर हरे हर गुण निदे हर संतन कै वासे आए राम। संत चरण गुर सेवा लागे तिन्नी परम पद पाए राम। परम पद पाया आप मटाया हर पूरन कृपा तारी। सफल जन्म हुआ पौ भागा।

सगल मनोरथ पाई शांत सहज आनंद कनेरे गुर चरणी मन लाए पूर रहया घट घट अविनाशी थान थनंतर साई कहो नानक कार्य सगले पूरे गुर चरणी।

लाख जेहवा देहो मेरे प्यारे, मुख हर अरादे मेरा राम, हर अरादे जम पंथ साधे,

तेरा कोट करण दीजै प्रभ प्रीतम हर गुण सुनिय है अबलासी राम सुन सुन एहो मन निर्मल होवै कटियै काल की फासी राम कटियै जम फासी सिमर अबनासी सगल मंगल सुगयाना हर हर जप जपिए दिन राती लागै सहज ध्याना कलमल दुख जारे प्रभु चितारे मन की दुर्मत नासी कहो नानक प्रभ कृपा की जय हर गुण सुनिय है अवनासी करोड़ हस्त तेरे।

राम भव जल तरिया हर हर सिमरिया सगल मनोरथ पूरे महाबिकार गए सुख उपजे बाजे अनहद तूरे मन बांछत फल पाए सगले कुदरत कीम अपारग कहो नानक प्रभ कृपा की जय मन सदा चले तेरे मार्ग एहो वर एहा वडियाई एहो तन हुए वडभागा राम एहो रंग एहो रस भोगा हर चरणी मन लागा राम मन लागा चरणे प्रभ की सरणी करन कारण गोपाला सब किछ तेरा तू प्रभ मेरा मेरे ठाकुर दीन दयाला मोहे निर्गुण प्रीतम सुख सागर संत संग मन जागा कहो नानक प्रभ कृपा कीनी चरण कमल मन लागा सूही महला पंजवा हर जपे हर मंदर साजिया संत भगत गुण गावे राम सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना सगले पाप तजावे राम हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी सहज कथा प्रभ की अति मीठी कथी अकथ कहानी।

चित वाजे पार ब्रह्म मन बूठा राम गुरमुखे सच करनी सारी बिनसे भ्रम भय झूठा राम अनहद बाणी गुरमुख बखाणी जस सुन सुन मन तन हरिया सर्व सुखा तिस ही बन आए जो प्रभ अपना करिया कर्म है नवनिध भरे भंडारा।

भी काल सुहावा विति अमृत जल छाया राम अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया सगल मनोरथ पूरे जय जयकार पया जागे अंतर लाथे सगल विसूरे पूर्ण पुरखा चुत अबनासी जस वेद पराणी गाया अपना बिरद रखिया परमेश्वर नानक नाम त्याया नवनिध सिद्ध रिद दीने करते तोट न आवे काई राम खात खर्चत बिलशत सुख पाया करते की दात सवाई राम दात सवाई न खुट न जाई अंतर जामी पाया कोट बिगन सगले उठ नाठे दुख ना नेड़े आया शांत सहज आनंद कनेरे बिनसी भूख सबाई नानक गुण गावह स्वामी के अचरज जिस वड्याई राम जिसका कार्य तिन्ही किया मानस क्या वेचारा राम भगत सोहन हर के गुण गावह सदा करह जयकारा राम गुण गाए गोविंद आनंद उपजे साध संगत संग बनी जिन उद्म किया ताल केरा तिसकी उपमा क्या गनी हथ सत तीरथ पुन किरिया महा निर्मल चारा पतत पावन बिरद स्वामी नानक शब्द अधारा।

गुण गोपाल उचर रसना सदा गाइय अनदिनो जिस प्रीत लागी नाम सेती मन तन अमृत पीजै बिनवंत नानक इच्छ पुन्नी पेख दर्शन जीजै राग सूही महला पंजवां संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिट

पूर्ण भगवान अवगण को ना चितारी, पतत पावन हर बिरद सदाई, एक तिल नहीं भन्ने काली, घट घट वासी सर्ब नवासी, नेरा ही ते नेरा, नानक दास।

खिन मैं झूठ सब बिन सजाए, ज्यो टिकै ना बिरख की शाम। गुरमुख लालो लाल है, ज्यो रंग मजीठ सचड़ाओ। उल्टी सकत सिवै घर आई, मन वस्या हर अमृत नाम। नानक बलिहारी गुरे अपने, जित में

सुहागणी जे चलन सतगुर पाए पौड़ी आपे आप उपायन आप कीमत पाई तिसदा अंत ना जापई गुर शब्द बुझाई।

0: नानक सो सलाही है जिन कारण किया पौड़ी सच ध्यान से सच्चे
1: गुर शब्द विचारी
0: हम मैं बाहर मन निर्मला हर नाम पुरतारी कोठे मंडप माड़िया लग पए गावारी जिन की ये तिसह ना जाननी मन मुख गोबारी जिस बजाए सो बुझ सी सच्चिया
1: क्या जंत विचारी।
0: श्लोक महला तीजा कामन तो शिंगार कर जा पहला कंत मनाए मत से जय

निशान नानक नाम लाहा परवान घर आए बजी वधाई सच नाम की मिली वड्याई महला पहला राती होवन कालिया सोपे दा सेवन देहु बग्गा तपै घणा कालिया काले वन अंधे अकली बाहरी

हर सच्चै आपी एक दूजे भाई खुआयन होमै विच व्यापे यो मानस जन्म दलंब सा मनमुख संतापे जिस आप बुझाए सो बुझसी जिस सतगुर थापे सब जग खेल।

आस अज्ञान मटंत वेद पाठ संसार की कार पढ़ पढ़ पंडित करह विचार बिन बूझे सब होए खुआर नानक गुरमुख उतर

करे वो जब लग घट मह सासा जे घट जाए ता भाव ना जासी हर के चरण निवासा जिस को शब्द बसावे अंतर चूकै तिसह प्यासा हुक्मै बूझै चौपड़ खेलै मन जिन ताले पासा जो जन जान भजह अवगत कहो तिनका कछु ना नासा कहो कबीर ते जन कबहु ना हारह ताल जो जानह पासा सूही ललित कबीर जियो एक कोट पंच सिकदा।

सह की सार सुहागण जान, ताज अभमान सुख रलिया मान, तन मन दे न अंतर राख, अवरा देख न सुने अपाख, सो कत जाने पीर पराई, जा कै अंतर दर्द ना पाई, रहाउ दुखी दुहागण दोए पाख हीनी, जिन नाहा निरंतर।

आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया। कह रविदास सरन प्रभ तेरी, ज्यों जान हो त्यों कर गत मेरी। सूही जो दिन आवह सो दिन जाही, करना कूच रहन फिर नाही। संग चलत है हम भी चलना, दूर गवन सिर ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तै जीवन जग सच कर जाना। रहाओ जिन जियो दिया, सो रिजक अंबरावे। सब घट भीतर हाट चलावे।

ललत बेड़ा बंध ना सक्यो बंधन की वेला पर सरवर जब उछले तब तरन दुहेला हाथ ना लाए कुसुम्बड़े जल जासी ढोला।

मैं मूर्ख कहन ना जाई, तेरे गुण गावा दे बुझाई। जैसे सच मैं रहूं रजाई रहाउ, जो किश होआ सब किश तुझते, तेरी सब असनाई। तेरा अंत ना जाना मेरे साहिब, मैं अंधले क्या चतुराई। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना।

जन्म ना आवा मन विद्या दयाल सेती मेरी माई कौन जाने पीर पराई हम नाही चिंत पराई रहाऊ अगम अगोचर अलख अपारा चिंता करहु हमारी जल थल मही अल भरपुर लीना घट घट जोत तुम्हारी सिख मत सब बुद्ध तुम्हारी मंदर छावा तेरे तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहिबा गुण गावा नित तेरे जी जंत सब सरन तुम्हारी सर्ब चिंत तुद पासी जो तुद भावे सोई चंगा एक नानक की अरदासे बुलावल महला पहला आपे शब्द आपे निशान आपे सुरता आपे जान।

अलख अपेओ रहाओ, माया मोहतर कटी नार, पूंडी कामन कामन यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोई, बाप दिसै वे जात ना हुए, एक एक नाही पौ कोई, करता करे करावे सोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, थाक रहे मन साचे तारिया, अवर न सूजे गुर को वारिया, नानक नाम रते निसतारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सहज ध्यानी, हर कै रंग रत्ता मन मानी, मन मुख परम भुले बौरानी, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछानी, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सके, छिन सत गुर बूझ बुझाई रहा, मेरा प्रभ बिसरे हो मरो दुखाली, सास ग्रास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ अगम अगोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हों मैं मेट चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा धारी दासन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़े अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कतंब सहत सियों, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, पहला जन्म गवाया, दूजा भाऊ ना देई लिव लागण, जिन हर के चरण वसारी,

दया पत दाता, क्या एह जंत विचारी, मुक्त बंद सब तुझ ते होए, ऐसा आख बखाणी, गुरमुख हो ऐ सो मुक्त कही है, मनमुख बंद विचारी, सो जन मुकत जिस एक लिव लागी, सदा रह हर नाले, तिनकी गहन गत कही ना जाई, सच्चे आप सुवारी, परम पलाने से मनमुख कही है, ना उरवार ना पारी, जिसनो नदर करे सोई जन पाई, गुर का शब्द संभाली, हर जन माया माहे निस्तारी, नानक भाग हुए जिस मस्तक, काल है मार बदारी, बलावल महला तीजा, अतुल क्यों तोलिया जाए, दूजा हुए ता सोजी पाए, तिस ते दूजा नाही कोए, तिस दी कीमत किको होए, गुर प्रसाद वस्से मन आए, ताको जाने दुबदा जाए, रहाओ आप सराप कसवट्टी लाए, आपे परखे आप चलाए, आपे तोले पूरा होए, आपे जाने एको सोए, माया का रूप सब तिसते होए, जिसनो मेले सो निर्मल होए, जिसनो लाए लगे तिसे आए, सब सच दिखाले ता सच समाए, आपे लिव तात है आपे, आप बुझाए आपे जापे, आपे सतगुर शब्द है आपे, नानक आख सुनाए आपे, बलावल महला तीजा, साहिब ते सेवक सेव साहिब ते, क्या को कह बहाना, ऐसा एक तेरा खेल बनिया है, सब में है एक समाना, सतगुर परचै हर नाम समाना, जिस कर्म हो ऐसो सतगुर पाई, अन दिन लागे सहज त्या ना रहाओ, क्या कोई तेरी सेवा करे, क्या को करे अब मानना, जब अपनी जोत

कर कृपा मोहि मार्ग पावहु, साध संगत कै अंचल लावहु। क्यों तरिये बिख्या संसार, सतगुरु बोहित पावे पार। रहाउ पवन किलारी माया दे, हर के भगत सदा थिर से। हरख सोग ते रह निरारा, सिर ऊपर आप गुरु रखवारा। पाया वेड़ माया सर्ब पोयंगा, हम मैं पचे दीपक देख पतंगा। सगल सिंगार करे नहीं पावे, जा हुए कृपालता गुरु मलावे। हों फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया, निर्मोलक हीरा मिले ना उपाया। हर का मंदिर तिस महलाल, गुर खोलिया पड़दा देख भई निहाल। जिन चाख्या तिस आया साध, ज्यों गूंगा मन मह बिस्माद। आनंद रूप सब नदरी आया, जन नानक हर गुण आख समाया। बलावल महला पंजवा, सर्ब कल्याण किए गुरदेव। सेवक अपनी लायो सेव, बिघन ना लागे जप अलख अपेव। तरत पनीत भई गुण गाय, दुर्त गया हर नाम त्याय। रहाव सबनी थाई रवे आप, आद जगाद जाका वड प्रताप। गुर प्रसाद ना हुए संताप, गुर के चरण लगे मन मीठे। निर्विघ्न हुए सब थाई बूठे, सब सुख पाए सतगुर तूठे। पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाली, जितै कितै दिसह नाली। नानक दास खसम प्रतपाली, बलावल महला पंजवा। सुख नदान प्रीतम प्रभ मेरे, अगणत गुण

हर सिमरत नसी जां कै संग सदा प्रभ बसै। प्रभ का नाम मन तन आधार, विसरत नाम होवत तन शार। प्रभ चित आई पूर्ण सब काज, हर विसरत सब का मोहताज। चरण कमल संग लागी प्रीत, बिसर गई सब दुर्मत रीत। मन तन अंतर हर हर मंत, नानक भगतन कै घर सदा आनंद।

प्यारी जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरुदेव स्वामी सर्व कला पर पूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए तिना की जिन्हें आप

जाए पूरे कर्म कमावा। नानक की बेनती स्वामी तेरे जन देखन पावा। वड भागी से कांडी है प्यारी संत संगत जिन्ना वासु। अमृत नाम अराधिय निर्मल मन हुए परगासु। जन्म मरण दुख काटिय प्यारी चूके जम की कानी। तिना प्राप्त दर्शन नानक जो प्रभ अपने पाणी। ऊच अपार बेअंत स्वामी कौन जाने गुण तेरे। गावते उधर है सुनते उधर है बिनसे है पाप कनेरे। पशु परेत मुग्ध कौ तारे पाहन पार उतारे। नानक दास तेरी सरनाई सदा सदा बलिहारे। बलावल महला पंजवां विखे बन फीका त्यागरी सखिए। नाम महारस पियो बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली। सुखी ना होवत जियो मान महत ना सकते ही काई। साधा दासी थियो नानक से दर सोभावंते जो प्रभ अपने कियो। हर चंदौरी चित भ्रम सखिए मृग तृष्णा द्रुम छाया। चंचल संग ना चालती सखिए अंत तज जावत माया। रस भोगण अत रूप रस माते इन संग सूख ना पाया। धन धन हर साध जन सखिए नानक जिन्नी नाम ते आया। जाए बसो वड भागनी सखिए संता संग समाइए। तह दुख ना भूख ना रोग ब्यापै चरण कमल लिव लाइय। तह जन्म ना मरण ना आवन जाना निश्चल सरनी पाइय। प्रेम बशोहो ना मोह ब्यापै नानक हर एक त्याई। दृष्ट धार मन बेदया प्यारी रतड़े सहज सुपाए। सेज सुहावी संग मिल प्रीतम आनंद मंगल गुण गाए। सखी सहेली राम रंग राती मन तन इच्छ पजाए। नानक अचरज अचरज स्यों मिलिया

आदि एक रूप सगलोपासारा आपे बंज आप व्यवहारा ऐसो ज्ञान बिरलोई पाई जत जत जाइए।

ऐसा गुरु वड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारी, बस रहे हृदय गुर चरण प्यारी, रहाउ काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुक्त गुर कीना, दुख सुख करत जन्म फुन मुआ, चरण कमल गुर आश्रम दिया, अग्न सागर बूढ़त संसारा, नानक बाहा पकर सतगुर निस्तारा, बलावल महला पंजवा, तन मन तन अर्पौ सब अपना, कमल सो मत जित हर हर जपना, कर आसा आयो प्रभ मांगन, तुम पेखत सोबा मेरा आंगन, रहाउ अनक जुगत कर बहुत बिचारों, साध संग इस मन है उदारों, मत बुद्ध सुत नाही चतराई, ता मिलिए जा लय मलाई, नैन संतोखे प्रभ दर्शन पाया, कहो नानक सफल सो आया, बलावल महला पंजवा, मात पिता सुत साथ न माया, साध संग सब दुख मिटाया, रब रहिया प्रभ सब मह आपी, हर जप रसना दुख ना व्यापी, रहाउ तिखा भूख बहु तपत व्यापिया, शीतल पये हर हर जस जापिया, कोट जतन संतोख ना पाया, मन त्रिपताना

मिलै निस्तरीय। बिलावल महला पंजवां, गुर का शब्द हृदय महचीना, सगल मनोरथ पूर्ण आसीना, संत जना का मुख उज्जल कीना, कर कृपा अपना।

तुम ही जानो अपनी पूजा, आप हो कछु ना होवत पाई, जिस प्रभ देवै सो नाम पाई। कहो नानक जो जन प्रभ पाया, गुण निधान प्रभ तिन ही पाया। बिलावल महला पंजवां, मात गर्भ मह हा।

गुर अमर कराया, सो जाने जिन चाखिया हर नाम अमोला, कीमत कही ना जाइए क्या कह मुख बोला। सफल दर्श तेरा पार ब्रह्म, गुण निध तेरी बाणी, पावो तूर तेरे दास की नानक कुरबाणी। बलावल महला पंजवा, राख हो अपनी सरन प्रभ, मोहे कृपा तारी, सेवा कछु ना जानू नीच मूरखारी। मान करो तुदे उपरे मेरे प्रीतम प्यारे, हम अपराधी सद भूलते तुम बख्शन हारी। रहाओ हम अवगन करहें असंख नीत, तुम निर्गुण दातारे, दासी संगत प्रभु त्याग हे कर्म हमारी। तुम देव हो सब किश दया तार, हम अकिर्त कनारे, लाग परे तेरे दान स्यों नह चित खसमारे। तुझ ते बाहर किश नहीं भव काटन हारे, कहो नानक सरन दयाल गुर लेहो मुगद उधारे। बलावल महला पंजवा, दोष न काहू दीजिए प्रभ अपना त्याइए, जित सेवे सुख होए कना मन सोई गाइए, कहिए काए प्यारे तुझ बिना, तुम दयाल स्वामी सब अवगुण हमा। रहाओ ज्यों तुम राख हो त्यों रहा, अवर नहीं चारा, नी धरिया धर तेरिया एक नाम आधारा। जो तुम करहो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समगरी तेरिया सब तेरी जुगता। चरण पखारों कर सेवा जे ठाकुर पावे, हो कृपाल दयाल प्रभ नानक गुण गावे। बलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे पशुआ नहीं बुझे, बाद साध अहंकार में है मरना नहीं सूझे, सतगुर से वो अपना काहे फिर हो अपागे, देख कसुम्बा रंगुला काहे भूल लागे। रहाओ कर कर पाप दर्ब किया वर्तन कह ताई, माटी स्यो माटी रली नांगा उठ जाई। जा कह किए श्रम करे ते बैर बरोधी, अंतकाल भज जाहेंगे काहे जलो क्रोधी। दास रेन सोई हुआ जिस मस्तक कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे सतगुर की सरना। बलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्ब कीता, अंदले त्रे पवन सूजिया गुर पेट पनीता। महमा साधु संग की सुनो मेरे मीता, मैल खोई कोट अग हरे निर्मल पे चीता। रहाओ ऐसी भगत गोविंद की कीत हस्ती जीता, जो जो कीनो अपनो तिस अपै दान दीता। सिंह बलाई होए गयो त्रिण मेर दखीता, श्रम करते दम आड़ को ते गनी तनीता।

तुम मिलहु दयाल, निस्बासर मन आनंद होत, चितवत कृपाल रहाव। जगत उदारन साध प्रभ, तिन लागो पाल, मोको दीजै दान प्रभु, संतन पागराल। उकत सियानप कछ नहीं, नाही कछ काल, परम पै राखो मोहते, काट हो जम जाल। बिनो करो करना पते, पिता प्रतपाल, गुण गावो तेरे साध संग, नानक सुख साल। बलावल महला पंजवा, कीता लोड़ है सो कर है, तुझ बिन कछ नाही, प्रताप तुम्हारा देख कै, जमदूत छड़ जाए। तुमरी कृपा ते शूती है, बिनसै अहमेव, सर्व कला समर्थ प्रभ, पूरे गुरुदेव रहाओ। खोजत खोजत खोजया नामै बिनकूर, जीवन सुख सब साध संग प्रभ मनसापूर। जित जित लाभ हो तित तित लग है, सियानप सब जाली, जात कत तुम भरपूर हो मेरे दीन दयाली। सब किश तुम ते मांगना वडभागी पाए, नानक की अरदास प्रभ जीवां गुण गाए। बलावल महला पंजवा, साध संगत कै बास बै, कल मल सब नसना, प्रभ सेती रंग रातिया, तांते गर्भ ना ग्रसना। नाम कहत गोबिंद का, सूची पई रसना, मन तन निर्मल हुई है, गुर का जप जपना रहाव। हर रस चाखत त्रापिया, मन रस ले हसना, बुद्ध प्रगास प्रगट पई, उल्ट कमल बिगसना। शीतल शांत संतोख होए, सब बूझी तृष्णा, दह दिस धावत मिट गए, निर्मल थान बसना। राखन हारै राखिया, पय भ्रम पसना, नाम निधान नानक सुखी, एक साध दर्शना। बलावल महला पंजवा, पानी पखा पीस दास कै, तब होहे निहाल, राज मिलक सिकदारिया, अग्नि मह जाल। संत जना का शोहरा, इस चरणी लाग, माया तारी शत्रपत, तिन छोड़ो त्याग रहाव। संतन का दाना रूखा, सो सर्ब निदान, ग्रह साकत शक्ति ही प्रकार, ते बिखु समान। भगत जना का लूघरा, ओड नगन ना होई, साकत सिर पाओ रेशमी, पहरत पत खोई। साकत स्यो मुख जोरे है, अद विचों टूटे, हर जन की सेवा जो करे, इत उतह छूटे। सब किश तुम ही ते होवा, आप बनत बनाई, दर्शन भेट तो साधका, नानक गुण गाई। बलावल महला पंजवा, सर्वनी सुनो हर हर हरे, ठाकुर जस गावो, संत चरण कर सीस तर, हर नाम त्यावो। कर कृपा दयाल प्रभ, एह निध सिद्ध पावो, संत जना की रेणुका, लै माथे लावो रहाओ। नीच ते नीच अत नीच होए कर, बिनो बलावो, पाम मनोवा आप त्याग, संत संग समावो। सास सास नह विसरै, अनकत है ना तावो, सफल दर्शन गुर पेटीऐ, मान मोह मटावो। सत संतोख दया धर्म, सिंगार बनावो, सफल सुहागन नानका, अपने प्रभ पाव। बलावल महला पंजवा, अटल बचन साधु जना, सब मह प्रगटाया, जिस जन होवा साध संग, तिस भेटै हर राया। एह प्रतीत गोविंद की, जप हर सुख पाया, अनक बातां सब कर रहे, गुर घर लै आया रहाव। सरन परे की राखता, नाही सहसाया, कर्म भूम हर नाम बोए, अवसर दुलभाया। अंतर जामी आप प्रभ, सब करे कराया, पतत पनीत घने करे, ठाकुर बिरदाया। मत भूलो मनुख जन, माया परमाया, नानक तिस पत राख सी, जो प्रभ पहराया।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਮਾਟੀ ਤੇ ਜਿਨ ਸਾਜਿਆ ਕਰ ਦੁਰਲਭ ਦੇ, ਅਨਕ ਸਿਧਰ ਮਨ ਮੈਂ ਢਕੇ ਨਿਰਮਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਕਿਉਂ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਭ ਮਨੈ ਤੇ ਜਿਸ ਕੇ ਗੁਣ ਇਹ, ਪ੍ਰਭ ਤਜ ਰਚੇ ਜੇ ਆਨ ਸਿਉ ਸੋ ਰਲੀਐ ਖੇ ਰਹਾਉ। ਸਿਮਰਹੋ ਸਿਮਰਹੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਤ ਬਿਲਮ ਕਰੇ, ਛੋੜ ਪਰਪੰਚ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉ ਰਚੋ ਤਜ ਕੂੜੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਅਨਕ ਏਕ ਬਹੁ ਰੰਗ ਕੀਏ ਹੈ ਹੋਸੀਏ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਤਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਤੇ ਮਤ ਲੇ। ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਵੱਡਾ ਸਭ ਸੰਗ ਬਰਨੇ, ਦਾਸ ਦਾਸ ਕੋ ਦਾਸਰਾ ਨਾਨਕ ਕਰ ਲੇ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਟੇਕ ਗੋਵਿੰਦ ਕੀ ਤਿਆਗੀ ਅਨਿਆਸ, ਸਭ ਉਪਰ ਸਮਰੱਥ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਗੁਣਤਾਸ। ਜਨ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨੀ ਪਾਹੇ,

सास सास सुमारे करनहार जो कर रहे आ साई वडे आई गुर पूरे अपदेसिया सुख खसमर जाई चिंत अंदेसा गणत ताज जन हुक्म पछाता नह बिन सह नह छोड़ जाए नानक रंग राता बिलावल महला पंजवा महा तप्त ते भई शांत परसत पाप नाठी अंधकूप मैं गलत थे काढ़े दे हाथे ओए हमारे साजना हम उनकी रेन जिन भेटत होवत सुखी जी दान देन रहाओ परा पूर्व ला लिखिया मिलिया अब आए बस्त संग हर साधकै

मन नाम नानक की तू टेक प्रभ तेरा आधार करन कारण समरथ प्रभ हरे अगम अपार बलावल महला पंजवा सोई मलीन दीन हीन जिस प्रभ बिसराना करना हार ना बूझे आप गने बिगाना दुख तदे जद विसरै सुख प्रभ चेते आए संतन कै आनंद एहो नित हर गुण गाए रहाओ ऊचे ते नीचा करै नीच खिन मह थापै कीमत कही ना जाइए ठाकुर प्रतापै पेखत लीला रंग रूप चलने दिन आया सुपने का सुपना भया संग चलिया कमाया।

ना जापै, हर हर हर हर जापिए अंतर लिव लाई, के लिवक उतर है सुध हुए साधु सरनाई, सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई, महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बलावल महला पंजवा, पै ते उपजै भगत प्रभ अंतर होए शांत, नाम जपत गोविंद का बिनसै भ्रम भ्रांत, गुरपूरा जिस पेटिया ताके सुख परवेश, मन की मत त्यागी है सुनिए उपदेश। रहाउ सिमरत सिमरत सिमरिए सो पुरख दातार, मन ते कबहु ना विसरै सो पुरख अपार, चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव, जाको कृपा करो प्रभ ताको लावो सेव, निद निदान अमृत पिया मन तन आनंद, नानक कबो ना विसरै प्रभ परमानंद। बलावल महला पंजवा, कृष्ण बुझी ममता गई नाठे भय परमा, थित पाई आनंद भया गुर कीने धर्मा, गुरपूरा आराध्या बिनसी मेरी पीर, तन मन सब शीतल भया पाया सुख बीर। रहाउ सोमत हर जप जागया

तरे कुल कटंब उधारी सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारी नीच अनाथ अजान में निर्गुण गुणहीन नानक को कृपा पई दास अपना कीन बलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाऊ तान दे बाण परवार तन प्रभ तेरा नाऊ कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिये निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिये रहाव संता एक त्यामना दूसर को नाहे एक से आगे बेनती रव्या सब थाई कथा परातन यो सुनी भगतन की बानी सगल दुष्ट खंड खंड किए जान लिए मानी सत बचन नानक कह प्रगट सब माही प्रभ के सेवक सरन प्रभ तिनको पहो नाही बलावल महला पंजवा बंधन काटे सो प्रभु जा कह कल हाथ अवर कर्म नहीं छूती है राखो हर नाथ तौ शरणागत माधवे पूर्ण दयाल छूट जाए संसार ते राखे गोपाल रहाओ आसा परम बकार मोह इन मह लोभाना झूठ समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे ज्यों तू राख है त्यों रहा प्रभ अगम अपारी कर्म कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ नानक करिय साध संग हर हर गुण गाओ बलावल महला पंजवा कमन कमन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत महामोहनी मोहया नरक की रीत मन खुटहर तेरा नहीं बसास तू महा उदमादा खर का पैखर तौ छुटे जो ऊपर लादा रहाउ जप तप संयम तुम खंडे जम के दुख डांड सिमर है नाही जोन दुख निर्लजे पांड हर संग सहाई महामीत तिस स्यों तेरा भेद बीदा पंच बटवारे उपजियो महाखेद नानक तिन संतन शरणागति जिन मन वस कीना तन तन सरबस अपना प्रभ जन को दीना बलावल महला पंजवा उदम करत आनंद भया सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूर्ण विचार चरण कमल गुर के जपत हर जप हो जीवा पार ब्रह्म अराधते मुख अमृत पीवा रहाउ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच धन सो थान बसंत धन जह जपिय नाम कथा कीर्तन हर अत घना।

बार धर्म अर्थ अर काम मोख देते नहीं बार भगत अराध है एक रंग गोविंद गोपाल राम नाम धन संचया जा का नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूरन प्रभु

प्रभ राखता भगतन की आन। जो जो चितव है साध जन सो लेता मान रहाओ। शरण परे चरनारबिंद जन प्रभ के प्राण। सहज सुपाए नानक मिले ज्योति ज्योत समान। बलावल महला पंजवा चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ आप। प्रभ शरणागत जन परे ता का सद प्रताप। राखनहार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव। राम राज राम दासपुर कीने गुरदेव रहाओ। सदा सदा हर त्याई है किस बिघन ना लागे। नानक नाम सलाही है भय दुश्मन भागे। बलावल महला पंजवा मन कन प्रभ आराधी है मिल साध समागे। उचरत गुण गोपाल जस दूर ते जम भागे। राम नाम जो जन जपे अन दिन सद जागे। तंत मंत नह जो हुई तित चाख ना लागे रहाउ। काम क्रोध मद मान मोह बिनसे अनरागे। आनंद मगन रस राम रंग नानक सरनागे। बलावल महला पंजवा जी जुगत वस प्रभु कह जो कह सो करना। पये प्रसन्न गोपाल राय पहो किश नहीं करना। दुख ना लागे कदे तुद पार ब्रह्म चितारे। जम कंकर नेड़ ना आवे गुर सिख प्यारे रहाओ। करन कारण समरथ है किस बिन नहीं होर। नानक प्रभ शरणागति साचा मन जोर। बलावल महला पंजवा सिमर सिमर प्रभ अपना नाठा दुख ठाओ। विश्राम पाए मिल साध संग ताते बहुड़ ना ताओ। बलिहारी गुरे अपने चरणन बल जाओ। आनंद सुख मंगल बने देखत गुण गाओ रहाओ। कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बनियो सुवाओ। नानक प्रभ सो प्रसन्न पए बाँचत फल पाओ। बलावल महला पंजवा दास तेरे की बेनती हृद कर परगास। तुमरी कृपा ते पार ब्रह्म दुखन को नास। चरण कमल का आसरा प्रभ पुरख गुणतास। कीर्तन नाम सिमरत रहूं जब लग घट सास रहाऊ। मात पिता बंदब तू है तू सर्व निवास। नानक प्रभ शरणागति जाको निर्मल जास। बलावल महला पंजवा सर्व सिद्ध हर गाइए सब भला मनाव है। साध साध मुख ते कह सुन दास मलाव है। सुख सहज कल्याण रस पूरे गुर कीन। जी सगल दयाल भय हर हर नाम कीन रहाओ। पूर रहो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर। नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल। राख लिया अपना सेव को मुख निंदक शार। तुझे ना जो है को मीत जन तू गुर का दास। पार ब्रह्म तू राखिया दे अपने हाथ रहाओ। जीयन का दाता एक है बिया नहीं होर। नानक की बेनंतिया मैं तेरा जोर। बलावल महला पंजवा मीत हमारे साजना राखे गोविंद। निंदक मृतक होए गए तुम हो निचिंद रहाओ। सगल मनोरथ प्रभ किए पेटे गुरुदेव। जय जय कार जगत में सफल जाकी सेव। ऊंच अपार अगंत हर सब जी जिस हाथ। नानक प्रभ शरणागति जात कत मेरे साथ।
ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧਿਆ ਹੋਏ ਕਿਰਪਾਲ, ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਬਤਾਇਆ ਟੂਟੇ ਜਮ ਜਾਲ। ਦੁੱਖ ਭੂਖ ਸੰਸਾ ਮਿਟਿਆ, ਗਾਵਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ। ਸਹਿਜ ਸੂਖ ਆਨੰਦ ਰਸ, ਪੂਰਨ ਸਭ ਕਾਮ ਰਹਾਉ। ਜਲਨ ਬੁਝੀ ਸੀਤਲ ਭਏ, ਰਾਖੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਰਕ ਸੁਹਾਵੀ ਸਫਲ ਥਾਨ। ਪੂਰਨ ਭਏ ਕਾਮ, ਭਉ ਨਾਥਾ ਭ੍ਰਮ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਰਵਿਆ ਨਿਤ ਰਾਮ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸਤ। ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਬਿਸਰਾਮ, ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ। ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਾਉ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਏ ਸੰਸਾਰ ਮਹਿ, ਫਿਰਤੇ ਪਹਿ ਨਾਮ। ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਘਟ ਘਟ ਸਭ ਜਾਨ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਰੋਗ ਮਟਾਇਆ ਆਪ ਪ੍ਰਭ। ਉਪਜਿਆ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ, ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਚਰਜ ਰੂਪ। ਹਰ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ, ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ। ਰਾਖਿਆ ਮੇਰਾ ਭਾਈ, ਹਮ ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਜੋ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਰਹਾਉ, ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵਈ। ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਨਾਨਕ ਜੋਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਪੂਰਨ ਗੁਣ ਤਾਸ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਮਰ ਮਰ ਜਨਮੇ ਜਿਨ ਬਿਸਰਿਆ, ਜੀਵਨ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਸੇਵਿਆ, ਅਨ ਦਿਨ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਘਨਾ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਆਸ। ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਿਮਰਤ ਗੁਣ ਤਾਸ ਰਹਾਉ। ਸੁਣ ਸੁਆਮੀ ਅਰਦਾਸ ਜਨ, ਤੁਮ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਰਵ ਰਹੇ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਸੁਆਮੀ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਤਾਤੀ ਵਾਉ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰਨਾਈ। ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੈ ਰਾਮਕਾਰ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ, ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ। ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ, ਏਕਾ ਲਿਵਲਾਈ ਰਹਾਉ। ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਟਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ, ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਲਕ ਆਪ ਰੱਖਿਅਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਸਹਿਜ ਆਨੰਦ ਭਏ, ਪੂਰਨ ਭਈ ਸੇਵ ਰਹਾਉ। ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬੇਨਤੀ, ਸੁਣੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪ। ਰੋਗ ਮਟਾਏ ਜਿਵਾਲਿਅਨ, ਜਾਂ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਦੁੱਖ ਹਮਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਅਨ, ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ। ਮਨ ਬਾਛਤ ਫਲ ਦਿੱਤਿਅਨ, ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ।

नमस्कार दंडौत बंदना अनक बार जाओ बारे रहाओ उठत बैठत सोवत जागत एह मन तुझह चितारे सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे तू मेरी ओट बाल बुद्ध धन तुम ही तुम्हें मेरे परवार है जो तुम करहो सोई भल हमरे देख नानक सुख चरनारे बलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगल उदारन मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मन बसारन रहाउ संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मन ते डारन काम क्रोध लोभ रत निंदा सत

पूर रही दिनस अर रात रहाव कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन पे जात तृप्त अगाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मलात बलावल महला पंजवा राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिनस गए सब सोग संताप रहाव गुण गोविंद गाव हो सब हर जन राग रतन रतना आलाप कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गहे शरण सुख दाती।

प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनसियो अंधकार ते मंदर रतन कोठड़ी खुली अनुपा रहाउ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वडियाई मगन पए उहां संग माते पोत पोत लपटाई आल जाल नहीं कशु जंजारा हम बुद्ध नहीं पोरा।

अपर अपारा एक बस तीरन एक संपूर्ण एक है प्राण अधारा निर्मल निर्मल सूचा सूचो सूचा सूच

कड़ मह ऐठ हठीलो फूल फूल क्या पावत ही पंच दूत मूंड पर ठाटे केस गहे फेरावत ही दृष्ट न आवह अंध अज्ञानी सोए रहो मद मावत ही जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी ज्यों फहावत ही कहो नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख त्यावत ही बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपार अमोली प्राण प्यारू मन है अधारू चीत चितवो जैसे पान तंबोली रहाऊ सहज समायो गुरह बतायु रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो वड भागो सुहाग हमारू कतो ना डोली रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहो नानक प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बिलावल महला पंजवा गोविंद गोविंद गोविंद मई जब ते भेटे साध दयारा तब ते दुर्मत दूर पई रहाऊ पूर्ण पूर रहो संपूरन शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तन ते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सोच संतन ते एहो मंत लई कहो नानक जिन मनो पछानिया किनको सगली सोज पई।

रस बन ना साको गुर पूरै मेरी उल्ट धरी पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी पूर्ण पूर रहो कृपा नित कहो नानक मेरी पूरी परी। बुलावल महला पंजवा। मन क्या कहता हौं क्या कहता जान परवीन ठाकुर प्रभ मेरे तिस आगे क्या कहता रहाउ। अन बोले को तुही पछान है जो जीन मह होता रे मन काए कहां लो डह कह जो पेखत ही संग सुनता ऐसो जान भये मन आनंद आन ना बियो करता कहो नानक गुर।

सुनो तुम भाई, जो कालर भीत गिरी है रहाओ, जो देखै शिदर तो निंदक अमा है, भलो देख दुख भरी है, आठ पहर चितवै नहीं पहुंचै, बुरा चितवत चितवत मरिय, निंदक प्रभु पलाया, काल नेरह आया, हर जन स्यों बाद उठरी है, नानक का राखा।

करह करावह मुँह कर पावह। पेखत सुनत सदा संग हरे रहाउ, काच बिहाजन कंचन छाडन। बैरी संग हेत साजन त्याग खरे, होवन कौरा अनहोवन मीठा। बिखिया मह लपटाए जरे, अंध कूप मह परे ओ प्राणी। परम गबार मोह बंद परे, कहो नानक प्रभु होत दयारा। गुर भेटै काढै बाहां परे। बलावल महला पंजवा, मन तन रसना हर कीना। पए आनंदा मिटे अंदेसे, सर्ब सुख मोको गुर दीना। रहाउ इयानपते सब पई।

बल जावो दर्शन साधु कै जे प्रसाद हर नाम लीना कहो नानक ठाकुर परोसै कहू ना मान्यो मन शीना बलावल महला पंजवां गुरपुरै मेरी राख लई अमृत।

का जपया जाप। कहा करे कोई बेचारा प्रभ मेरे का बड़ परताप। सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल रख मन माही। ताकी शरण परयो नानक दास जाते ऊपर को नाही। बिलावल महला पंजवा सदा सदा जपिए प्रभ नाम। जरा मरा कछ दुख न व्यापै आगे दरगाह पूर्ण काम रहाउ। आप त्याग परिए नित सरनी गुर ते पाइए एहो निदान। जन्म मरण की कटिए फांसी साची दरगाह का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो मन ते छूटे सगल गुमान। कहो नानक ताकी सरनाई जा का किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा मन ताने अंतर प्रभ आही। हर गुण गावत पर पकार नेतर तिस रसना का मूल किछ नाही रहाओ। कुल समूह उदरे खिन पीतर जन्म जन्म की मल लाही। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना अनद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए पव सागर पार पराही। संत सेवक भगत हर ताके नानक मन लागा है ताही।

काटिया हिन मह हुए गया है खाक। मंदा चितवत चितवत पचिया जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत धन किशु ना रहो सो छोड़ गया सब भाई साक। कहो नानक तिस प्रभ बलिहारी जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बलावल महला पंजवा पूरे गुर की पूरी सेव। आपे आप वरतै स्वामी कार्ज रास किया गुरुदेव। रहाउ आद मद

हस्त प्रव दीने जगत उधार नव खंड प्रताप दुख बिन से सुख अंध प्रवेशा त्रिशन बुझे मन तन सच त्राप नाथ को नाथ सरन समर्था सगल श्रेष्ठ को माई बाप भगत वचल पै पंजन स्वामी गुण गावत नानक अलाप बलावल महला पंजवा जिसते उपजिया तह पछान पार ब्रह्म परमेश्वर त्याया कुशल खेम हुए कल्याण रहाउ गुरपुरा पेट्यो बड भागी अंतर जामी सुगुण सुजान हाथ दे राखे करे अपने बड़ समरत नमाणिया को मान ब्रह्म पै बिन सगए खिन पीतर अंधकार प्रगटे चानान सास सास अराधै नानक सदा सदा जाइए कुर्बान बलावल महला पंजवा दूए थाम रखे गुर सूरे हलत पलत पार ब्रह्म सवारी कार्ज हुए सग

पाई। जन्म मरण के मिटे बिसूरे, भ्रम पै तरे छुटे पै जम के, घट घट एक रहया पर पूरे, नानक सरण परयो दुख भंजन, अंतर बाहर पेख हजूरे। बलावल महला पंजवां, दर्शन देखत दोख नस्ते, कभो न हो वो दृष्ट अगोचर, जी कै संग बसे रहाओ, प्रीतम प्राण आधार स्वामी, पूर रहे प्रभ अंतर जामी, क्या गुण तेरे सार समारी, साथ साथ प्रभ तुझह चितारी, कृपा निद प्रभ दीन दयाला, जी जंत की करहो प्रतपाला, आठ पैर तेरा नाम जन जापी।

आओ अनक प्रकार भोजन नित खाते मुख दंता कस खीन खया मेरी मेरी कर कर मूठो पाप करत नह परी दया महा विकार घोर दुख सागर जिसमें प्राणी गलत पया सरन परे ना।

वेद बनी रहाउ तोरी ना टूटे शोरी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी दिन सरैन मन माही बस्त है तू कर कृपा प्रभे अपनी बल बल जाओ श्याम सुंदर को कथ कथा जा की बात सुनी जन नानक दासन दास कहियत है मोहे करहो कृपा ठाकुर अपनी बलावन महला पंजवा हर के चरण जप जाओ कुर्बान गुर मेरा पार ब्रह्म परमेश्वर ता का हृदय धर मन ध्यान रहाउ सिमर सिमर सिमर सुख दाता जा का किया सगल जहान रसना रवहु एक नारायण साची दरगाह पावु मान साधु संग परापत जा को तिन्ही पाया एहो निदान गावो गुण कीर्तन नित स्वामी कर कृपा नानक दीजै।

तरन रहाउ। विश्वंबर पूर्ण सुख दाता सगल समगरी पोखण परन, थान थनंतर सर्व निरंतर बल बल जाई हर के चरण। जी जुगत वस मेरे स्वामी सर्व सिद्ध तुम कारण करन, आद जगाद प्रभ रखदा आया हर सिमरत नानक नहीं डरन। राग बलावल महला पंजवां, दुपदी घर अठवां, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, एक है निर्गुण उग है सरगुण, केल करत बिच स्वामी मेरा रहाव। नगर मह आप बाहर पुने आपन, प्रभ मेरे को सगल बसेरा। आपे ही राजन आपे ही राया, कह कह ठाकुर कह कह चेरा। का कौ दराओ का स्यो बल बंचा, जह जह पेखो तह तह नेरा। साध मूत गुर पेट्यो नानक, मिल सागर बूंद नहीं अनहेरा। बलावल महला पंजवा, तुम समरथा कारण करन, ताकन ताक गोबिंद गुर मेरे। मोहे अपराती सरन चरन रहाओ, जो जो कीनो सो तुम जान्यो पेखियो। ठौर नाही कछ ढीठ मुकरन, बड प्रताप सुनियो प्रभ तुमरो। कोट अगा तेरो नाम हरन, हमरो सहाओ सदा सद भूलन। तुमरो बिरद पतत उधरन, करना मैं किरपाल किरपा नित। जीवन पद नानक हर दर्शन, बलावल महला पंजवा। ऐसी कृपा मोहे करो, संतह चरण हमारो माथा। नैन दर्स तन तूर पर हो रहाओ, गुर को शब्द मिरहि अरै बासे। हर नामा मन संग धरो, तस्कर पंच नवार हो ठाकुर। सगलो भरमा होम जरो, जो तुम करो सोई भल मानै। पावन दुबदा दूर टरो, नानक के प्रभ तुम ही दाते। संत संग ले मोहे उधरो। बलावल महला पंजवा, ऐसी दीखिया जन स्यों मंगा। तुमरो

उठन बैठन जन कह संगा जन चार राज मुख माते लागी आसा पूर्ण अनंत तरंगा जन पार ब्रह्म जाकी निर्मल महिमा जन के चरण तीर्थ कोट गंगा जन की धूर कियो मज्जन नानक जन्म जन्म के हरे कलंगा बिलावल महला पंजवां ज्यो भावै त्यो मोहे प्रतपाल पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुर हम बारक तुम पिता कृपाल रहाओ मोहे निर्गुण गुण नाही कोई पहुँच ना साको तुमरी काल तुमरी गात मित तुम ही जानो जियो पिंड सब तुमरो माल अंतर जामी पुरख स्वामी अनबोलत ही जानो हाल तन मन शीतल होए हमारू नानक प्रभ जियो नजर निहाल बिलावल महला पंजवां राख सदा प्रभ अपने साथ तू हमरो प्रीतम मनमोहन तुझ बिन जीवन सगल अकाथ रहाओ रंक तेराओ करत खिन पीतर प्रभ मेरो अनाथ को नाथ जलते अग्न मह जन आप उधारी कर अपने दे राखे हाथ शीतल सुख पायो मन तृप्ते हर सिमरत श्रम सगले लाथ निद निधान नानक हर सेवा अवर से

0: प्रभ मेरे।
1: पूरब प्रीत गोबिंद विचार हो रहा,
0: पतस पावन प्रभ बिरद तुम्हारो, हमरे दुख हृदय मत तारो, जीवन प्राण हर धन सुख तुम ही, हम मैं पटल कृपा कर जारो, जल बिहून मीन कत जीवन, दूध बिना रहन कत बारो, जन नानक प्यास चरण कमलन की, पेक दर्श स्वामी सुख सारो।
1: बिलावल महला पंजवा, आग है पाछे कुशल भया, गुरपुरे पूरी सब राखी, पार ब्रह्म प्रभु कीनी मया रहाओ। मन तन रव रहे हर प्रीतम, दुख दर्द सगला मिट गया, शांत सहज आनंद गुण गाए, दूत दुष्ट सब हुए खया, गुण अवगुण प्रभ कछ ना बिचारियो, कर कृपा अपना कर लया, अतुल बढ़ाई अचुत अभनासी, नानक उचर हर की जया। बलावल महला पंजवा, बिन पै भगती तरन कैसी, करहु अनग्रहु पतत उदारन, राख स्वामी आप परोसे रहाओ। सिमरन नहीं आवत फिरत मद मावत, बिख्या राता स्वान जैसी, औद बिहावत अधिक महावत, पाप कमावत बुढ़े ऐसी, शरण दुख भंजन पुरख निरंजन, साधु संगत रमन जैसे, केशव कलेश नाश अग खंडन, नानक जीवत दर्श दिसे।

जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए रहाओ। ताजे अभिमान अरचिंत बरानी साध है शरण पाए, जप जप नाम तुम्हारो प्रीतम तन ते रोग खाए। महामुगद अजान अज्ञानी राखे तार दए, कहो नानक गुर पूरा पेटे हो आवन जान रहे। बलाव महला पंजवा जीवो नाम सुनी जो सो पर

मटावहु, तव कर ही लालन पावहु, तब रस मंगल गुण गावहु, आनंद रूप त्यावहु, नानक द्वारे आयो तव मैं लालन पायो री, मोहन रूप दिखावे अब मोहे नींद सुहावे, सब मेरी तिखा बुझानी अब मैं सहज समानी।

जाई दर्शन पावत ही राचहु नाथ ही सहाई संतना अब चरण गहे रहाउ आहे मन अवर ना पावे चरनावे चरनावे उलझियो अलम करंद कमल जियो अन रस नहीं चाहे एक हर लाहे अन ते टूटी है रिख ते छूटी है मन हर रस घूटी है

द्रौपदी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद दुख हरता हर नाम पछानो अजा मल गण का जेह सिमरत मुक्त भये जी जानो रहाओ गज की त्रास मिटी सिन्हु मह जब ही राम बखानो नारद कहत सुनत ध्रुव बारक भजन माहे लपटानो अचल अमर निरभय पद पायो जगत जाहे हैरानो नानक कहत भगत रस कहार निकट ताहे तुम मानो।

तेहे नर जन्म अकारथ खोया, यह राखो मन माही रहाउ। तीर्थ करे व्रत फुन राखे, नह मनुआ बस जाको, निःफल धर्म ताहे तुम मानु। साच कहत मैं जाको,

दूजा देख कहो पावे मन सोए। नानक कह अवर नहीं कोई। बलावल महला पहला। मन का कहया मनसा करे, इहो मन पुन पाप उच्चरे। माया मद माते त्रिपत ना आवे, त्रिपत मुकत मन साचा पावे। तन तन कलत सब देख अभमाना,

आप ना बूझै लोक बुझावै मन का अंधा अंध कमावै दर कर महल ठौर कैसे पावै हर जियो सेविया अंतर जामी घट घट अंतर जिसकी जोत समानी किस नाल क्या चलै पहनामी साचा नाम साचा शब्द जानै आपै आप मिलै चूकै अभमानै।

सतगुर मिलिया वड्डी वड्याई, दुख काटै हृदय नाम वसाई, नाम रते सदा सुख पाई। गुरमत मान्या करनी सार, गुरमत मान्या मोख द्वार, नानक गुरमत मान्या परवार साधार। बलावल महला चौथा अष्टपदियां घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आपे आप खाए हों मेटै, अन दिन हर रस गीत गवैया, गुरमुख परचै कंचन काया, निरपौ ज्योति ज्योत मलैया। मैं हर हर नाम आधार रमैया, खिन पल रह ना सको बिन नावै, गुरमुख हर हर पाठ पढ़ैया रहाओ। एक गिरहो दस द्वार है जाकी, अहनस तस्कर पंच चोर लगैया, धर्म अर्थ सब हिर ले जाव है, मनमुख अंदले खबर ना पैया, कंचन कोट बहु मानक भरिया, जागे ज्ञान तत लिव लैया। तस्कर हेरू आए लुकाने, गुर कै शब्द पकड़ बंद पैया, हर हर नाम पोत बोहिता, खेवट शब्द गुर पार लंघैया। जम जगाती नेड़ ना आवे, ना को तस्कर चोर लगैया, हर गुण गावे सदा दिन राती, मैं हर जस कहते अंत ना लहिया। गुरमुख मनुआ इकत घर आवे, मिलो गोपाल निशान बजैया, नैनी देख दर्स मन तृप्तै, श्रवण बाणी गुर शब्द सुनैया। सुन सुन आत्म देव है पीने, रस रस राम गोपाल रवैया, त्रै गुण माया मोहे व्यापे, तुरिया गुण है गुरमुख लहिया। एक दृष्ट सब सम कर जाने, नदरी आवे सब ब्रह्म पसरिया, राम नाम है ज्योत सबाई, गुरमुख आपे लख लखैया। नानक दीन दयाल भए है, भगत पाए हर नाम समैया। बलावल महला चौथा, हर हर नाम शीतल जल त्यावहु, हर चंदन वास सुगंध गंधैया। मिल सत संगत परम पद पाया, मैं हिरड पलास संग हर बुहिया। जप जगन्नाथ जगदीश गसैया, सरल परे से ही जानि उबरे, ज्यों प्रहलाद उदार समैया रहाओ। पार अठारह मह चंदन उत्तम, चंदन निकट सब चंदन हुईया, साकत कूड़े ऊब सुख हुए, मन अभमान विछड़ दूर गईया। हर गत मित करता आपे जाने, सब बिद हर हर आप बनैया, जिस सतगुर भेटे सो कंचन होवे, जो तुर लिखिया सो मिटै ना मटैया। रतन पदार्थ गुरमत पावे, सागर भगत पंडार खलैया, गुर चरणी एक शरदा उपजी, मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया। परम बैराग नित नित हर त्याए, मैं हर गुण कहते भावनी कहिया, बार बार खिन खिन पल कहिए, हर पार न पावे परे परैया। शास्त वेद पुराण पकार है, धर्म करहो खट कर्म दृढ़ैया, मनमुख पाखंड परम विगूते, लोभ लहर नाभ भार बढ़ैया। नाम जपहो नामे गत पावहु, सिमरत शास्त्र नाम दृढ़ैया, हउमै जाए ता निर्मल होवै, गुरमुख परचै परम पद पैया। एहो जग वर्ण रूप सब तेरा, जित लावह से कर्म कमैया, नानक जंत बजाए वाजह, जित पावै तित राहि चलैया। बलावल महला चौथा, गुरमुख अगम अगोचर त्याया, हों बल बल सतगुर सत पुरखैया, राम नाम मेरा प्राण वसाई, सतगुर परस हर नाम समैया, जन की टेक हर नाम टिकैया।

राम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बुझैया। इह मन नाचै सतगुर आगै अनाद शब्द धुन तूर बजैया। हर हर उस्तत करै दिन राती रख रख चरण हर ताल पूरैया। हर कै रंग रत्ता मन गावै रस रसाल रस शब्द रवैया। निज कर धार चोऐ अत निर्मल जिन पिया तिन्हीं सुख लहिया। मन हट कर्म करै अभमानी ज्यों बालक बालू कर उसरैया। आवै लहर समुंद सागर की खिन मह भिन्न भिन्न टह पैया। हर सर सागर हर है आपे एहो जग है सब खेल खलैया। ज्यों जल तरंग जल जलह समावह नानक आपे आप रमैया। बलावल महला चौथा सतगुर परचै मन मुंदरा पाई गुर का शब्द तन भस्म दरड़ैया। अमर पिंड भये साधु संग जन्म मरण दो मिट गईया। मेरे मन साध संगत मिल रहिया कृपा करहु मधुसूदन माधव। मैं खिन खिन साधु चरण पखैया रहाव तजै गिरहस्त भया बनवासी। एक खिन मनुआ टिकै ना टिकैया धावत धाए तदे घर आवै। हर हर साधु सरन पवैया तिया पूत छोड़ सन्यासी। आसा आस मन बहुत करैया आसा आस करै नहीं बूझै। गुर कै शब्द निरास सुख लहिया उपजी तर्क दिगंबर होवा। मन दह दिस चल चल गमन करैया पर पवन करै बूझै नहीं कृष्णा। मिल संग साध दया कर लहिया आसन सिद्ध सिख है बहुतेरे। मन मांग है रिद्ध सिद्ध चेटक चिटकैया। तृप्त संतोख मन शांत ना आवै मिल साधु तृप्त हर नाम सिद्ध पैया। अंडज जेरज सेतज उत्पुज सब वर्ण रूप जी जंत उपैया। साधु सन परै सो उबरै खत्री ब्राह्मण सूद वैस चंडाल चंडैया। नामा जय देव कंबीर त्रिलोचन औजात रविदास चमयार चमैया। जो जो मिले साधु जन संगत तन तना जात सैन मिलिया हर दैया। संत जना की हर पैज रखाई भगत वचल अंगीकार करैया। नानक सरन

सुन गुर बचन मन तीर लगैया, मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को पीर परैया। राम गुर मोहन मोहे मन लैया, हम आकल बिकल पई गुर देखे, हम लोट पोट होए पैया रहाओ। हम निरखत फिरऊं सब देश दसंतर, मैं प्रभ देखन को बहुत मन चैया। मन तन काट देऊ गुरे आगे, जिन हर प्रभ मार्ग पंथ दिखैया। कोई आन संदेशा दे प्रभ केरा, हृदय अंतर मन तन मीठ लगैया। मस्तक काट देऊ चरना तल, जो हर प्रभ मेले मेल मलैया। चल चल सखी हम प्रभ प्रबुद्ध है, गुण कामन कर हर प्रभ लहिया। भगत वचन ओवा को नाम कहियत है, शरण प्रभु तिस पाछे पैया। थिमा शिंगार करे प्रभ खुशियां, मन दीपक गुर ज्ञान बलैया। रस रस भोग करे प्रभ मेरा, हम तिस आगे जियो कट कट पैया। हर हर हार कंठ है बनिया, मन मोती चूर वड गहन गहनैया। हर हर शरदा सेज वछाई, प्रभ छोड़ ना सके बहुत मन पैया। कह प्रभ अवर अवर किस कीजै, सब बाद शिंगार फोकट फोकटैया। कियो शिंगार मिलन कै ताई, प्रभ लियो सुहागन।

नानक हर गुर सरण समैया। बलावल महला चौथा। मैं मन तन प्रेम अगम ठाकुर का, खिन खिन शरदा मन बहुत उठैया। गुर देखे शरदा मन पूरी, ज्यो चात्रक प्रियो प्रियो बूंद मुख पैया। मिल मिन सखी हर कथा सुनैया, सतगुर दया करे प्रभ मेले। मैं तिस आगे सिर कट कट पैया, रहाउ रोम रोम मन तन एक बेदन। मैं प्रभ देखे बिन नींद ना पैया, वैदिक नाटक देख पुलानी। मैं हृदय मन तन प्रेम पीर लगैया, हौ खिन पल रह ना सको बिन प्रीतम। ज्यो बिन अमले अमली मर गैया, जिनको प्यास हुए प्रभ केरी। तिन अवर ना पावे बिन हर को दुइया, कोई आन आन मेरा प्रभु मलावे। हौ तिस विटहो बल बल घुम गैया, अनेक जन्म के विछड़े जन मेले। जहां सत सत सत गुर सरन पवैया, सेज एक एको प्रभ ठाकुर। महल ना पावे मन मुख परमैया, गुर गुर करत सरन जे आवे। प्रभ आए मिले खिन ढील ना पैया, कर कर किरिया चार वधाए। मन पाखंड कर्म कपट लो भैया, बेसवा कह कर बेटा जन्मया। पिता ताहे क्या नाम सदैया, पूर्व जन्म भगत कर आए। गुर हर हर हर हर भगत जमैया, भगत भगत करते हर पाया। जहां हर हर हर हर नाम समैया, प्रभ आन आन मेहंदी पसाई। आपे कोल कोल अंग लैया,

सतगुरु प्रसाद उपमा जात ना कही मेरे प्रभु की उपमा जात ना कही ताजे आन शरण गही रहाओ प्रभ चरण कमल आपार हौ जाऊं सद बलिहार मन प्रीत लागी ताहे ताजे आन कतह ना जाहे हर नाम रसना कहन मल पाप कल मल दहन चढ़ नाव संत उदार पै तरे सागर पार मन डोर प्रेम प्रीत ए संत निर्मल रीत तज गए पाप विकार हर मिले प्रभ निरंकार प्रभ पेखिए बिस्माद चख अनद पूर्ण साध नह डोलिए इत ऊत प्रभ बसे हर हर चीत तिन नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जम ना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर सरन सूर गोपाल प्रभ भगत वस दयाल हर निगम लह ना पेव नित करह मुन जन सेव दुख दीन दर्द निवार जां की महा बिखड़ी कार तां की मित न जाने कोए जल थल मही अल सोए कर बंदना लख बार थक परियो प्रभ दरबार प्रभ करहो साधु तूर नानक मन सापूर बलाव महला पंजवां प्रभ जन्म मरण निवार हार परियो द्वार गह चरण साधु संग मन मिष्ट हर हर रंग कर दया ले हो नर लाए नानका नाम त्याई।

तार बिखिया कूप तम अज्ञान मोहत कूप गह पुजा प्रभ जी ले हो हर नाम अपना दे हो प्रभ तुझ बिना नहीं ठाओ नानका बल बल जाओ लोभ मोहे बांदी दे बिन भजन होवत खे जमदूत महाभयान चित गुप्त कर मह जान दिन रैन साख सुनाए नानका हर सरनाए पै भंजना मरार कर दया पतत उदार मेरे दुख गने ना जाहे हर बिना कतह समाए गह ओट चित वी नाथ नानका दे रख हाथ हर गुण निदे गोपाल सर्ब घट प्रतपाल मन प्रीत दर्शन प्यास गोविंद पूर्ण आस एक निमक रहन ना जाए वड भाग नानक पाए प्रभ तुझ बिना नहीं होर मन प्रीत चंद चकोर ज्यो मीन जल स्यो हेत अल कमल भिन्न ना भेत ज्यो चकवी सूरज आस नानक।

ज्यो महा खुदयारथ भोग ज्यो बात पूतै हेत हर सिमर नानक नेत ज्यो दीप पतन पतंग ज्यो चोर हित न संग मैगल है कामै बंद ज्यो ग्रस्त बिखरी।

गोविंद भजन रंग रसना बखाने नाम नानक दर्शन दान गुण गाए सुन लिख दे सो सर्ब फल हर ले कुल समूह करत उदार संसार उतरस पार हर चरण बोहित ताहे मिल साध संग जस गाहे हर पैज रखे मरार हर नानक सरन द्वार बलावन महला पहला थिती घर दसवां जत एक ओंकार सतगुर प्रसाद एकम एकंकार निराला अमर अजोनी जात ना जाला अगम अगोचर रूप ना रेखिया खोजत खोजत घट घट देखे।

गुर कै शब्द महल घर दिसै रहाउ, दूजै पाए लगे पछताणे, जम दरबांदे आवन जाने, क्या लै आवहै क्या ले जाहे, सिर जमकाल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूटस कोए, पा खंड कीनै मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, तरत आकाश किए बैसन कौ थाऊ, रात दिनंत किए पऊ पाऊ।

कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखां दूर, चौथ अपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी भेदा,

मुख शरीर सात समुंद भरे निर्मल नीर मज्जन सील सच हृदय विचार गुर कै शब्द पावे सब पार मन साचा मुख साचो पाय सच निशाने ठाक न पाए अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधे सच निह केवल कर्म अरादे पौन पानी अग्नि बिसराऊ तही निरंजन साचो नाउ किसमें मनुआ रहे लिव लाए प्रणवत नानक काल न खाए नाउ नौमी नवे नाथ नव खंडा घट घट नाथ।

फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुद्रा मन अवतूता, ऐन सजागै कभै ना सूता, जागत जागत

सब सोच संयम साच पछाण तेरस तरवर सुमंध किनार अमृत मूल शिखर लिवतार डर डर मरे।